एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये विविध भारती का उदयपुर केंद्र है एफएम रेडियो लेक सिटी। आज सोमवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारे प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय

0: पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: वंदन वार,
3: वंदन वार।

आज का चिंतन गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है, विश्वास वो पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण झरोखा के अंतर्गत। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद 6:35 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान भाग 206, 6:45 सुबह और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता कार्यक्रम श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर भाग एक। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। पर त्रिवेणी 8:30 से सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज की फनकार। आज का सुबह का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा ख्वाजा अहमद अब्बास पर। सुबह 10 पिटारा में उजाला

उनकी यादों के कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मिथुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये पहला भाग सुनिएगा। 11 बजे रंग तरंग। बारह बजकर 5 मिनट पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर, 2 बजे त्रिवेणी, 2 बजकर 30 मिनट पर सदाबहार नगमे, 3 बजे सखी सहेली। इसके अंतर्गत सुनेगा कथा सुधा आभूषण का भाग एक, दूसरा सुनेगा वैश्विक अभिभावक दिवस और विश्व दुग्ध दिवस, और इसके अंतर्गत सुनेगा उत्तर प्रदेश के व्यंजन बनारस का मुंगड़ी वाला मटर का निमोना, धनिया वाले मठी। शाम 4 बजे पिटारा में सेहतनामा दांतों की देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर जयेश चुगे से यूनुस खान की बातचीत सुनेगा। प्रस्तुत करता है जुबैर खान। शाम 5 बजे छाया गीत, 5 बजकर 30 मिनट पर तराने नए पुराने, 6 बजकर 30 मिनट पर संध्या रंजन, 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा, 7 बजकर 45 मिनट पर स्मृतियों के स्वर, इसके अंतर्गत सेवानिवृत्त सहायक निदेशक श्रीमती अनीता वैसली पटेल से ममता सिंह की बातचीत। हवा महल में रात 8 बजे सुनिएगा प्रहसन इंटरव्यू, लेखन वीएम आनंद और निर्देशन है मुख्तार अहमद का। आठ बजकर 15 मिनट पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए ये कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। रात 9 बजकर 30 मिनट पर आज के फनकार, इसके अंतर्गत सुनिएगा अभिनेत्री नरगिस पर ये कार्यक्रम रात का 9 बजकर 30 मिनट पर आज के फनकार केंद्रित होगा। 10 बजे छाया गीत, 10 बजकर 30 मिनट पर ढलती जाए रात, और रात 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 206।

अपनी चतुरंगिणी सेना तथा अयोध्या से आए पुरजनों सहित भरत श्री राम सीता तथा लक्ष्मण की पर्णकुटी के मार्ग पर पैदल अग्रसर हो रहे हैं। मार्ग में मिलने वाले कोल, भील, वानप्रस्थियों तथा विरक्त सन्यासियों से उनका एक ही प्रश्न है, श्री राम का निवास किस वन में है। मार्ग में एक रात्रि के विश्राम के बाद भरत अपने समाज सहित कामदगिरी पर्वत के समीप पहुंचे।

श्रोताओं नमस्कार। फिल्म संगीत के इतिहास को पलटें तो आप पाएंगे कि तबला इसमें पूरी चमक के साथ मौजूद है। इसलिए संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम एक नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है सिने संगीत में तबले का दौर। इस श्रृंखला के लिए हमारे विशेष अतिथि हैं आकाशवाणी परिवार के आत्मीय सदस्य और आकाशवाणी के प्रथम श्रेणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस।

0: से बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी जयंत पात्रीकर। सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, कोई पूछे कि हमारे देश में रेडियो पर सबसे अधिक क्या सुना जाता है, तो वो है संगीत, और उसमें भी फिल्म संगीत के सुनने वालों की बहुतायत है। हमारा सिने संगीत संस्कारित है शास्त्रीय संगीत से। सिने संगीत में तबले का दौर, इस श्रृंखला का आज शुभारंभ हो रहा है। हमने आमंत्रित किया है श्री रविंद्र खासनेस जी को, जो आकाशवाणी के अश्रेणी संगीत रचनाकार हैं, आला दर्जे के तबला वादक हैं और हमारे अपने हैं, आकाशवाणी परिवार के आत्मीय सदस्य। रविंद्र जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: इससे पहले कि हमारी चर्चा शुरू हो, हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें कि आकाशवाणी में से किस तरह से आपका जुड़ाव हुआ, कैसे आप आकाशवाणी में आए।
2: जी, मैं बचपन से ही संगीत से जुड़ा हूँ और मैंने तबला सीखने की शुरुआत जो है वो मेरे 6 साल के आयु में की है।
1: जी,
2: मैं शुरू में आकाशवाणी का चाइल्ड आर्टिस्ट था, उसके बाद में मैं आकाशवाणी का ही यूथ आर्टिस्ट बना।
1: क्या बात है।
2: और 1988 में मैंने UPSC की एग्ज़ाम देकर आकाशवाणी में मैं कार्यक्रम अधिशासी के रूप में मैंने ज्वाइन किया। मैं तो कई आकाशवाणी केंद्रों पर काम कर चुका हूँ महाराष्ट्र में।
1: जी,
2: क्योंकि संगीत से हमारा जुड़ाव था और हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते आए थे संगीत की, तो आकाशवाणी में आने के बाद में मैंने आकाशवाणी की म्यूजिक कंपोजर की ऑडिशन दी। कहते हैं कि अगर आपने हुनर है तो वो हुनर दिखाने के लिए आकाशवाणी जैसा और कोई व्यासपीठ है नहीं, तो आकाशवाणी ने तो मुझे बचपन से ही बहुत कुछ दिया। और उसी में जब नौकरी करने आया तब मैंने आकाशवाणी में म्यूजिक कंपोजर की ऑडिशन दी और मैं प्रभु की कृपा से Grade 1 म्यूजिक कंपोजर हूँ। कई सारे म्यूजिकल फीचर हमने आकाशवाणी के लिए किए, उसके बाद में आकाशवाणी के सॉन्ग ऑफ द मंथ में कई सारे गानों में संगीत दिया।
1: क्या बात।
2: और बहुत सारी रचनाएं आकाशवाणी के लिए की हैं, तो ये मेरा संगीत का जो बचपन से जो प्रवाह शुरू हुआ तो आज तक लगातार जारी है।
1: क्या बात है। तो आज हमारे अपने एक अधिकारी हैं मगर एक कलाकार के रूप में आज श्रोताओं के सामने हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं आप। तो अपनी श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। फिल्म संगीत में, सिने संगीत में तबले का जो दौर है उसकी बात होगी और समय के अनुसार इसमें जो परिवर्तन आया है उस पर हम बात करेंगे।
2: जी,
1: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे रविंद्र जी कि तबला ये जो वाद्य है इसका जन्म कैसे हुआ और इसके जन्म से जुड़ी कोई कहानी होगी तो उसके बारे में भी कृपया हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: हम लोग अगर हमारे पुराने स्कल्पचर देखते हैं
1: जी,
2: तो उसमें ज़्यादातर हमें यही दिखता है कि मृदुंग या पखावज
1: जी
2: ये वाद्य हमारे पास थे और हमारे यहाँ पर ध्रुपद धमार गायकी होती थी।
1: जी जी।
2: फिर जब अकबर बादशाह के ज़माने में ख्याल गायकी का विस्तार होने लगा तो उसमें ये होता था कि ख्याल का जो गायन है वो मृदु शैली में है और उसके ऊपर पखावज के बोल भारी पड़ते थे।
1: जी,
2: तो इसलिए शायद तबले के जन्म की कथा जो है वहाँ से शुरू ही हुई है। कहते हैं कि अमीर खुसरो साहब जो है उन्होंने पखावज को विभाजित किया, मतलब अच्छा, दो भागों में उसका विभाजन किया और उसका जो आकार है वो तबले का आकार उसका दिया।
1: जी,
2: तो बाया और दाया ऐसे उसके दो भाग हुए। और कहते हैं कि वो जब तोड़ा तब बोला।
1: हाँ।
2: तो तब बोला से वो तबला शब्द अच्छा, वहाँ से आया है। अब ये तो मतलब कहानी है, इस पर किसका कितना विश्वास होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन तबला वाद्य जो है ये वाद्य दाया बाया दोनों का मिला हुआ वाद्य है।
1: जी।
2: और उसने पखावज की तुलना में उसके जो बंद बोल है वो ख्याल गायकी के लिए बहुत अच्छे उसके साथ में मिल गए।
1: जी।
2: और

0: इसलिए ख्याल गायन में तबला संगति का प्रचलन होने लगा।
1: पखावज के जो बोल होते हैं रविंद्र जी, हाँ, और तबले के बोल, हाँ, इनमें अंतर क्या है?
0: वैसे पखावज जो है वो खुला वाद्य है
1: जी, जी।
0: मतलब पखावज पे वो धा जो है वो खुला धा, धा,
1: खुला बाज कहा जाता है।
0: धा, जी, जी। इट धा दिन ता इट कता गदी गाना धा, तो पखावज जो है वो खुला वाद्य है, उस पे खुले बोल बजते हैं
1: जी जी।
0: अब पखावज का जो धा खुला बजता है वही धा तबले पर बंद है वो धा। तो तबले की जो बोल है वो बंद बोल है
1: जी,
0: और पखावज के खुले बोल,
1: खुले बोल होते हैं।
0: वैसे शुरू में हमारे पास पखावज था, तो पखावज का जो साहित्य था वो बहुत विपुल साहित्य है पखावज का
1: जी,
0: तो उसी साहित्य को लेकर तबले का भी साहित्य बढ़ने लगा।
1: इसका भी एक अलग शास्त्र बना।
0: बिल्कुल, शास्त्र जी, बना जी। तबले के घराने बने, जैसे दिल्ली, अजराड़ा, पंजाब, बनारस, लखनऊ, ऐसे तबले के घराने बने।
1: हाँ हाँ।
0: और उसमें भी बहुत शैलियाँ विकसित हुई
1: जी,
0: और कई सारे तबले के मतलब स्वतंत्र वादन के कार्यक्रम और तबला संगत, ये दोनों चीज़ें उसमें आ गई
1: जी जी। इसमें भी कुछ महनीय कलाकारों ने बोल निकालने का यानी तबले से बोल बजाने का अपना अपना तरीका विकसित किया है।
0: बिल्कुल, मतलब घराना जो होता है वो उसी विशेषता से लेकर होता है। घराने जो तबले के हैं
1: जी,
0: उनके जो बोल है,
1: हाँ,
0: उसके वो बोलों के आधार पर उसका घराना पहचाना जाता है। तो ऐसे तबले के घराने और उनका बोल और उनका पूरा साहित्य विकसित हुआ है।
1: जी जी।
0: पखावज के जो खुले बोल है
1: जी,
0: तो एक ऐसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं। अब तबले पे ही उसका मतलब निकास कैसे होती है, तबले पर पखावज की निकास है ये
1: जी।
0: तो

0: तो ये पखावज का एक नमूना है कि ये खुला बोल पखावज पे बजता है। अभी ये तबले के जो बोल होते हैं वो बंद बोल है,
1: हाँ।
0: तो वो इस तरह से

0: वाह क्या बात।
1: हम बात कर रहे थे रविंद्र जी चौताल की
2: जी।
1: तो चौताल जिस गीत में हमें सुनने को मिलता है, ऐसा कोई गीत आपको याद आ रहा हो तो अपने श्रोताओं को सुनवाएं।
2: हाँ बिल्कुल याद आ रहा है। चौताल जो है, धा धा दिन ता किट धा दिन ता तीट कत गदी गन धा
1: जी।
2: इसमें सप्त सुरन तीन ग्राम गीत है जो चौताल में निबद्ध है। बहुत ही लाजवाब है और बहुत कम ऐसे गाने सुनने को मिलते हैं जो चौताल में मृदुंग के ऊपर पखावज के ऊपर वो बजाए गए हैं।
1: आइए सुनते हैं।

0: संगीत सम्राट तानसेन। इस फिल्म का गीत आपने सुना मन्ना डे के स्वर में, संगीतकार SN त्रिपाठी।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, इस श्रृंखला की पहली कड़ी अभी आपने सुनी। इस श्रृंखला के लिए हमारे विशेष अतिथि हैं श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जय।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। बोलिए, बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।

बात एक रात की। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर की आवाज में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और धुन ST बर्मन ने बनाई थी। कण कण में भगवान, लीजिए अब सुनिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में ये गीत। इसे सुमन कल्याणपुर ने गाया है, भरत व्यास ने लिखा है और शिवराम ने इस गीत की धुन बनाई है।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में लीजिए सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम है लागी नाही छूटे राम। इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और तर्स है चित्रगुप्त का।

दिल ही तो है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सुमन कल्याणपुर की ये आवाज थी। साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा था और रोशन ने इस गीत की धुन बनाई थी। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

0: श्री 420 फिल्म का गीत आप अभी सुन रहे थे। उस गाने के पहले आपने जो गाना सुना था उसे हमने अनारी फिल्म से लिया था। लता मंगेशकर की और मुकेश की आवाज़ें थीं, शैलेंद्र ने बोल लिखे थे और शंकर जयकिशन ने धुन बनाई थी। अभी जो गीत आप सुन रहे थे इसे हमने श्री 420 फिल्म से लिया था। लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ें थी और हसरत जयपुरी ने बोल लिखे थे, शंकर जयकिशन ने धुन बनाई थी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे,
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
5: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
4: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
5: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
6: सखी सहेली।

0: इस गाने के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमें राही प्यार के ये कार्यक्रम सुनेगा थोड़ी ही देर में।

सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे साथ ही फिल्म से। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे नौशाद।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम था जब जब फूल खिले। हमें राई प्यार के इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए बीती रात फिल्म का गीत। आवाजें सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की हैं। शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं रोशन।

0: भीगी रात फिल्म का गीत सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे। इसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और इस गीत की धुन बनाई थी रोशन ने। हम है राही प्यार की, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम में चलिए लेते हैं एक बहुत छोटा सा अंतराल।

श्री 420 फिल्म का गीत लता मंगेशकर मन्ना डे की आवाजों में आप सुन रहे थे। शब्दकार शैलेंद्र थे और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। शैलेंद्र का ही लिखा एक और गाना आइए सुनते हैं, चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर मन्ना डे की आवाजों में। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: पर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
4: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा।
5: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।

0: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
0: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
0: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
4: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर

0: पाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को IPL क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसुर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार IPL चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर IPL खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कभी धूप मिली, कभी छांव मिली, कभी कांटों की सौगात मिली। हर ठोकर ने कुछ सिखलाया, हर मोड़ पे नई बात मिली। कुछ लोग मिले, कुछ बिछड़ गए, कुछ यादों में बस जाते हैं। अनजान रास्तों पर मिलने वाले हमें जीवन का मूल सिखा जाते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आइए आगाज करते हैं उदयपुर के दैनिक और आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का। आज के फिट लाइफ मंडे के इस बेहद रोचक अंक में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त अमित श्रीमाली और मेरे साथ हैं
1: अनीता।
0: तो स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: और अमित श्रोताओं को बता दें कि आज फिट लाइफ सोमवार में क्या है खास।
0: बिल्कुल, सबसे पहले सेगमेंट यानी कि टुडे एट ग्लांस में हम बात करेंगे ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स और विश्व दुग्ध दिवस की खास जानकारियों के बारे में। साथ ही प्रमुख स्थानीय खबरें और खेल जगत की खबर में आईपीएल अपडेट भी रहेगी। साथ ही हम भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के कार्यों और जीवन पर भी चर्चा करेंगे।
1: जी बिल्कुल सही आपने कहा। और साथ ही शहर की हलचल में हम बात करेंगे शहर में आयोजित विभिन्न इवेंट्स का केंद्र फतेह सागर। और आज है सोमवार तो श्रोताओं को हमसे जुड़ने का मौका भी हम देंगे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए श्रोता संवाद में। तो श्रोताओं को बताना है कि आज का नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम उनको कैसा लगा या आज वैश्विक अभिभावक दिवस भी है तो इस अवसर पर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं, कोई अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं तो हमसे कीजिए मैसेज करके 9462697568 पर। हम आपके मैसेज पढ़ेंगे 9:10 पर।
0: जी मैं नंबर एक बार फिर बता देता हूं 9462697568। जी हाँ यही हमारा नंबर है। और हेल्दी हैबिट्स में हम बात करेंगे पैकेज्ड फूड यानी कि जो आजकल हमारे प्रचलन में बहुत ज्यादा है उसको खरीदने और खाने से पहले कुछ ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में। तो आपके मैसेज का भी इंतजार रहेगा और आकाशवाणी पर मनोरंजन भी बराबर होता रहेगा। तो सुनते रहिए आकाशवाणी उदयपुर।

0: बिल्कुल श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। और जैसा कि हमने बताया था, बहुत से टॉपिक हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के बारे में। नीलम संजीव रेड्डी भारतीय राजनीति के उन राजनेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने सादगी, ईमानदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों को हमेशा सर्वोपरि रखा।
1: और कॉलेज के दिनों में ही वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए और 1931 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी कूद पड़े। एक युवा सेनानी के रूप में रेड्डी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और इस दौरान उन्होंने कई बार जेल की यात्रा की।
0: 19 मई 1913 को जन्मे आंध्र प्रदेश में, और तब से लगातार वे अपने काम से, अपनी चीज़ों से प्रभावित करते रहे हैं और देश सेवा के मार्ग पर चलते रहे हैं। 1977 में वे भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए और देश के ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्हें निर्विरोध चुना गया था।
1: आज़ादी के बाद रेड्डी ने राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर अपनी मजबूत पहचान बनाई। 1953 में जब मद्रास राज्य से अलग होकर आंध्र राज्य बना तो वे उप मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को जब भाषाई आधार पर नए और विशाल आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ तब नीलम संजीव रेड्डी उसके पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने राज्य के विकास, कृषि और सिंचाई व्यवस्था को सुधारने में अहम भूमिका निभाई और 1962 से 1964 तक दोबारा राज्य के मुख्यमंत्री बने।
0: आज उनकी पुण्यतिथि पर पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से हम उन्हें याद करते हैं, नमन करते हैं।

0: अब बात करें आईपीएल अपडेट की, तो कल का मैच बहुत ही ज़्यादा रोमांचक रहा था, जो कि हुआ था गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट खोकर 20 ओवर में 155 रन का स्कोर खड़ा किया था, जिसमें सबसे अधिक रन 50 रन नाबाद रहने वाले वॉशिंगटन सुंदर रहे, और रॉयल चैलेंजर्स ने 18 ओवर में ही इस रन स्कोर को अचीव कर लिया, 161 रन बनाकर ये मैच अपने नाम किया, 5 विकेट खोए। और सबसे शानदार जो बल्लेबाजी की है वो है विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की।
1: और रनों की बात करें तो ऑरेंज कैप यानी पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने का सम्मान भी वैभव सूर्यवंशी को मिला, जिन्होंने 776 रन बनाकर यह उपलब्धि अपने नाम की। वहीं गेंदबाजी में अपना जलवा बिखेरते हुए कगिडो रबाड़ा ने 29 विकेट हासिल किए और पर्पल कैप के विजेता बने। युवा प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाने वाला इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन पुरस्कार भी वैभव सूर्यवंशी के नाम रहा। इसके साथ ही उन्होंने अपने तेज और विस्फोटक बल्लेबाजी अंदाज के दम पर सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का खिताब भी हासिल किया। खेल भावना और अनुशासन के लिए दिए जाना वाला प्रतिष्ठित फेयर प्ले अवार्ड इस बार पंजाब किंग्स की टीम को प्रदान किया गया।
0: अगर बात करें वैभव सूर्यवंशी की, तो उन्होंने इस टूर्नामेंट में 5 बड़े पुरस्कार अपने नाम किए, जिसमें MVP, ऑरेंज कैप, एमर्जिंग प्लेयर और

सुपर स्ट्राइकर जैसे सम्मान शामिल हैं। साथ ही कल के मैच में विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने अपनी नाबाद 75 रन की पारी से आईपीएल में दूसरी बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत दिलाई।

0: मुश्किल राहों में भी जो सफ़र आसान लगता है, ये कुछ और नहीं मेरे माता पिता की दुआओं का असर लगता है। वाकई में बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके माता पिता होते हैं। माता पिता तो अपने बच्चों के लिए करते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। माता पिता के प्यार का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते, किंतु जब भी मौका मिले हमें उन्हें ये बताना चाहिए कि उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आज का दिन 1 जून का दिन हमें यही सिखाता है, यही याद दिलाता है कि जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उन्हीं के प्यार को जताने का आज का दिन है वैश्विक अभिभावक दिवस।
1: बिल्कुल, इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने यह निर्णय लिया था कि हर वर्ष 1 जून को दुनिया भर के माता पिता का जो योगदान है अपने बच्चों के प्रति, उसको सम्मानित किया जाए। इस पहल का उद्देश्य परिवारों की भूमिका को मजबूत करना और बच्चों को बेहतर पालन पोषण और उनके महत्व को रेखांकित करना भी है। आज के समय में जब हम जीवन की भागदौड़, काम के दबाव और डिजिटल दुनिया में परिवारों के बीच जो समय सीमित कर रहे हैं, उससे बचने के लिए, उसको सही तरीके से देखने के लिए माता पिता की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि प्रेम, सुरक्षा, नैतिक मूल्य और भावनात्मक सहयोग भी परिवार से ही मिलता है।
0: माता पिता अपने बच्चों का जीवन संवारने के लिए बिना किसी स्वार्थ के अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं। माता पिता के लिए हमेशा अपने प्राथमिकता होती है कि वे यही चाहते हैं कि उनकी संतान पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और उसके लिए वो अपनी खुशियां त्याग देते हैं, किंतु कई बार उनकी यह इच्छा बच्चे पर बोझ भी बन जाती है। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बेटा या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट तो अगर सिंगर बनने में है, क्रिकेट में है या पेंटर बनना चाहता है, तो ऐसे में उसकी रुचि का भी ध्यान रखें। खेलों में या सिंगिंग में रुचि रखने पर भी करियर बनाया जा सकता है, और उनकी रुचि का काम अगर वो होगा तो वो खुशी खुशी करेंगे और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, तो अपनी किसी भी चीज़ को उन पर न थोपें।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने अनीता, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारे माता पिता ने कितनी सारी चीज़ें अपने तक ही रखी हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों से सुरक्षित रखा है। जैसे कि अभी अभी नए शब्द आए हैं डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें, लेकिन पहले हमारे पेरेंट्स हमें इतने चीज़ें बताते ही नहीं थे कि परिवार में क्या समस्या है या क्या हो रहा है, और हम काफ़ी चीज़ों से बचे रहते थे। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स की एक थीम रखी गई है, जिसका जिसे टुगेदर फॉर पेरेंट्स कहा गया है, यानी कि माता पिता के साथ और माता पिता के लिए। बिल्कुल सही बात है,

0: और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे भी मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि दूध और दूध से बने हुए उत्पादों का जो पोषण है या जो महत्व है ख़ास तौर पर डेयरी उद्योग का और डेयरी उद्योग से जुड़े हुए किसानों की जो भूमिका है उनके प्रति लोगों को जागरूक करना।
1: वाकई में दूध जो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों न हो। जीवन में दूध का महत्व, उसके पोषण संबंधी फायदे और डेयरी क्षेत्र में आर्थिक योगदान को समझने के लिए हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी। पहली बार यह दिवस 1 जून 2001 में मनाया गया था और 1 जून को इसलिए चुना गया क्योंकि कई देश पहले से ही मई के अंत या जून में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मना रहे थे। इसलिए FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक स्तर पर एकजुटता दिखाने के लिए 1 जून की तारीख तय की थी।
0: बिल्कुल, और अगर भारत की हम बात करें तो दुग्ध उत्पादन में भारत लगभग 248 मिलियन टन दूध का उत्पादन करता है और दूध से बने हुए विभिन्न सामान बनाता है। भारत का कुल दूध उत्पादन का अगर हम बात करें विश्व के दूध उत्पादन का तो 25% हिस्सा भारत का है। लेकिन एक चीज़ जहां पर भारत थोड़ा पिछड़ रहा है वो है कि भारत बहुत कम दूध निर्यात करता है, लगभग 1% या 0.5%। वहीं पर न्यूजीलैंड 95% दूध निर्यात करने वाला देश है।
1: पिछले एक दशक की अगर बात करें तो लगभग 64% से अधिक दूध का उत्पादन भारत में बढ़ा है। डेयरी किसानों को समर्थन देने, पशु स्वास्थ्य और कृत्रिम गर्भाधान जैसी सुविधाओं के लिए सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय डेयरी कार्यक्रम चला रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा में दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और इस दिवस को मनाने के पीछे कई कारण हैं। वो ये है कि लोगों को ये समझाना है कि दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B12 और पोटेशियम का एक ये बेहतरीन स्रोत है और उन करोड़ों किसानों और श्रमिकों के योगदान को सराहना है जो सुबह से रात तक मेहनत करके हमारे घरों तक दूध पहुंचाते हैं।
0: जी बिल्कुल, और अनीता अगर हमने बात करें कि भारत चूंकि देश दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है, लेकिन अगर हम प्रति व्यक्ति जो दूध मिलता है या दूध से बने हुए उत्पाद मिलते हैं उसकी अगर हम बात करें तो भारत टॉप 10 देशों में भी नहीं आता। यहाँ पर प्रति व्यक्ति औसत दूध मात्र 485 ग्राम ही है, जबकि दूसरे देशों में डेनमार्क और मॉन्टेनेग्रो अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर लगभग 1 लीटर से ज़्यादा दूध प्रति व्यक्ति मिल पाता है।
1: जी बिल्कुल सही है, और हर साल एक थीम के साथ इस दिवस को मनाया जाता है। तो 2026 की थीम है महिला किसानों का सम्मान करना।

0: the song.
1: तो देखो अमित, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी या हमारी बदलती जीवन शैली का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है हमारा पैकेज्ड फूड। आजकल हर खाने की चीज़, चाहे वो चिप्स हो, बिस्किट्स हो, रेडी टू ईट मील्स हो, जूस, हर चीज़ मार्केट में मिल रही है। थोड़े से आलस की वजह से हम हर चीज़ मार्केट से तैयार खरीद लेते हैं और अपनी सेहत से खिलवाड़ कर बैठते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें पैकेज्ड फूड के डिब्बे पर लिखी होती किंतु हम उन बातों पर ध्यान नहीं देते। तो आज हम आपको बताएंगे स्वस्थ आदतें सेगमेंट में कि जब भी आप पैकेज्ड फूड खरीदते हैं और खाते हैं तो उसके पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना।
2: बिल्कुल सही बात है अनीता, क्योंकि हम लोग अभी इतने जागरूक तो हो गए हैं कि एक्सपायरी डेट देख लेते हैं, लेकिन एक्सपायरी डेट के अलावा भी पैकेज्ड फूड पर बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें देखनी चाहिए। खास तौर पर ख़रीदारी करते समय अगर पैकेज पर ट्रांस फैट या हाइड्रोजेनेट ऑयल या पार्टेबिलिटी हाइड्रोजेनेट फैट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये आपके हृदय के लिए यानी कि दिल के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक माने जाते हैं। साथ ही अगर सामग्री सूची जो कि कंटेंट उसमें लगाया गया है उस पर अगर हम बात करें तो उसमें कुछ ऐसे रासायनिक नाम भी होते हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो अगर नहीं समझ में आते हैं तो हम इंटरनेट के माध्यम से उन शब्दों का मीनिंग समझ सकते हैं। खास तौर पर काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें जैसे शुगर अगर ऐड है तो शुगर के लिए वो डायरेक्टली एडेड शुगर ना यूज़ करते हुए वहाँ पे सोर्सेज, ग्लूकोज सिरप, कॉर्न सिरप, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो हम उन शब्दों से कंफ्यूज ना हों बल्कि उन शब्दों का मीनिंग समझें और उनके मीनिंग को समझते हुए ही हमें सामग्री खरीदनी चाहिए।
1: आपने बिल्कुल सही कहा, और हमेशा चेक करें कि प्रोडक्ट अपनी एक्सपायरी डेट के कितने करीब है। उसमें लिखा होता है कि बेस्ट बिफोर और उसके बाद यूज़ बाय और एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है। और इसके अलावा कंपनी पैकेट के सामने बड़े बड़े अक्षरों में आकर्षक दावे लिखती है जो अक्सर भ्रामक होते हैं, जिसमें डाइट लाइट या लो फैट लिखा होता है, जिसमें कि नेचुरल ऑर्गेनिक होती ये चीज़ें होती है जिसको हम ध्यान नहीं दे पाते हैं।
2: बिल्कुल, और इसी के साथ में हमें खास तौर पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो सामग्री हम यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, उसके मेन तीन इंग्रेडिएंट क्या लिखे हैं। जो पहले तीन इंग्रेडिएंट लिखे हैं उनकी मात्रा अपने उस पैकेज्ड फूड में सबसे ज़्यादा होगी। अगर एडेबल ऑयल लिखा है तो वो ज़्यादा होगा, अगर मैदा लिखा है तो वो ज़्यादा होगा, तो इन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना है। और एक और चीज़, कई सारे ऐसे केमिकल्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो प्रिजर्वेटिव्स के लिए या उसको खाने के टेस्ट को बढ़ाने के लिए या फिर उसके कलर को बढ़ाने के लिए यूज़ होती हैं, उनके कोड लिखे होते हैं।
1: तो बिल्कुल सही बात कही है। और उसके अलावा हरा और लाल रंग का जो एक बिंदु भी लगा होता है जो आपको दिखाता है कि हरा है तो शाकाहारी है और लाल या भूरा है तो मांसाहारी का प्रतीक होता है, और खोलने के बाद उस पर लिखा होता है कि स्टोर इन कूल प्लेस या ड्राई प्लेस, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए।
2: और इसी के साथ घड़ी की तरफ देखें तो समाचार

0: का वक्त हो गया है। अभी आप समाचार सुनेंगे, प्रादेशिक समाचार जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में मृदा स्वास्थ्य को बेहतर करने खेत

0: अधिसूचना आज जारी होगी। इसमें प्रदेश की 3 सीटें शामिल। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी। 4 जून तक हीट वेव से राहत के आसार। और विश्व दुग्ध दिवस आज, इस साल की थीम महिला किसानों का सम्मान रखी गई है। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। देश में आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से इसका शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना और पंचायत स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अभियान में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
1: अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के असंतुलित उपयोग के कारण ये धरती माता बीमार हो रही है। इसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत आपके गांव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी गांव-गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। नकली पेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे, कैसे पहचाने, और अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थी भी चिन्हित किए जाएंगे।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी की जा रही है। इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट शामिल है। राजस्थान में 3 सदस्यों, भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। चुनाव के लिए नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब तक 1 आरए सहित 20 अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया है। वहीं 332 कार्मिकों को निलंबित किया गया है। साथ ही 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी कर भ्रष्टाचार के आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में लाया गया है। 17 कार्मिकों की पेंशन भी बंद की गई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन उनकी प्राथमिकता है। आईआईटी रुड़की की ओर से जेईई एडवांस 2026 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। इस साल 56,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में क्वालिफाई किया है। दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने जेईई एडवांस में पहला स्थान हासिल किया है। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम बनाई है। बोर्ड ने कहा कि वह पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिससे हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने बताया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और आईआईटी के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुष्कर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे पार्टी के राष्ट्रीय चिंतन शिविर के समापन समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान वे राजस्थान और दिल्ली के जिलाध्यक्षों को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि 10 दिन का ये चिंतन शिविर पुष्कर में आयोजित किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश का मौसम बदला हुआ है। लगातार पिछले दो दिनों से आंधी बारिश के दौर से तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट आई है।

बाड़मेर और जैसलमेर को छोड़कर बाकी जगह अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे मापा गया। नागौर में तड़के 4 बजे से शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। बारा और भीलवाड़ा में भी अल सुबह हल्की बारिश हुई। वहीं कल जैसलमेर में रेत का बवंडर उठा और दिन के समय ही अंधेरा छा गया। आसमान से दूर ही धूल का गुबार नजर आया। जिले के नाचना, सुल्ताना और मोहनगढ़ में बवंडर का काफी असर रहा। नाचना में ओले भी गिरे। वहीं मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर और हनुमानगढ़ के संगरिया सहित कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई है। सबसे ज्यादा 5.5 सेंटीमीटर बारिश कोटपुतली के शाहपुरा में दर्ज की गई। आंधी बारिश के प्रभाव से अगले 4-5 दिनों तक हीट वेव से राहत बनी रहने के आसार हैं। प्रदेश में आए प्रचंड तूफान और बारिश के कारण जयपुर विद्युत वितरण निगम के तंत्र को व्यापक क्षति पहुंची है। जयपुर और कोटा जोन में बड़ी संख्या में बिजली पोल, ट्रांसफार्मर और फीडर प्रभावित हुए। इनमें से 387 गांव में बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ा है। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने बताया कि इनमें से 366 गांव में बिजली आपूर्ति बहाल की जा चुकी है। वहीं 21 गांव में सप्लाई सुचारू करने के लिए टीमें जुटी हुई हैं। आज विश्व दुग्ध दिवस है। ये दिन वैश्विक स्तर पर खाद्य और पोषण के स्रोत के रूप में दूध के महत्व को पहचान देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम महिला किसानों का सम्मान रखी गई है। ये डेयरी उत्पादन, सतत कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देती है। विश्व दूध दिवस के मौके पर देश में अनेक स्थानों पर डेयरी और कृषि संस्थानों में सम्मान समारोह और जागरूकता शिविर रखे गए। उधर प्रदेश में पाली जिले के सादड़ी में विश्व दूध दिवस के मौके पर ऊंटनी के दूध का निःशुल्क वितरण कर इसके महत्व के बारे में बताया जा रहा है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। उन्होंने 1950 से 1970 के दशक में हिंदी, मराठी और अन्य कई भारतीय भाषाओं में फिल्मी गीत गाए। उन्होंने दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया और मशहूर गायक मोहम्मद रफी के साथ भी सैकड़ों गीत गाए।

0: प्रदेश में आज से बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी तथा मानव तस्करी के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान पुलिस का यह अभियान 30 जून तक संचालित होगा। इसके लिए हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अभियान के तहत होटलों, ढाबों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और फैक्ट्रियों में काम करने वाले बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार खिताब जीत लिया है। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में आरसीबी गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर चैंपियन बनी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास और बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार को आईपीएल 2026 का खिताब दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में मृदा स्वास्थ्य को बेहतर करने, खेती की लागत कम करने तथा रासायनिक खाद के संतुलित उपयोग के उद्देश्य से आज से खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। इसमें प्रदेश की 3 सीटें शामिल। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी। 4 जून तक हीटवेव से राहत के आसार। और विश्व दुग्ध दिवस आज, इस साल की थीम महिला किसानों का सम्मान रखी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी उदयपुर के दैनिक कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में। और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड दोनों ही चैनल पर एक साथ।
2: और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज है सोमवार और श्रोताओं को जुड़ने का मौका भी हम देंगे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। तो श्रोताओं को हमें बताना है कि आज का नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम आपको कैसा लगा या

0: आज वैश्विक अभिभावक दिवस के अवसर पर आप अपनी कोई बात या अपनी कोई राय हमसे साझा करना चाहते हैं तो कीजिए हमें मैसेज 9462697568 पर।
1: जी हाँ, नंबर है 9462697568।

0: हुए है और यही कारण है कि यहाँ VIP शादियाँ भी होती हैं। उदयपुर का दिल है फतेह सागर। यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल ही नहीं है बल्कि उदयपुर की लाइफ लाइन भी है। कला, संस्कृति और आधुनिकता को एक सूत्र में पिरोने वाला रंगमंच है। यही कारण है कि शहर में होने वाले प्रमुख सांस्कृतिक, संगीत और खेल आयोजनों की जब भी बात आती है तो फतेह सागर सबसे बड़ा और मुख्य केंद्र उभर कर आता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ आयोजित होने वाले इवेंट्स की।
1: बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर आयोजित होने वाले इवेंट्स की बात करें तो अभी हाल ही में हमने भी एक वॉकोथॉन जो कि आकाशवाणी परिवार ने किया था वो फतेह सागर से ही शुरू करके आकाशवाणी कैंपस तक रखा गया था। और इसी तरीके से कई सारे इवेंट्स हम लोग आयोजित करते हैं उदयपुर में, जैसे कि मैराथन, साइकिल इवेंट्स, म्यूजिकल इवेंट्स और कुछ पर्यटन इवेंट्स भी, साथ में फूड फेस्टिवल और फ्लावर फेस्टिवल भी हमारी सरकार द्वारा यहाँ पर आयोजित किया जाता है जो बहुत ही खूबसूरत है। अभी हाल ही में एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट जो कि पानी से जुड़े हुए खेलों का एक इवेंट यहाँ पर हुआ था आयोजित, जिसमें पूरे ही राजस्थान से और देश भर से खिलाड़ी आए थे, उन्होंने यहाँ पर भाग लिया था। और म्यूज़िक फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो उदयपुर का वर्ल्ड म्यूज़िक फेस्टिवल भी फतेह सागर पर आयोजित होता है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। अपनी विशालता और शांत पानी के कारण फतेह सागर नेशनल लेवल की वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं का भी केंद्र है। यहाँ रोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग जैसी राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप आयोजित की जाती है जिसमें देश भर के एथलीट हिस्सा लेते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे शहर का जो खास ये फतेह सागर पर लगने वाला मेला हरियाली अमावस का होता है और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसमें हस्तशिल्प, झूले, पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल लगते हैं और इस मेले का एक दिन पूरा विशेष रूप से महिलाओं और एक दिन पुरुषों के लिए होता है।
1: बिल्कुल, और साथ ही बात करें कि ये सारे तो बहुत बड़े लेवल के फेस्टिवल्स हैं, अगर हम स्थानीय कलाकारों की बात करें तो फतेह सागर झील के किनारे पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन होता है, उसके साथ में कुछ म्यूजिशियंस वहाँ पर हर रोज़ शाम को अपनी गिटार के साथ में और अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में वहाँ पर मौजूद रहते हैं। उसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर होती है, जैसे स्केटिंग, छोटे बच्चे वहाँ पर कंटिन्यू हमें लगातार मिल जाएंगे। और फतेह सागर पे सिर्फ पाल की बात को छोड़ दें तो सराउंडिंग एरिया में नेहरू गार्डन है, वहाँ पर भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। राजीव गांधी पार्क है, वहाँ पर भी एक बहुत अच्छा हमें स्पेस मिलता है, खुला स्पेस जहाँ पर इवेंट्स आयोजित होते हैं। और इधर सबसे खास बात, यहाँ पर एक चौपाटी है जहाँ पे अगर थोड़ी बहुत भी आपको भूख लगती है तो आप जल्दी से वहाँ पहुँच सकते हैं और शहर की धड़कन फतेह सागर पर ठंडी ठंडी हवा के साथ अपना पेट भर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, लेजर लाइट और साउंड शो भी होता है। ऐसे बड़े अवसरों और त्योहारों पर झील के पानी की शानदार लेजर शो और आतिशबाजी की जाती है जिसे देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग उमड़ते हैं। ऐसा है हमारा फतेह सागर, हमारे उदयपुर की झील।

0: और जैसा कि हमने श्रोताओं को बताया था, एक बार फिर से याद दिला देते हैं, आज के कार्यक्रम के बारे में अगर वो अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं तो कीजिए हमें मैसेज 9462697568 पर।
1: जी हाँ, नंबर है 9462697568।

0: तो अनीता, जैसा कि हम बात कर रहे थे, हम अपने श्रोताओं से बात करेंगे और हमें पहला संदेश प्राप्त हुआ है अंकिता जी का चित्तौड़ से, और वो कहती हैं आपका ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही प्यारा है और ख़ास तौर पर हर रोज़ सुबह जो आप हमें जानकारी देते हैं अलग अलग विषयों की, ये बहुत ही रोचक है
1: जी। और एक संदेश मेरे पास भी है, ये भोपाल पुरा से सविता शर्मा का है और इन्होंने लिखा है कि आज के जितने भी विषय थे वो सभी अच्छे रहे और अभिभावक दिवस की जो जानकारी वो इन्हें अच्छी लगी, क्योंकि इनके माता पिता नहीं हैं तो वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई। तो हमारे जो श्रोता हैं जिन्होंने हमें मैसेज किए उनका शुक्रिया। और इसके साथ ही प्रोग्राम का आखिरी गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं और लेते हैं श्रोताओं से इजाज़त। तो आज इस कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ अनीता और मेरे साथ थे
0: अमित।
1: दीजिए इजाज़त।
0: नमस्कार।

श्रोता संवाद में किरण कुमावत जी हमें मैसेज करती हैं कि जो आज आपने दूध की जानकारी दी, दूध के बारे में और उनके प्रोडक्ट के बारे में हमें बताया, बहुत ही अच्छा लगा। साथ ही पैक्ड फूड के बारे में जो जानकारी थी वो भी अच्छी थी, और माता पिता का जो दिवस है उसके बारे में जो जानकारी दी और फतेह सागर की जो जानकारी दी वो बहुत ही अच्छी थी। साथ ही सेक्टर 4 हिरणमगरी से सुशील यादव और रेणु यादव हमें मैसेज कर रहे हैं कि पैक्ड फूड और ट्रांस फैट की जागरूकता अच्छी लगी, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी स्वाद के चक्कर में फटाफट मिल जाने के कारण इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। और एक और मैसेज है कि धरती के रूप माता पिताजी हैं, ये मैसेज हमें किया है कमल जी सुहालका ने।

0: Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's coolest one.
1: हंसते हंसते आंखों से आंसू छलक जाते हैं जब किससे पुराने दिल को याद आ जाते हैं। गुजारे थे जो लम्हे साथ वो फिर से ताज़ा हो जाते हैं। कहाँ भुलाए जाते हैं वो पल जो दिल पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। FM बैंड 101.9 MHz पर ये FM रेडियो लेक सिटी। हमारी मॉर्निंग लोकल विंडो में आप सभी का बहुत सारा स्वागत। आज के

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लेक सिटी। 10 बजे वो प्रोग्राम जिसका आप करते हैं हर सोमवार को इंतजार, LCS के तराने, व्हाट्सएप के बहाने। 11 बजे यादों के झरोखों से, 11:30 बजे राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम होगा गोखड़ा, और 12:05 से आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के प्रसारण। तो सुनते रहिए FM लेक सिटी।

और अब बात करें मौसम की, तो जो नौतपा गर्मी से बेहाल हुए थे, पश्चिमी विक्षोभ के कारण नौतपा का असर कम हो गया। शनिवार रात को आंधी इतनी तेज चली कि कई जगह पेड़ गिर गए, बिजली के पोल ट्रांसफार्मर गिर गए। इसका नतीजा ये हुआ कि रात भर बिजली गुल रही, किंतु आंधी तूफान के कारण तापमान में गिरावट जरूर आई है। हाल फिलहाल 2-3 दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। और कल के तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल ने फिर याद किया, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे। ऐसे मशहूर गीतों को आवाज देने वाली मशहूर पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर नहीं रही। रविवार शाम मुंबई स्थित अपने निवास पर इन्होंने अंतिम सांस ली। उनके जाने से रोमांटिक और भावपूर गीतों का एक सुनहरा दौर थम गया। उनकी आवाज़ लता मंगेशकर से इतनी मिलती जुलती थी कि कई बार आवाज़ में फर्क नहीं कर पाते थे। 1960 और 70 के दशक की गायिका ने 3000 से भी ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए। इनमें 850 से ज्यादा हिंदी गीत थे। उनके योगदान को देखते हुए 2023 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: और अब आपको सुनवाते हैं गुड मॉर्निंग लेक सिटी प्रोग्राम का आखिरी गीत।

गुड मॉर्निंग लेक सिटी प्रोग्राम बस यहीं तक, सवेरे के 10 बजे हैं और अब आप सुनेंगे आपका पसंदीदा प्रोग्राम LCS के तराने व्हाट्सएप के बहाने। इसमें गीत होंगे हमारे और पसंद होगी आपकी जो हम तक पहुंचेगी व्हाट्सएप के ज़रिए। आपको बता दें कि जो भी गीत जब बजता है आप तभी मैसेज करें और किसी भी गीत की फरमाइश भी ना करें और एक साथ बहुत ज़्यादा नाम भी ना लिखें। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9462697568 और अब बताते हैं फिल्मों के नाम जिनके गीत आप सुनेंगे। फिल्में हैं बैराग, बन फूल, एक फूल दो माली, धरती कहे पुकार के, हिम्मत वाला, शिकार, जानवर और भीगी रात। चलिए प्रोग्राम का पहला गीत फिल्म बैराग से, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

सुनो रे सुनो एक बात सुनाऊं, ओए सुनो रे सुनो एक बात सुनाऊं, झूठ है या सच है ये तुम जानो, अरे झूठ है।

लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे। फिल्म थी बैराग और इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं उदयपुर वारियों की घाटी से, सत्यनारायण वारी, शांति वारी, जगदीश चौक से सीमा वारी और नाहर सिंह वारी। इसके बाद हैं अवधेश शर्मा, अशोक शर्मा, रोहित, सनम, ब्रजेश, हीरा लाल, मुकेश शर्मा, दिलमणि शर्मा, श्री कृष्ण शर्मा, गाँव डूमड़ी, उपखंड डुमराव, ज़िला बक्सर, बिहार के ये हमारे श्रोता हैं। और उसके बाद जो हमको संदेश मिला है और वो है टैरोवाल नवाशहर पंजाब से, गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी, प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिमा और वाणी थांडी, शुक्रिया के साथ इनका संदेश हम तक पहुंचा है। ओल्ड आरटीओ ऑफिस रोड प्रताप नगर उदयपुर से हैं मनीष यादव, ममता यादव और इनके साथ हैं दर्शिल। उसके बाद मलोट कैंप पंजाब से हैं सतीश मिगलानी, अनमोल और विवैन मिगलानी, शुक्रिया के साथ इनका भी संदेश हम तक पहुंचा है। और उसके बाद हैं दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नौखेलाल वर्मा हैं। मम्मी को ये गाना बहुत पसंद है उन और ये लिखा है भीलू राणा कॉलोनी उदयपुर से सोनू और पिंकी ने। लाल सिंह कुमावत, मीना कुमावत, मोहित कुमावत, मीनाक्षी कोमल, खेरा दीवाड़ा, रंगीला भैरव चौक से हैं शिवलाल।

जी कुमावत, छगन देवी कुमावत, राजकुमार मोहित चार भुजा मंदिर खैराती वाड़ा के श्रोता हैं, और उसके बाद है विनोद जी कुमावत, निलय कुमावत, गजेंद्र जी कुमावत, जया कुमावत, कुशल जी और कोमल कुमावत, ये हैं सेक्टर 5 हिरण मगरी के श्रोता। शुभ प्रभात। और बैरागी फिल्म के गीत को पसंद किया है तरुणा झमक पूर्बिया, सोहन देवी पूर्बिया, पूरब पूर्बिया, लक्ष्मी लक्ष्य राज पूर्बिया, हाथीपोल उदयपुर के श्रोता हैं, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, पूरा वर्मा परिवार, ये हैं ग्राम पंचायत बठेड़ा पांडन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के श्रोता। हरजिंदर छिंदा, जसवीर छिंदा, सीता और गीता जिन्हें गीत अच्छा लगा है, और उसके बाद हैं अंबिका नगर हिरण मगरी सेक्टर 5 उदयपुर से प्रकाश चंद्र आमेटा, इंदिरा देवी आमेटा, शैलेंद्र बाबू आमेटा, सुरुचि नेहा, चेरी खिया, लिली आमेटा और पूरा आमेटा परिवार है। उसके बाद है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, तहे दिल से शुक्रिया के साथ अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हैं हिंदुस्तान रेडियो श्रोता संघ के सदस्य, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के हैं, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम, आशीष विश्वकर्मा। उसके बाद हैं श्वेता रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू हैं। उसके बाद हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी जिन्होंने इस गीत को पसंद किया है। और उसके बाद है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार के श्रोता, बडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, खेल बाजार पानीपत से नरोश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का जिन्हें गीत अच्छा लगा है। भोपालपुरा उदयपुर से भाग्यवंती चौहान, सत्येंद्र चौहान, तरुणा चौहान, एडवोकेट कमलेश चौहान, मधुकांता चौहान, नव्याश्री, नित्याश्री और हम सभी को ये गाना बहुत अच्छा लगा, इन्होंने ऐसा भी लिखा है। और विकास बनसोड़े, रेखा बनसोड़े, अदिति बनसोड़े, वैभव शिंदे, हिल स्टेशन खंडाला के ये हमारे श्रोता हैं। और उसके बाद हैं ये बड़ी उदयपुर से हैं सिराज हुसैन, शिरीन और मोतीवाला फैमिली को ये गीत अच्छा लगा है। तो आप सभी का शुक्रिया जिनको ये गीत अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद है कृष्ण पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवान, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवान, राजेंद्र सिंह ओबेराय और गणी खम्मा के साथ अगला संदेश हम तक पहुंचा है, वो है ये काष्ठकला मार्ग से अमृत लाल जी, रेणु और रविशंकर, हनुमान जी मंदिर से अशोक जी, सीता देवी सूरज, ताशु हिनू और लाल मगरी सेक्टर 7 से है शांता देवी, मनोज, सुनील और पूरा परिवार जिन्हें गीत अच्छा लगा है। उसके बाद है इसी गीत को पसंद किया है धारावती और हमारे घर के सभी सदस्य हैं बालकृष्ण जी और राकेश जी मेहरवा उदयपुर, गोवर्धन विलास के घणी खम्मा के साथ इन्होंने संदेश हम तक पहुंचा है। चेतक सर्कल से हैं मुकेश जिंगर, रेणु जिंगर, प्रेमपुरी गोस्वामी सहेलियों की बाड़ी से अजय जिंगर, प्रिंस जिंगर, कुलदीप सज्जन कॉम्प्लेक्स आज़ाद नगर के श्रोता, कृष्णपुरे से आयुष गरिमा, राहुल पायल, कृष्णा इंदिरा, मयंक भव्य, राज भंवरीबाई और लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ के सदस्य और उनके साथ हैं भंवर लाल जी नायक। चलिए प्रोग्राम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं बन फूल से और उसके बाद जो बचे हुए नाम हैं वो आपको पढ़कर सुनाएंगे।

बन फूल। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी, और उसके पहले बैराग फिल्म का गीत आपने सुना। इसको पसंद किया है कभी रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहार बालो छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामुड़िया, अजय देव तामुड़िया, तुषार देव तामुड़िया और मास्टर अल कबीर हैं। और उसके बाद है गुड मॉर्निंग के साथ अगला संदेश हम तक पहुँचा है कुमार राजेश नागौरी का। इनके साथ है वीना नागौरी, वैभव नागौरी, दिव्या नागौरी और नन्ना सा प्यारा सा मास्टर अधिराज नागौरी। शिव पार्क दुर्गा नर्सरी से बैराग फिल्म के लिए इन्होंने संदेश भेजा है। नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, रसीद वारसी, अनस यशफ और सिकंदरा राउत से मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन और शुक्रिया के साथ इनका संदेश हम तक पहुँचा है। और गांव खरकड़ा चौबीसा से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोट, तमन्ना बोट। उसके बाद हैं कुवैत से ताहिर अली, अमतुल्ला और हसन को भी ये गीत काफ़ी अच्छा लगा है। और उसके बाद मुकेश वैद्य, सिसारमा उदयपुर, मनन वैद, ईशानी वैद, शीला वैद, थैंक यू समस्त चौहान परिवार है इनके साथ, देव प्रसाद आमेटा, प्रकाश चंद्र आमेटा और पूरा आमेटा परिवार हैं, कानौड़ के हैं ये लोग। और उसके बाद हैं सिमरन और पिंकी, बुलाराना कॉलोनी से हैं और इन्होंने लिखा है किसी भी गीत में हमारा नाम शामिल कर लीजिए, तो आपका नाम शामिल हो गया है। और उसके बाद है मीनाक्षी शर्मा, प्रदीप कुमार शर्मा चिंतामणि की घाटी से। और उसके बाद हैं गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली के श्रोता हैं। बनफुल फिल्म के गीत को पसंद किया है महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी और प्रगति नाचानी हैं। बनफुल इस फिल्म के गीत को पसंद किया है सुथारवाड़ा उदयपुर से नरोत्तम गौड़, यश गौड़ और हिमांशु गौड़ ने। बैराग फिल्म का गीत पसंद किया मल्ला तलाई से फैयाज हुसैन रसिया, फरीदा बानो, मोहम्मद सैफ और रुबीना, और इनके साथ

नितिन और मयंक शर्मा हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेचा, पूनम गगनेचा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित पाहुजा, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, ये पहाड़गंज मुल्तानी ढांगा से हैं। और उसके बाद संबलपुर कांकेर से हैं फागूराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, जिन्हें भी गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद हैं ये, उसमें ये लिखा है कि जीजा धारावती से है कमल सुहाल का, पूरा परिवार है इनके साथ। और उसके बाद है कौशल्या जिसवाल का, प्रतीक्षा और राकेश जिसवाल का, श्रोता संघ, जेपी रेडियो श्रोतांक संघ के सभी सदस्य हैं, और बाबू भाई और भारती देवी, जिन्हें भी बनफूल फिल्म का गीत अच्छा लगा है। आप सुन रहे प्रोग्राम LCS के तराने व्हाट्सएप के बहाने। यदि आपको भी कोई गीत पसंद आता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9462697568 पर। अगला गीत फिल्म एक फूल दो माली से।

भावना रावत, नितिन रावत, जगदीश चौक से उमावारी साक्षी वारी, इन्होंने बैराग फिल्म के गीत को पसंद किया है। और उसके बाद हैं किंजू कुमावत, शौर्य कार्तिकेय, दादाजी दादी जी, हिरणमगरी सेक्टर 5 उदय पार्क से, परमानंद कुमावत, लाल जी सभी साथी धान मंडी उदयपुर से, संजय कुमावत, कविता कुमावत, राकेश मीना, आर के पुरम उदयपुर के ये हमारे श्रोता हैं। और उसके बाद मल्ला तलाई उदयपुर से जैनब और तस्नीम फातिमा उमे हानी को ये सॉन्ग अच्छा लगा है, तो इनको भी गीत अच्छे लग रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद हैं संजय शर्मा, गीता शर्मा, निकेश शर्मा, विकास शर्मा, नौनिया मोहल्ला, जमानिया गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं। एक फूल दो माली के लिए इन्होंने अपनी पसंद हम तक भेजी है। सुबह का राम राम के साथ इनका संदेश हम तक पहुँचा है और इन्हें ये गाना अच्छा लगा है। और ये हैं उदयपुर रामदेव जी मंदिर से मनोज जी कुमावत, सुंदर देवी कुमावत, किरण और ललित जी, अजय भावना, हेमलता, विनायक जी और यशस्वी सिद्धि, निष्ठा और प्रतिष्ठा भी इनके साथ हैं। प्रकाश कनौजिया, ऋषि कनौजिया, मलय कनौजिया अपोजिट आयुर्वेद कॉलेज से हैं। और उसके बाद हैं अकोट महाराष्ट्र से बांटू पाटिल, सविता पाटिल, नितिन पाटिल और नलिनी पाटिल। उसके बाद हैं रामचंद्र टेलर, लीला देवी टेलर, कल्पेश पंवार, पिंकी मनस्वी, चैतन्य और कार्तिकेय, प्रभात नगर, हिरणमगरी सेक्टर 5 के ये हमारे श्रोता हैं। और उसके बाद हैं कमल कुमार सुहालका, वीरेंद्र सुहालका, डॉक्टर दीप्ति सुहालका, सूर्य प्रकाश सुहालका, अध्यक्ष सुहालका, परिवार समाज, रागिनी सुहालका और पूरा परिवार इनके साथ हैं। उसके बाद एक फूल दो माली के गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं आयुर्वेद चौराहक से अशोक चौहान, मंजू चौहान, उषा चौहान, पनिहारी वारियों की घाटी से दीपक रावत, किरण रावत और हैं साथ में नक्श रावत, और खांजीपीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, फरीदा शबनम, नेदा इरम कलीम। और उसके बाद हैं प्रताप नगर से नरेश दवे, रंजना दवे और अंशुल दवे, राजस्थान रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य हैं इनके साथ और इन्हें सारे गीत अच्छे लग रहे हैं। रिस्पेक्टेड होस्ट दीदी जी नमस्कार जी, सॉन्ग पर्दा हटा दो बहुत ही अच्छा लगा, ये इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद हैं लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू। चलिए तमाम श्रोताओं का शुक्रिया जिन्हें हमारे गीत अच्छे लग रहे हैं, प्रोग्राम को सुन रहे हैं और सराह रहे हैं। चलिए अगला गीत फिल्म धरती कहे पुकार के से।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म धरती कहे पुकार के का गीत। लेकिन आपको बता दें कि एक संदेश हम तक पहुंचा है और वो है एक फूल दो माली के लिए, और वो है विजय व्यास, उषा व्यास, जयेश व्यास, विनीत व्यास, पूनम व्यास, आशीर्वाद नगर यूनिवर्सिटी रोड के हमारे श्रोता हैं, और सेक्टर 9 से हरीश जिंगर, मंजू जिंगर, जय जिंगर और माधवी जिंगर, छुटकी और कीटू, सभी गीत इनको बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और इनके साथ हैं नसीराबाद, महेंद्र डाबी, ममता डाबी और हानी गुना। उसके बाद है धरती कहे पुकार के लिए रहमान कॉलोनी उदयपुर से अब्दुल समद फिरदौस बानू, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रजा जिन्हें गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद हैं ये हैं सेक्टर 7 से शांता देवी, मनोज, सुनील कुमावत जिन्हें गीत बहुत अच्छा लगा है। तो उसके बाद हैं 150 एन रोड भोपालपुरा से राजेश भंडारी, नम्रता भंडारी, एडवोकेट लक्ष्य राज भंडारी और ये हैं पृथ्वी राज भंडारी। अगला संदेश हम तक पहुंचा है और ये है शक्तिनगर उदयपुर से संतोष खतूड़िया, काम्या खतूड़िया, विकास खतूड़िया, भानु खतूड़िया और हितांश खतूड़िया। अगला संदेश है, उन्होंने भी लिखा है कि गाने अच्छे हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और ये लिखने वाले हमारे श्रोता हैं बड़गांव रंगास्वामी कॉलोनी से शिवदास रंगास्वामी, श्रीमती द्रौपदी रंगास्वामी, साधना रंगास्वामी, पूजा रंगास्वामी, भानु प्रताप दास रंगास्वामी, महिमा, भास्कर, चित्रांशी, शांति भाभी जी, कमला भाभी जी, भगवान दास जी रंगास्वामी और पूरा खुबानी परिवार। अगला संदेश पढ़ते हैं और वो हैं ये हैं कोटवार नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय और अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुविधा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और उनके साथ हैं प्रांजल राय। एक फूल दो माली के लिए है कुतुपुरा उदयपुर से अशरफ खान, रईसा खातून, मंजू निम्मी, असीफिट रोड से नजीब खान, सबिया खानम, शीबा और शैला। गीत इन्हें बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और थैंक्स के साथ इन्होंने मैसेज किया है। अगला संदेश हम तक पहुंचा है शशांक कुमावत, कार्तिक मोहित, पल्लू यूवी कुमावत, हिरण मगरी सेक्टर 5 से नानजी, भरत जायसवाल, लालजी, दिलीप जी, लक्ष्मी मार्ग अमल का कांटा के हमारे श्रोता हैं, शुक्रिया मेहरबानी के साथ। अगला संदेश है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा हैं और दुष्यंत और जिज्ञासा 55 बजाज नगर उदयपुर के श्रोता हैं, राजकुमारी विपिन गोस्वामी चंदनवाड़ी प्रेम नगर से, मनीष टेलर और बाबू धाबाई सीमेंट फैक्ट्री उदयपुर से, अशोक आनंद, मीनू नैनानी प्रभात नगर हिरण मगरी सेक्टर 5 से, कमलेश जांगीड़, गोपाल जांगीड़, गणेश जांगीड़, सुरेश जांगीड़, संजू वर्मा अजमेर जिले के विजयनगर में रहने वाले अभी शिमला से सुन रहे हैं, यहाँ वुडन

फर्नीचर का काम हम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप काम के साथ साथ रेडियो भी सुन रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को सराह भी रहे हैं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अगला संदेश है आदर्श नगर मलोड पंजाब से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा, थैंक यू के साथ है। उसके बाद हैं सत्येंद्र भावसार, ऋतु भावसार, राहुल भावसार, दामिनी भावसार, गला मंडी शहर मध्य प्रदेश के हैं, चंद्रशेखर भावसार, संगीता भावसार, कपिल भावसार, दामिनी भावसार, लविशा भावसार, तीन मोहाली चौटा उदयपुर के श्रोता है, ओम प्रकाश भावसार, मधु भावसार, नीरज भावसार, प्राची भावसार, दीपांश भावसार, सुरभि भावसार और नन्ना सा नक्शय और तीन मोहाली चौटा उदयपुर के ये श्रोता हैं। राजकुमार शर्मा, पुष्पा शर्मा बाबेलों की सहरी से हैं, मुकेश भावसार, पद्मिनी भावसार, राहुल भावसार, ये इन्होंने रिपीट कर दिया है। चलिए अगला जो संदेश है वो है लोसिंग से बंटी भाई, नारायण, उर्मिला, हीना और सुमन, ओल्ड इज गोल्ड, ये बिल्कुल सही बात है, पुराने गीतों का खैर मुकाबला ही नहीं होता है। अगला संदेश जो है वो पटेल नगर मलोड से है, डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और इनके साथ गुड्डू, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज हैं। उसके बाद हैं ये हैं राजकुमार माथुर, स्मिता माथुर, निलय माथुर, अक्षिता माथुर, आलिंद माथुर, बोहरा गणेश जी उदयपुर के श्रोता हैं, बोहरवाड़ी से आशिक आलम, शब्बीर टेलर, ताहिर लड्डू और सिराज हैं इनके साथ, सदर बाजार कुरावली से हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा है। उसके बाद हैं मुकेश माथुर और स्वर सम्रागी लता मंगेशकर, कमल सुहाल का, कौशल्या सुहाल का उदयपुर से, कमल श्याम जी मठपाल, माया जी मठपाल और सचिन जी हरसोल, पूजा आनंद विहार सेक्टर 4 के श्रोता हैं। लेक सिटी के तनाने व्हाट्सएप के बहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, एक फूल दो माली के लिए संदेश हम तक पहुंचा है, ध्वनंत्री नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं ये अशोक सिंह, सुनीता सिंह, प्रीति सिंह, रितु सिंह, कृषि सिंह, प्यारी गुड़िया वेदा सिंह भी हैं इनके साथ। और उसके बाद है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो और तहे दिल से शुक्रिया के साथ इनका मैसेज हम तक पहुंचा है। और उसके बाद बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष रजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना भी हैं इनके साथ। गणेश नगर महावीर से हैं महावीर जैन चित्तौड़ा और तुलसीराम कुमावत, कांता कुमावत, तौसिक रवि, महादेव मंदिर खैराती वाड़ा के श्रोता हैं। उसके बाद हैं वासु जांगीर और भूमि, सुनीता, दुर्गा, मनोज जांगीर और गोपी हैं इनके साथ, सेक्टर 7 के श्रोता हैं। रमेश टेलर, अंजू मयंक, तनिषा, लक्षिता टेलर परिवार गारियावास रोड उदयपुर के श्रोता हैं। धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा, पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान के श्रोता हैं और इन्हें भी सारे गीत अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद है लाल जी, गोविंद जी, कुशल जी, खैरातीवाड़ा, रंगीला, भैरव चौक उदयपुर के श्रोता, तो तमाम श्रोताओं का शुक्रिया जो हमें मैसेज कर रहे हैं। अगला गीत फिल्म हिम्मतवाला से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें।

हैं विक्रम शर्मा, नरेंद्र नहाटा, उमंग नहाटा, राहुल शर्मा, अक्षय शर्मा, अमर सिंह, दिलीप चत्तड़ा, सुनीता वशिता, भंवर वशिता, गौतम वशिता, राहुल अगरबत्ती, रामद्वारा चौक, धूली बावड़ी के ये हमारे श्रोता हैं। और उसके बाद हैं माँ लक्ष्मी मैचिंग साड़ी से हैं, ये हैं गारियावास मेन रोड उदयपुर के श्रोता रमेश टेलर, अंजू मयक, तनिषा लक्षिका और पूरा परिवार इनका है साथ में। और नागा नगरी से अब्दुल भाई, बाबू भाई, टिंकू भाई, सोनू भाई और सैफन भाई जिन्होंने इस गीत को पसंद किया है। और उसके बाद हैं सिंधी कॉलोनी डूंगरपुर से हैं, ये हैं खतुड़िया, कशिश हसीजा, दीपक हसीजा, मीर हसीजा, कियू और निकिता खतुड़िया, संतोष खतुड़िया और यज्ञ सालवी दूत तलाई उदयपुर के ये श्रोता हैं। और उसके बाद है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। डूमर राम बिहार से हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अबिदा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से हैं राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। उसके बाद हैं रोशनलाल सालवी, राजकुमारी सालवी, ललित, जमुना, मधु, ज्योति, पूनम, सचिन, विवान, शैतविक, पूरा सालवी परिवार, चौकीदार आवास, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर से। और इनको भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। रामपुरा से नारायण सेन, फिल्म हिम्मत वाला के लिए गुड मॉर्निंग के साथ इनका संदेश हम तक पहुँचा है। और धरती कहे पुकार के इसके लिए संदेश है, यह है कोलपोल उदयपुर से गोपाल तंबोली, कांता तंबोली और तिलक तंबोली, राजस्थान रेडियो श्रोता संघ के सदस्य, धन्यवाद के साथ इनका संदेश है। लाल सिंह कुमावत, मोहित कुमावत, मीनाक्षी कोमल, रंगीला भैरू चौक, खैरातीवाड़ा उदयपुर के श्रोता है। हेमा कनौजिया, लता कनौजिया अपोजिट आयुर्वेद कॉलेज से हैं हिम्मत वाला गीत के लिए। ग्राम नहोना ससारमा से हैं ये भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल, जयनाथ सिंह, जगदीश सिंह, दशरथ सिंह, विमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र और डमरू कलाकार। ये अगला संदेश जो है वो हिम्मत वाला के लिए है और ये हैं भरत जायसवाल, सोनी गरासिया, गाँव मांडवा, डूंगरपुर राजस्थान के श्रोता हैं। उसके बाद हैं ये उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंडेरिया छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं। वासु गौरव भक्ति हिरण मगरे उदयपुर से, मलियाना सरदना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जिव्यम जैन हैं। आस संस्थान सदस्य उदयपुर से रामचंद्र पवार, तुलसीराम दैया, डी के चौहान, अशोक कुमार सोलंकी, कैलाश महेश्वरी, कृष्णकांत कनेरिया और इनके मित्रगण हैं। साथ में अगला संदेश है गांव खारिया ढांडी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजाणिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश।

आशा भोसले की आवाज़ में सुन रही थी शिकार फिल्म का गीत, और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं मोहम्मद सलीम शाह, रज़िया बानो, इनाया टेलर, इस्ता इकरा, मुस्तफ़ा कॉलोनी, मस्जिद एरिया सलुम्बर के ये श्रोता हैं। और उसके बाद जो संदेश है सज्जन नगर उदयपुर से मुसरत जहाँ मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद इसरात बालू, अफिना और राधा हैं। और उसके बाद हैं ये हैं, बार बार मैसेज न करें, एक बार आपका नाम आ जाता है तो आप दोबारा मैसेज न करें। चलिए अगला नाम है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, धनोरी तेलीवाड़ा के ये श्रोता हैं। और उसके बाद हैं जयपुर से राजेंद्र अरुणा वैद्य, मुंबई से विनोद रंजना जी राजावत, हरिगढ़ से मनोज मनीषा जैन, संभाजीनगर से संयम सपना जैन, उदयपुर से राजकुमार रेणु जैन हैं जिन्हें ये गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद हैं दादा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, और ये हैं चौटाला हरियाणा के श्रोता हैं। शिकार फिल्म के गीत को पसंद किया है उदयपुर वारियों की घाटी से हरीश रावत, मीना रावत, एसएन रावत, भोपालवाड़ी से रवि भाई, सत्तू भाई, दिलीप खत्री, वारियों की घाटी से गुनगुन। और लिखते हैं साथ में कनीता जी, आज गाने बहुत अच्छे बजाए, दिल से शुक्रिया। तो वारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इसमें गीत हमारे होते हैं लेकिन आपकी पसंद को ध्यान में रखते हुए ऐसे गीत चुनकर लाते हैं जो हमारे श्रोताओं को पसंद आए, तो शुक्रिया आपका। खम्मागणी के साथ तुलसीराम जी चौहान सूरजपुर से हैं, गजेंद्र सिंह सारंग देवोत, भव्यराज सिंह तारंग देवोत, भुरकिया खुर्द बाहिड़ा, भूपेंद्र सिंह चौहान, शेर सिंह चौहान, बाहिड़ा चौहानों की हवेली से, गोपाल चौहान ठोकर चौराहा उदयपुर से, मनोज वागड़ी, एडवोकेट महेश हैं, और ये भव्य सिंह सारंग देवोत बुकरिया खुर्द बाहिड़ा से, भूपेंद्र सिंह चौहान, शेर सिंह चौहान और गोपाल चौहान ठोकर चरा उदयपुर से, मनोज वागड़ी, एडवोकेट महेश वागड़ी, आदर्श नगर पहाड़ा से विकास सिंह जयपुर, कुशाल वागड़ी, मन वागड़ी ये हैं मकान नंबर 14 से, ललित सिंह चौहान कांकरवा, महेंद्र चौधरी, ओम प्रकाश चौधरी गोकुलपुरा आयड़ से, उमेश दाहिमा, हेमेंद्र दाहिमा दक्षिणी आयड़ कलावाटी से, इंदर सिंह राजावत संजन गढ़ रोड से, दीपेश चौहान ये हैं हाथी पोल से। उसके बाद सदर बाजार मारवाड़ बिलारा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुणा चौहान और प्रतीक चौहान, धान मंडी उदयपुर से कृष्ण कुमार हरिव्यासी, सरोजबाला हरिव्यासी, मेघा और गीत हरिव्यासी, सैफी कॉलोनी खांजी पीर से डॉक्टर निदा, अनाबिया रेहाना बानो, मिफ्ता हुसैन, फरीदा जब्बार सुल्तान और डॉक्टर नाहिदा हैं, चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा, कुमारी कृष्टि पटवा ये धरनी सरगांव छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं। उसके बाद हैं बड़ी सादड़ी से जगदीश पुष्पा टेलर, रामचंद्र, लीला देवी पंवार, दिलीप कुमार, जमुना चौहान, प्रकाश चंद्र और विद्या कनेरिया, घंटागढ़ से हरीश सोनी, मांगीलाल जी, दीपक कुमावत, नरेश जी पाहूजा, शामिल भाई और नाहर सिंह लाल जी सोनी, और इन्हें ये गीत अच्छा लगा है। कमल सोनिया, हरीश, मोनिका, भावेश, मीनाक्षी, आयुष, मंथन, प्रशा, हर्षल, रोनित जैन तुलसी नगर भुआणा के श्रोता हैं। और ये हैं लंका चौक बहरवाड़ी से हैं शरफुल, सैफी साइकिल, सैफी शबुन, हुसैन आर ओ, दीपक प्रजापत, हातिम जैनब टेलर और शौकत तमसी इलियासा असीन। चलिए एक ब्रेक के बाद अगला गीत फिल्म जानवर से

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

जानवर फिल्म के गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं हरिशंकर शर्मा, जी शर्मा, रीना शर्मा, काजल शर्मा, मारवाड़ी स्ट्रीट, रविंद्र सरणी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के श्रोता हैं। बाबूलाल जी, दिनेश टांक, मुकेश टांक, पुष्कर टांक, सूरज पोल, रीगर कॉलोनी से दिनेश जिंगर, मोहित जिंगर, इंदु जिंगर, भूत महल के ये हमारे श्रोता हैं। और इसी गीत को पसंद करने वाले मावली से सुरेश जी, रक्ष जी और लक्ष्मण जी। इसके बाद हैं जानवर फिल्म के

0: हम दिया है लाल चढ़ी हम दिल से गए।
1: जानवर इसी एक फिल्म के गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं। किशोर टेलर, जयंत राठौड़ मालदा स्ट्रीट के ये श्रोता हैं। उसके बाद हैं प्रेस कॉलोनी खांजीपीर से रियासत अली जाहिदा, बानो इमरान, अली निगार परवीन, इरफान अली, जाकिरा बानू, और ये हैं मुन्ना भाई स्वर्णिकार, पिंकी स्वर्णिकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णिकार। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। ये हैं गोल्डन रेडियो श्रोता संघ उत्तर प्रदेश के श्रोता। और उसके बाद करजाली हाउस से हरीश सोनी, पवन सोनी, चंद्रप्रकाश सोनी, त्रिलोक सोनी, इन्हें भी गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, ये हैं जमशेदपुर के श्रोता।

भीगी रात इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं और इस गीत को पसंद किया है पंकज आराध्या जानवी शीतल अनिल शुभम ये हैं सुभाष नगर उदयपुर से

गोविंद जी, राजकुमार, कैलाश, नवीन लाल जी, श्रीनाथ मार्ग खैराती वाड़ा उदयपुर से ये हैं और उसके बाद है, आज सभी गाने लाजवाब और शानदार रहे, आपकी चॉइस को सलाम, ये लिखने वाले हैं राजकुमार जैन। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।

एलसीएस के तरह ने व्हाट्सएप के बहाने प्रोग्राम बस यहीं तक। उन तमाम श्रोताओं का शुक्रिया जिन्होंने हमें मैसेज किए और हमारे प्रोग्राम को पसंद किया। आपने ट्यून किया एफएम रेडियो लेक सिटी। सवेरे के 11 बजे हैं। अब प्रोग्राम यादों के झरोखों से। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे उन पुरानी फिल्मों की, उन गीतों

अब प्रोग्राम यादों के झरोखों से। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे उन पुरानी फिल्मों की, उन गीतों की बात करेंगे जो सिर्फ यादों में ही हैं, क्योंकि पुरानी फिल्मों की हर बात अलग हुआ करती थी, जिसमें सिर्फ सादगी, गरीबी, गांव ही गांव दिखाते थे। कोई ग्लैमर नहीं होता था, कोई फैशन नहीं हुआ करता था। उन्हीं की बात करेंगे प्रोग्राम यादों के झरोखों से में।

वाकई में पुरानी फिल्मों की वो यादें, वो बातें जो सिर्फ यादें बनकर रह गई, ऐसी ही कुछ यादों से रूबरू करवाएंगे हम आपको अपने गीतों के जरिए। वाकई में जब एक समय होता था तो मुंडे पर जब कौवा बोलता था तो हम ये सोचते हैं कि कोई आने वाला है, लेकिन आजकल न तो कौवे दिखते हैं न मेहमान आते हैं, और वैसे भी देखा जाए तो ज़्यादा दिन तक अगर मेहमान टिक जाते हैं तो भला किसको अच्छे लगते हैं। और अब बात करेंगे फिल्मों की उनकी, जब गरीबी दिखाते थे, बहुत सादगी दिखाते थे, किसी तरह का कोई ग्लैमर नहीं था, कोई भाग दौड़ नहीं थी, सादगी भरा जीवन था, ना फैशन था ना पैसे की टेंशन थी, जो है उसी में संतोष है।

वक्त बदलता है, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। आज के समय में हर लड़का हर लड़की फैशन के साथ चलता है। कई ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं, लड़कों के लिए भी ब्यूटी पार्लर हैं, कई तरह के हेयर स्टाइल हैं। लेकिन पहले दो चोटियां ही फैशन हुआ करती थी। आपने कई हीरोइनों को भी दो चोटियों में ज़रूर देखा होगा।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों के झरोखों से। एक समय था जब लोग ज़्यादातर गांवों में ही रहा करते थे और ज़्यादातर फिल्मों में आपने देखा भी होगा कि गांव ही दिखाते थे, सीधा सादा जीवन दिखाते थे और वाकई में सीधा सादा जीवन हुआ भी करता था। तब घरों के गलियों के नंबर नहीं हुआ करते थे, लोग दादा दादी या पिता के नाम से पहचानते थे, या कोई पेड़ हमारे बरगद का पेड़ हो या पीपल का पेड़ हो जो नदी के किनारे, इस तरह से अपने घर की पहचान बताया करते थे। यादों के झरोखों से इस प्रोग्राम का सुनिए आखिरी गीत और अपनी दोस्त अनीता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

एफएम बैंड 101.9 MHz पर श्री आकाशवाणी उदयपुर का विविध भारती केंद्र एफएम रेडियो लेक सिटी। सवेरे के 11:30 हो चुके हैं। राजस्थान की खुशबू की मिट्टी से सराबोर राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम घोघड़ा लेकर हाजिर हूँ आपके सामने मोनिका, तो स्वीकार करो प्यार भरा नमस्कार।

श्रोता कहवे सा कि राजस्थान री शादिया बिना बन्ना बिनड़ी के गीत सु अधूरी मानी जावे सा। ये गीत खुशियां हंसी मजाक अंदे पारिवारिक प्रेम सु भरपूर होवे सा। आज रा कार्यक्रम में

श्रोता केवे सा कि राजस्थान री शादिया बिना बन्ना बिनड़ी के गीत सु अधूरी मानी जावे सा। ये गीत खुशियां हंसी मजाक अंदे पारिवारिक प्रेम सु भरपूर होवे सा। आज रा कार्यक्रम में हुड़ा एक

केवेसा की राजस्थानी लोकगीता में पायल रो विशेष महत्व से। पायल रिछनक केवल एक गहनों ही नहीं बल्कि प्रेम सौंदर्य अने खुशियों रो प्रतीक माए जाए सा। अब यदि बिंदी रा पग मा पायल बाजे तो घर आंगन भी सुरमय लागे सा। तो हुणो सा या पायल रो गीत।

0: तुम्हारा प्यारा श्रोतागण, आज रो यो रंग बिरंगो संगीतमय सफर बसणी तक उम्मीद करा कि आज रो पेश कियो गयो राजस्थानी गीता रो गुलदस्तो थाने खूब भावे होगा सा। थारा प्यार अपनापन अने साथ ही मने हर बात कुछ नया लेन नी प्रेरणा देवे सा। आवता कार्यक्रम में फिर एक बार राजस्थानी लोक संस्कृति अने सुरारी मिठास लेने हाजिर हूँ सो। तब तक खातिर थारो घणो घणो आभार। खुश रहो, मुस्कराता रहो, अंडे राजस्थान री माटी री खुशबू से जोड़िया रहो।
1: दिल बनाशु जो थे लाया जयपुर शेर सुबाहिल दिखाशु।
0: श्रोतागण, गोखड़ा कार्यक्रम बस यहीं तक। एफएम रेडियो लेक सिटी कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोक भवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर

0: मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजा गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर था, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अब से थोड़ी देर पहले ये 23,551 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

यादों के महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं गायिका, मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर को। सुनते हैं आधी रात के बाद फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के स्वरों में। प्रेम धवन की रचना को संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने।

गायिका सुमन कल्याणपुर को सुनते हैं। आधी रात के बाद फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के स्वरों में। प्रेम धवन की रचना को संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने।

0: अब न जलाना अखियां मिलाना तेरा हूँ ईमान से दिलाया मैं बचा के पंजाब से
1: कितना है प्यार देखो मुझे श्रीमान।

दिल आया मैं बचा के पंजाब से, कितना प्यार देखो मुझको जना।

0: मुझे श्रीनाथ से
1: लाया मैं पंजाब से
0: रूप लाई
2: आंधी और तूफान। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फारूक कैसर के बोल थे और रॉबिन बैनर्जी का संगीत था। और अब ये संदेश और उसके बाद एक और गीत।
3: अरे सुनो, आजकल ये

0: क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आपस की बात का गाना। सुमन कल्याणपुर के स्वर में अनजान के बोलों को संगीत से सवारा है अनु मलिक ने।
4: तुम्हें क्या सेवा कर सकता हूँ?
5: सेवा के बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल मुझे एक नहायत स्पेशल किस्म का बुके चाहिए।
4: स्पेशल बुके? लड़के के लिए चाहिए या लड़की के लिए?
5: इससे आपको मतलब?
4: जी मुझसे तो नहीं, लेकिन फूलों का फूलों से मतलब है। आई मीन हर फूल हर जगह नहीं भेजा जा सकता।
5: जी
4: जी हाँ, रंग और खुशबू का अपना एक मिजाज होता है, उसका एक करेक्टर होता है। फूलों में भी सनाना और मर्दाना फूल हुआ करते हैं। अब देखिए ना, मर्दों को सनाना और औरतों को मर्दाना फूल भेज जाते।
5: समझ गए, ये बुके एक लड़के के लिए है।
4: ओह दैट्स फाइन। अच्छा ये बताइए कि वो लड़का आपको क्या लगता है? देखते बुरा मत मानिए, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर वो भाई है तो फूल अलग होंगे और वो फ्रेंड है तो फूल दूसरे होंगे। कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ?
5: सेवा के बारे में बात।

0: अनजान का लिखा और अनु मलिक का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म आपस की बात का ये गाना आपने सुना, आवाज सुमन कल्याणपुर की थी।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: यह फिल्म अली बाबा और 40 चोर का गाना मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ।

अंदाज फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर, सुषमा श्रेष्ठ और प्रतिभा का गाया हुआ। हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत था, जिसे संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चालाक का ये गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। बोल हसरत जयपुरी के हैं और संगीत है गणेश का।

फिल्म अनजाना का ये गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल थे। और आइए अब आपको सुनवाते हैं हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं, फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी।

देखो देखा देख रहा था पपीहा पपीहा देखो देख रहा था पपीहा पपीहा जाके सबसे कहेगा पपीहा पपीहा भला चुप क्यों रहेगा पपीहा।

देखा देख रहा था पपीहा पपीहा देखो देख रहा था पपीहा पपीहा जाके सबसे कहेगा पपीहा पपीहा बना

देखो देखा देख रहा था पपीहा पपीहा देखो देख रहा था पपीहा पपीहा जाके सबसे कहेगा पपीहा पपीहा बना चुप क्यों रहेगा पपीहा।

अब आपको सुनवा रहे हैं मेरी सूरत तेरी आंखें, फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में। शैलेंद्र की शब्द रचना है और संगीत है सचिन देव परमन का।

0: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम की बात और इस कार्यक्रम के गीत होते हैं बहुत खास, और आज भी कुछ ऐसी ही बात है, ऐसा ही कार्यक्रम है। तो चलिए ना एक सुरीले सफर पर हमारे साथ। इस सुरीले सफर में आज की जो इबारत है वो हम बता देते हैं, खासतौर से उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी नहीं देखा है फेसबुक पर इस इबारत को। इबारत कुछ इस तरह से है, उनका प्यार नहीं बटता चाहे दुनिया एक बटा दो हो जाए। वो सिखाते हैं गगन में उड़ते मस्त पंछी की तरह जीना, रोते रोते हंसना, दिल की गिरह खोल कर बाहर से अंदर तक दुनिया को समझना। उनके होठों पर बड़ा नाम करेगा या राज करेगी जैसी दुआएं रहती हैं, मुड़ के ना देखो या चुनरी संभालो जैसी उनकी हिदायतें जिंदगी भर साथ रहती हैं, याद रहती हैं। याद आती हैं उनकी सुनाई हंसों की कहानी, और गुजरते जाते हैं दिन महीने साल, हम सीख जाते हैं साथी का साथ देना। खुश रंग हिना की खुशबू लेकर डोलती पवनिया से दिल का संदेश कहना, उनका हाथ लगते ही बिगड़ता काम बन गया है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? वैसे आखिरी लाइन तो एक हिंट थी आपको ये जानने के लिए कि देखिए आज आपने इस कार्यक्रम की क्या बातें होने वाली हैं उन्हें समझा है या नहीं, या ये इबारत की सोर इशारा कर रही है। और बेहद खुशी की बात है कि हमारे सभी श्रोताओं ने जल्दी से जल्दी इस थीम को पहचान लिया। हाँ, आज विश्व अभिभावक दिवस है और इसीलिए बातें हो रही हैं उन अभिभावकों की, माता पिता की, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। ऐसा हमारे एक साथी कह रही हैं, सच कहूँ तो माँ पापा का प्यार ऐसा खजाना है जिसकी कीमत कभी नहीं लगाई जाती। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी माँ पापा का प्यार हमारे साथ खड़ा रहता है। उनकी दुआओं में इतनी ताकत होती है कि जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लगती है। उनके जैसा चाहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता। माँ पापा का प्यार शब्दों में नहीं बल्कि उनकी हर चिंता, हर दुआ और हर त्याग में दिखाई देता है। क्या बात है। इन्होंने ये भी लिखा है कि आज के कई गाने हम समझ गए हैं और वो गीत हम विविध भारती पर सुनते भी रहते हैं, पर बताएंगे नहीं। जो गीत सही होगा उस समय बता देंगे, सच ही कहेंगे, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप हमारी प्यारी सी उद्घोषिका के साथ एक सखी भी हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अनमोल दोस्ती होती है ये जब इस तरह से हम बात शुरू करते हैं और हम जो कहते हैं वो आप झट से समझ लेते हैं। हमारे साथियों ने बताया है कि वो तमाम गाने बताए हैं जिन पर आज की ये इबारत रची गई है, और कुछ साथियों ने ये भी कहा है कि सारे गाने तो इबारत में ही छुपे हैं और एक एक गाना उनको समझ में आ गया है। क्या बात है। तो भाई ये गाना आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आज आपकी पसंद के सारे गाने आ रहे हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज गद्यांश को बहुत ही सुंदर भावों से सजाया है और शब्दों के चित्रण में माता पिता के ममत्व की सुमधुर खुशबू को पसारा है। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। प्यार, ममता और अपनत्व का पूरा संसार आज रच दिया है। दो पंक्तियां साझा करूंगा, तुम्हारा जिक्र भी कितना अजीब है मेरे चेहरे पर, तुम्हारा जिक्र भी कितना अजीब है मेरे चेहरे पर, आते ही लबों पर मुस्कान और आंखों में नमी छा जाती है। वाह क्या बात। एक और श्रोता कह रही है कि कहीं पढ़ा था बच्चे को मां 9 महीने तक गर्भ में रखती है, अपनी बाहों में 3 साल और अपने हृदय में तब तक जब तक कि खुद उसकी मृत्यु ना हो जाए। पिता के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि बचपन से पिता से एक अव्यक्त दूरी अपने आप बन जाती है, मगर पिता का हृदय बच्चे के लिए एक पाठशाला की तरह है। बच्चा समुद्र की गहराई में ना डूबने पाए इसके लिए पिता तमाम जतन जीवन भर करते रहते हैं और उनकी छवि एक कड़क पिता के रूप में बच्चों के हृदय में दर्ज हो जाती है। मगर पिता के सीने में भी एक नाजुक दिल धड़कता है। मंगल नसीम की लिखी कुछ पंक्तियां यहां साझा कर रही हूं।

क्या सीरत क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी, पांव छुए और काम हुए, अम्मा एक मुहूर्त थी बहुत सुंदर। एक और संदेश है कि आज की भारत में माता पिता के प्यार की खुशबू महक रही है, वात्सल्य और सुसंस्कारों का संतुलित जीवन रस लेकर उनके बच्चे खुशी से फूले फले, ऐसी उनकी मनोकामना होती है। निस्वार्थ भाव से वो अपनी संतान को आधार और सुरक्षितता देते रहते हैं, उनके प्रेम की गहराई कभी मापी नहीं जाती। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और इन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं और मुझे लग रहा है कि आज इनकी पसंद बिल्कुल हमसे ही मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। पिता से एक अव्यक्त दूरी अपने आप बन जाती है, मगर पिता का हृदय बच्चे के लिए एक पाठशाला की तरह है। बच्चा समुद्र की गहराई में ना डूबने पाए, इसके लिए पिता तमाम जतन जीवन भर करते रहते हैं और उनकी छवि एक कड़क पिता के रूप में बच्चों के हृदय में दर्ज हो जाती है। मगर पिता के सीने में भी एक नाजुक दिल धड़कता है। मंगल नसीम की लिखी कुछ पंक्तियाँ यहाँ साझा कर रही हूँ। क्या सीरत क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी, पाँव छुए और काम हुए, अम्मा एक मुहूर्त थी बहुत सुंदर। एक और संदेश है कि आज की भारत में माता पिता के प्यार की खुशबू महक रही है, वात्सल्य और सुसंस्कारों का संतुलित जीवन रस लेकर उनके बच्चे खुशी से फूले फले, ऐसी उनकी मनोकामना होती है। निस्वार्थ भाव से वो अपनी संतान को आधार और सुरक्षितता देते रहते हैं, उनके प्रेम की गहराई कभी मापी नहीं जाती। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और इन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं और मुझे लग रहा है कि आज इनकी पसंद बिल्कुल हमसे ही मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया।

आगे लिखते हैं कि आज वैश्विक अभिभावक दिवस पर ये इबारत माता पिता और अभिभावकों के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और मार्गदर्शन को सुंदरता से व्यक्त करती है। उनका प्यार कभी नहीं बढ़ता। वाकई एक संदेश है, आज का सुरीला सफर शुरू करने से पहले दो घटनाओं का जिक्र करना है। महान ज्येष्ठ गायिका सुमन कल्याणपुर का देहांत, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, होम शांति। महानायक शोमैन राज कपूर का आज स्मृति दिन है। उस आवारा छलिया अनाड़ी दीवाना कलाकार को अभिवादन। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए आज का सुरीला सफर पूरा करना है। इनके लिए हमारा प्यार कम नहीं होगा, बटेगा नहीं। और फिर आगे इन्होंने गाने लिखे हैं, लेकिन हम बता दें कि आज जो जन्म तिथि है, आज है अभिनेत्री नरगिस की, और हम उन्हें याद भी करेंगे। सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में आपने यादों की महफिल कार्यक्रम में कई गाने सुने, और सदाबहार नगमे भी आप सुनेंगे। आज का आज के फनकार भी आपने सुना था सुबह 9:30 पर, जो आधारित था सुमन कल्याणपुर पर। और अब कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। ये गाना सुनिए और बताइए कि जो नायक है उनके हाथ में क्या है, ये आपको बताना है। और एक सवाल और है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने माता पिता के प्यार की बात की है। भाई कभी डांट भी तो पड़ी होगी या कभी अच्छी तरह से धुलाई भी हुई होगी, अगर याद हो, जिसे जिसके बाद आपने अपनी वो बात छोड़ दी जिसके लिए धुलाई या पिटाई हुई थी, तो वो भी हमें बताएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान।
3: धुलाई भी हुई होगी अगर याद हो, जिसे जिसके बाद आपने अपनी वो बात छोड़ दी जिसके लिए धुलाई या पिटाई हुई थी, तो वो भी हमें बताएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान

आगे लिखते हैं कि आज वैश्विक अभिभावक दिवस पर ये इबारत माता पिता और अभिभावकों के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और मार्गदर्शन को सुंदरता से व्यक्त करती है। उनका प्यार कभी नहीं बढ़ता। वाकई एक संदेश है, आज का सुरीला सफर शुरू करने से पहले दो घटनाओं का जिक्र करना है। महान ज्येष्ठ गायिका सुमन कल्याणपुर का देहांत, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, होम शांति। महानायक शोमैन राज कपूर का आज स्मृति दिन है। उस आवारा छलिया अनाड़ी दीवाना कलाकार को अभिवादन।

ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। महानायक शोमैन राज कपूर का आज स्मृति दिन है। उस आवारा छलिया अनाड़ी दीवाना कलाकार को अभिवादन। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए आज का सुरीला सफर पूरा करना है। इनके लिए हमारा प्यार कम नहीं होगा, बटेगा नहीं। और फिर आगे इन्होंने गाने लिखे हैं, लेकिन हम बता दें कि आज जो जन्म तिथि है, आज है अभिनेत्री नरगिस की, और हम उन्हें याद भी करेंगे। सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में आपने यादों की महफिल कार्यक्रम में कई गाने सुने, और सदाबहार नगमे भी आप सुनेंगे। आज का आज के फनकार भी आपने सुना था सुबह 9:30 पर, जो आधारित था सुमन कल्याणपुर पर। और अब कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। ये गाना सुनिए और बताइए कि जो नायक है उनके हाथ में क्या है, ये आपको बताना है। और एक सवाल और है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने माता पिता के प्यार की बात की है। भाई, कभी डांट भी तो पड़ी होगी या कभी अच्छी तरह से धुलाई भी हुई होगी। अगर याद हो जिसे, जिसके बाद आपने अपनी वो बात छोड़ दी जिसके लिए धुलाई या पिटाई हुई थी, तो वो भी हमें बताएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान
3: बोला था, अब इस पर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। हाँ, बहुत अच्छा लगता ना जब ऐसे कहा जाता है, लगता सच में हम बड़े हो गए है ना। एक श्रोता कह रहे हैं, माता पिता ही तो हर एक जीवन के मूल में हुआ करते हैं और वे अपने वैश्विक परिवार को वट वृक्ष की तरह न केवल पालते पोसते हैं, उनके पालन पोषण से अभिषिक्त हृदय ही तो भली भांति ही नहीं अपितु सुरहृद के साथ गाया करते हैं कि धरती मेरी, माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। वह अपने गीत की पंक्ति जो है बड़ी सुंदरता से पिरो दी। हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि भाई चाचा चाची भाई भाभी भी तो होते हैं अभिभावक। बिल्कुल सही, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाली थी कि बहुत बार बड़े भाई या बड़ी बहन बिल्कुल अभिभावक बनकर पालते पोसते हैं और बहुत सारी बातें उनसे साझा करते हैं और माता पिता से ज़्यादा करीब उनके हो जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो तो उनके बारे में भी बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि जो हमने पहले पूछा था ना कि किस बात के लिए धुलाई हुई थी, एक श्रोता ने बताया। अगर आपको याद आ रहा हो तो ज़रूर बताइए, क्योंकि मम्मी पापा की तो पिटाई भी बहुत प्यारी होती है। आप भी इत्तेफाक रखते हैं ना इस बात से। संदेश मिला एक श्रोता का, कह रहे हैं कि जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए विविध भारती पर, तुम तो सहारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब सुरीला सफर का नजारा देखने मिला, तब से पंछी बनूं उड़ता फिरूं विविध भारती के मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं प्रसारण तरंगों पर, दिल की गिरह खोलकर चुप ना बैठूंगा मैं, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है अजनबी, मुड़ मुड़ के ना देखो मुझे, तुम मेरे पास आओ, VBS के साथ साथ गुजर जाए हर दिन, दिन हर पल गिन गिन साथिया साथ निभाना, साथ ही मेरे विविध भारती के राह में छोड़ ना जाना। बहुत सुंदर। आज की भारत यही इंगित कर रही है कि जिंदगी का सब कुछ सीखने व सिखाने वाले हमारे अभिभावक हमारे माता पिता होते हैं। बेहद खूबसूरत इबारत है, आज विश्व अभिभावक दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जीवन के सभी प्रियजनों को माता पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पिता एक बेहतर कल के निर्माता है, इस दुनिया का भविष्य उनके द्वारा प्रतिदिन हर पल निभाए जाने वाले कर्तव्यों पर बहुत हद तक निर्भर करता है। हम सभी पर अपने माता पिता की शुभकामनाएं आशीर्वाद सदैव बना रहे।

पर अब एक गाना गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम क्या है और ये कौन सी अभिनेत्री गा रही हैं।

0: हमारे साथियों ने बता दिया, जाहिदा हुसैन अभिनेत्री नरगिस की भांजी थी। अनोखी रात फिल्म का ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। शैतानियों की भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: तो भाई, माँ बाप की, माता पिता की जो डांट होती है वो भी बड़ी मीठी होती है, और उस मीठी डांट को याद करते करते और ये संदेश

0: लिखते हुए जरूर हमारे जो साथी हैं, श्रोता हैं, वो मुस्कुरा रहे होंगे। लिखते हैं, हम 6 भाई 3 बहनों का लंबा परिवार है। मैं 7वीं नंबर पर हूँ, अतः बचपन में डांट मार आम बात थी, चाहे बड़े भाई से हो या माँ से। हाँ, पिताजी ने कभी नहीं मारा। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बात बचपन की है, पिताजी ने गणित में भाग के कुछ सवाल स्लेट पट्टी पर लिखकर हल करने को दी।
1: 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: तो भाई, माँ बाप की, माता पिता की जो डांट होती है वो भी बड़ी मीठी होती है, और उस मीठी डांट को याद करते करते और ये संदेश लिखते हुए जरूर हमारे जो साथी हैं, श्रोता हैं, वो मुस्कुरा रहे होंगे। लिखते हैं, हम 6 भाई 3 बहनों का लंबा परिवार है। मैं 7वीं नंबर पर हूँ, अतः बचपन में डांट मार आम बात थी, चाहे बड़े भाई से हो या माँ से। हाँ, पिताजी ने कभी नहीं मारा। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बात बचपन की है, पिताजी ने गणित में भाग के कुछ सवाल स्लेट पट्टी पर लिखकर हल करने को दिया।

0: गई। इन सब बातों को याद करके मन थोड़ा भावुक भी हो रहा है, बिल्कुल हो जाता है। एक और साथी बता रहे हैं कि हम लोग अपने पिताजी से बहुत डरते थे, उनका रौब घर में था, हमारी बुआ चाचा भी उनसे डरते थे, डांटने पर कभी भी उलट कर जवाब नहीं देते थे, माँ से हर तरह से बात कर लेते थे। हम लोगों की बहुत सी गलतियों के कारण हमारी माँ भी डांट खा जाती थी। अब माता पिता कोई नहीं है, अब कोई डांटने वाला नहीं है। सच, ये बात बहुत कसकती है। एक श्रोता ने कहा है कि इबारत भावनापूर्ण पारिवारिक रिश्तों को चित्रित करती है और हमें बचपन के गलियारों की सैर कराती है। सही है, माता पिता और पारिवारिक संरक्षण ही शैशव काल से उत्तरार्ध तक बौद्धिक शारीरिक नैतिक विकास में सहायक होता है। पुराने काल के संयुक्त परिवार बहुमुखी विकास का मुख्य कारक होता था, जहाँ चाचा चाची ताऊ ताई बुआ सभी के सानिध्य में बचपन गुजरता था। अब एकाकी परिवार का चलन और एक या दो बच्चों में सीमित परिवार रह गया है। भविष्य में मौसा मौसी बुआ शब्द शब्दकोश से लुप्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं। बहुत भावुक विषय पर इबारत है। हाँ, है तो बहुत दिल को छूने वाली बात। तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं। बताइए कि आवाज किनकी है और संगीतकार कौन है।
1: हंसना सीखो, हंस

0: जवाब आया हमारे श्रोताओं ने बताया। अंधा कानून फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का है। बहुत बहुत शुक्रिया। और संदेश जब आए हैं तो पिटाई की बातें भी आई हैं। हमारे एक श्रोता ने कह रही हैं कि आजकल माता पिता अपने बच्चों को मारते नहीं, प्यार से समझाते हैं। भाई हम लोग तो बिना मार खाए समझते ही नहीं थे। नई पीढ़ी को ये बात संभवतः अजीब भी लगे, पर इतनी मार डांट के बाद भी प्यार भी तो सबसे अधिक करते हैं। माँ पिता जैसा और कोई नहीं होता। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और श्रोता कह रही है कि शादी के बाद माता पिता के खट्टा मीठा अनुभव रहा जो अब तक याद है। सच में वो जो धक धक धक धक होती है जब पिटाई होने वाली होती है, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। और पिटने के बाद जब प्यार मिलता है और जो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, वो बड़ी ही प्यारी होती है। एक श्रोता कह रही है कि हमारी पिटाई तो नहीं हुई क्योंकि हम तो दूसरों को मारते या डांटते देखकर ही रो देते थे। जब कभी पापा हमारे छोटे भाई को उसकी गलती के लिए मारते थे, हम रो देते थे। तब बहुत छोटे थे तो पापा कहते थे अब तुम्हारी वजह से इसे डांट भी नहीं सकते। और कभी कभी जब हम शिकायत करते कि इसने रेडियो फेंक दिया, वो खराब हो गया, तो पापा कहते तुम बताओ हम क्या करें। श्रोता ने लिखा है कि मायके में माता पिता का साथ एक बेटी के लिए सबसे बड़ा भावनात्मक संबल और सुरक्षा कवच होता है। ये वो सुरक्षित कोना है जहाँ बिना किसी शर्त के प्रेम, निस्वार्थ सहयोग और बचपन जैसी बेफिक्री मिलती है। मायके में माता पिता के सानिध्य के मुख्य पहलू, विवाह के बाद जीवन के हर उतार चढ़ाव में माता पिता की मौजूदगी एक ढाल की तरह काम करती है। सही बात है, उनके पास बिताया गया समय मानसिक शांति और ऊर्जा देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता ने कहा है कि इंसान को पक्षियों की तरह उन्मुक्त होकर जीने, वर्तमान में रहने और प्रकृति के करीब रहने का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पक्षी कल की चिंता में नहीं जीते, वे आज के हर पल का आनंद लेते हैं। इसलिए इंसान भी भविष्य के तनाव को कम करने के लिए वर्तमान में जीना सीख सकते हैं। पक्षियों ने कभी अपने बच्चों को घोंसला बनाकर नहीं दिया, वो तो सिर्फ अपने बच्चों को उड़ने की कला सिखाते हैं। तनाव मुक्त रहने और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने का नजरिया पक्षियों की तरह ही होना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही आपने। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। गाने को सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में अभिनेता कौन है।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमको का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

फिल्म रात और दिन का गाना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, और बिल्कुल सही जवाब के लिए बेहद बेहद ढेर सारा शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बता दिया, तमाम श्रोताओं ने बताया कि प्रदीप कुमार और फिरोज खान इस फिल्म में अभिनेता के रूप में नज़र आए थे। और अब संदेशों की बात हम करें, लेकिन उससे पहले एक सवाल और। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मम्मी पापा घर में छुपा कर रख देते हैं, बाद में देते हैं, हमारे ही लिए रखते हैं, लेकिन वो छुपा हुआ ख़जाना ढूंढना उस समय बहुत एडवेंचरस लगता है, बड़ा रोमांचकारी लगता है। और कई बार वो ढूंढ भी लिया जाता है, और ढूंढने के बाद जब पता लगता है तो क्या होता है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो हमें ज़रूर बताएं। एक श्रोता लिखते हैं कि ज़रूरी नहीं कि मार के डर से ही डरें, हमारे मम्मी पापा आंखों से डरा देते थे। जी हाँ, ये आंखों का अनुशासन भी गजब का होता था। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बाबूजी हम लोगों को जूते डंडा से पीट देते यदि उनके सामने आवाज वाला खेलते थे, पर माँ गलतियों पर झाड़ू से मारती थी, पढ़ने को हमेशा बोलती थी, इसलिए आज हम भी अच्छे जॉब में हैं। बाबूजी किताब के लिए हमेशा आगे रहते थे, कलाकार हैं, बाबूजी दोनों हाथों से लिखते हैं, चित्र बनाते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। एक और संदेश में बताया है कि बचपन में माँ बड़े भाई मास्टर जी से मार खाने और उससे बचने के लिए दूर दौड़ कर भागने का आनंद ही अलग था। और एक संदेश है कि हमारी पीढ़ी वो थी, माता पिता की मार खाकर रोते थे, इतना रोते थे, लेकिन वो छुपा हुआ खजाना ढूंढना उस समय बहुत एडवेंचरस लगता है, बड़ा रोमांचकारी लगता है। और कई बार वो ढूंढ भी लिया जाता है, और ढूंढने के बाद जब पता लगता है तो क्या होता है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो हमें ज़रूर बताएं। एक श्रोता लिखते हैं कि ज़रूरी नहीं कि मार के डर से ही डरें, हमारे मम्मी पापा आंखों से डरा देते थे। जी हाँ, ये आंखों का अनुशासन भी गजब का होता था। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बाबूजी हम लोगों को जूते डंडा से पीट देते यदि उनके सामने आवाज़ वाला खेलते थे, पर माँ गलतियों पर झाड़ू से मारती थी, पढ़ने को हमेशा बोलती थी, इसलिए आज हम भी अच्छे जॉब में हैं। बाबूजी किताब के लिए हमेशा आगे रहते थे, कलाकार हैं, बाबूजी दोनों हाथों से लिखते हैं, चित्र बनाते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। एक और संदेश में बताया है कि बचपन में माँ बड़े भाई मास्टर जी से मार खाने और उससे बचने के लिए दूर दौड़ कर भागने का आनंद ही अलग था। और एक संदेश है कि हमारी पीढ़ी वो थी, माता पिता की मार खाकर रोते थे, इतना रोते थे।

फिल्म श्री 420 के इस गाने के लिए सही जवाब आ गया। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। आशा भोसले और मन्ना डे के साथ साथियों की आवाज़ों में आपने ये गाना सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। रात और दिन फिल्म का जो गाना आपने इससे पहले सुना था, उसके बारे में हमारे एक श्रोता ने बताया कि वोल्स धुन पर विशेष आधारित नरगिस जी और फिरोज खान, रात और दिन शंकर जयकिशन जी का संगीत, अकॉर्डियन खूबसूरत और तबले का खास चलन। और बहुत सारे श्रोता बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि आज तो मेरे वे भेजे हुए बहुत सारे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, है ना, खुशी की बात। एक श्रोता ने बताया कि मेरे बेटे का विवाह 9 साल पहले हुआ है। कभी सास और बहू में कंकस नहीं होता, माँ बेटी की तरह सहृदय भाव से रहते हैं। ये भी जीवन का आनंद है, छोटी बातों पर कभी छोटा मन नहीं करना चाहिए। झगड़े का कारण एक दूसरे के प्रति कटु वचन से अभाव बढ़ता है। एक संदेश में कहा गया है कि बच्चों के जीवन के पहले गुरु माता पिता होते हैं, जो अच्छे बुरे की परख से अवगत कराते हैं। बच्चों पर अपने माता पिता के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों को स्कूल में सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है, लेकिन सामाजिक तौर तरीके सीखने की शुरुआत अपने परिवार से ही होती है, जहाँ माँ के आंचल की छांव और पिता के प्यार से बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो जाता है।

आज की एक और संदेश में कहा है कि आज की इबारत की खास बात यह है कि गीतों को लेकर इसमें कुछ भी दबा छुपा सस्पेंस नहीं है। इबारत पढ़कर साफ साफ पता लग रहा है कौन कौन से सदाबहार सुपरहिट गीत बजने वाले हैं। कुल मिलाकर बहुत सरल और आसान समझ में आने वाली इबारत है। वैसे कुछ सस्पेंस हो तो और मज़ा है। तो चलिए, आप सबको माता पिता दिवस की बहुत शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयाँ। तो अब अगला गाना गाना सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं किन कलाकारों ने निभाई थीं।

चुन दी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे।

పదినపి సుమతీ సమాన్ చలి జాయ్ మారనా దే టంక్

फिल्म बहारों के सपने का गाना लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में आपने सुना। राहुल देव बर्मन का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, और सही जवाब आ गया। आशा पारेख और राजेश खन्ना ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। संदेश मिला है कि हमारे एक श्रोता ने बताया है कि माँ से तो नहीं डर लगता था, पिता से बहुत डरते थे। कड़क स्वभाव वाले और शिष्ट पालन के आग्रही थे। सत्य की राह पर खुद चलते थे, हमें भी सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। आज माता पिता दोनों नहीं हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद से हम सुखी हैं। और बचपन की यादें ताजा हुई, मुड़ मुड़ के न देख गाना सुनकर हमारे एक श्रोता की क्या बात है। एक और श्रोता बता रहे हैं कि हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका पूरे घर में रुतबा चलता था। हम उनसे हम बच्चों को भी बहुत डर लगता था, लेकिन थे वो बहुत विकासवादी। आज से 70 साल पहले उन्होंने हमारी बुआ जी को स्कूल भेजा था। वो गांव से इकलौती थी स्कूल जाने वाली। क्या बात है, नतमस्तक हो जाते हैं हम ऐसे बुजुर्गों के सामने जो हमें विकासवादी सोच की तरफ के अपना दिखाते हैं कि विकासवादी सोच से क्या क्या बदलाव आ सकता है। और अब अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, गाने को सुनिए और प्रमुख कलाकारों के नाम आपको बताने हैं, साथ ही बताइए गीतकार और संगीतकार कौन है।

खजाना ढूंढने की बात को लेकर हमारे एक श्रोता ने बताया कि एक बार हमारे नाना जी जब घर आए तो हम बच्चों के लिए टॉफी का पैक लेकर आए, माँ ने उसको छुपा कर रख दिया। हम सबका ध्यान उस पर लगा था, बहुत जतन किए गए पर सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन माँ हर बच्चे को उनके अच्छे काम के लिए जब उपहार स्वरूप टॉफी देती तो मन प्रसन्न हो जाता था।

फिल्म अवतार का गाना राजेश खन्ना, शबाना आजमी प्रमुख भूमिकाओं में थे। आनंद बख्शी ने गीत लिखे थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत तैयार किया था, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो कुछ संदेश जल्दी से। ना कोई दौलत ना कोई खजाना चाहिए, बस माता पिता का प्यार पुराना चाहिए। सारी खुशियाँ मिल जाती हैं जीवन में जब उनका आशीर्वाद सिरहाना चाहिए। क्या बात है। दूध दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस की शुभकामनाएं देते हुए एक साथी कह रहे हैं कि रोज सुबह आधा लीटर दूध केसर डालकर पीजिए और 5 किलोमीटर लंबी यात्रा कीजिए। ओहो। एक और श्रोता ने कहा है कि हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहाँ हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इतने सुंदर संदेशों के लिए। हाँ, समय की कमी के चलते हम बहुत से संदेश नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर संदेश हैं और इन्हीं संदेशों के बीच में हमने ढूंढ लिया है प्यार और माता पिता का वो समर्पण और त्याग। तो अब इसी नोट पर इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। डीजे राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

आज है विश्व दूध दिवस। दूध की उपयोगिता और महत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दिन दुनिया भर के 40 से अधिक देशों में मनाया जाता है। दूध के विषय पर सोचना शुरू करते ही यकायक मैथिली शरण गुप्त की रचना याद आती है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी है, आंचल में दूध और आंखों में पानी। भले ही साथियों आज नारी अबला नहीं बल्कि सबला है, लेकिन ये भी तो सच है कि नारी हर दुख हर दर्द को पीकर पूरे घर को समृद्ध करती है। अपने रक्त को दूध में परिवर्तित कर एक माँ अपने संतान को पिलाती है, उसे जीवन दान देती है।

हालांकि 1 जून यानी कि आज के दिन विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, पर भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस

26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हाँ, वही कुरियन साहब जिन्होंने भारत में सफेद क्रांति ला दी थी अपने ऑपरेशन फ्लड के नाम से, यानी कि दुग्ध विकास मिशन के माध्यम से। इस क्रांति ने केवल देश भर में दूध की उपलब्धता को आशातीत रूप से बढ़ावा ही नहीं, बल्कि बच्चों में कुपोषण को भी कम कर दिया और साथ ही साथ लाखों बेरोजगार लोगों को रोजगार भी दिया।

आज भी हमारे देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए दिन में एक गिलास दूध भी किसी विलास से कम नहीं। सरकार की तरफ से कुपोषण के खिलाफ कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक हम खुद सजग नहीं होंगे, आखिर कौन सा कदम सफल हो सकता है। हम जागरूक रहे और कई कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा सबसे बेहतर योगदान दे। हमारे लिए जितना भी संभव हो, हम उन कुपोषित बच्चों को दूध पिलाकर उनका कुपोषण दूर करने में अपना योगदान दें।

दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की

0: 2 जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमरीका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में

0: और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
1: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताएं, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
2: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
3: एक महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
4: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना

0: इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
1: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
2: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
3: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रुपये 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रुपये 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यवसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रुपये 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
5: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
2: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे।

0: म्यांमार के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

अपनी सुरीली आवाज की खुशबू से तमाम यादगार गीतों को महकाने वाली सुमन कल्याणपुर की यह आवाज, साथ में मोहम्मद रफी, बेटी बेटे फिल्म का ये गाना आपने अभी सुना। शैलेंद्र के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत था। और अब आपको सुनवा रहे हैं बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना। मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं, भरत व्यास की रचना है और सतीश भाटिया का संगीत।

चांद और सूरज फिल्म का गाना आपने सुना सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी के स्वरों में, शैलेंद्र की रचना थी और सलिल चौधरी का संगीत। इन सुंदर गीतों के साथ मन का जला दीप सदैव प्रकाश बिखेरता रहता है। फिल्म संगीत के स्वर्ण युग का आखिरी सुमन भी कल मुरझा गया, लेकिन उनकी आवाज़ की कशिश हमेशा दिलो दिमाग पर छाई रहेगी। आइए सुनते हैं दिल ही तो है फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं और रोशन की तर्ज़।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं जब से तुम्हें देखा है फिल्म का गाना मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत से सवारा है दत्ताराम ने।

सदाबहार नगमे प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मासूम फिल्म का गाना। राजा मेहंदी अली खान के बोल हैं, रॉबिन बनर्जी का संगीत है, आवाज़ है सुमन कल्याणपुर की।

0: हसरत जयपुरी का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था जी चाहता है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, मोहब्बत इसको कहते हैं। यह है फिल्म का नाम, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की हैं। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है खयाम ने।
1: कह दिए हो शुम्या।

0: सांस आंखों की बुझा लूं तो चले जाएगा ठहरिए हो।
1: इस दो गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में।

0: ही सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: कहिए कैसी हैं मंजरी जी आप?
2: बस यही कहेंगे ना कि हमेशा की तरह बिल्कुल मस्त अच्छी सी हूँ।
1: हाँ, जी वो तो आपको देखकर ही लग रहा है कि बिल्कुल जो है आप खुश लग रही हैं, बहुत ज्यादा फ्रेश लग रही हैं।
2: जी धन्यवाद।
1: और मुझे लगता है कि

0: जी
1: जब से मैं सुबह से आपको देख रही हूँ, आप
0: जी
1: तरह तरह के गीत निकाल रही हैं, कभी किसी गाने को पसंद कर रही हैं, कभी नहीं कर रही हैं, तो संगीत के बीच में रहकर भी आदमी जो है एकदम अपने आप को फ्रेश पाता है, ताजा
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: महसूस करता है।
0: गीत संगीत तो की दुनिया ऐसी है कि आप कितने भी उदास हों, आप गीत सुन लीजिए, आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी उदासी आपके पास से कब कहाँ किधर चली गई, अगर आप
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल दिल से सुनते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा मंजरी। हाँ,
0: और
1: लेकिन एक उदासी का सबब
0: जी
1: आज तो हमारे मन में
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल, वही हम कहने वाले थे कि जब हमारे बीच से कोई चला जाता है और जब अच्छे अच्छे गायक गायिका चले जाते हैं, तो उनके ना जी उनके गाने हम सुनकर ही बड़े हुए हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो वो गाने हमेशा कानों में दस्तक देते रहते हैं, और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो बहुत दुख होता है, आंखें भर
1: बिल्कुल
0: आती, दिल भर आता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल। कल मैं एक कार्यक्रम दे रही थी मंजरी, उसमें
0: जी
1: मैंने कहा कि किसी का जाना कैसा महसूस होता है हमें, जब हमारी जिंदगी से,
0: जी
1: विचारों से, हमारे दिल से, हमारे घर से कोई चला जाता है या दुनिया से
0: बिल्कुल
1: चला जाता है, तो हम क्या महसूस करते हैं। और हमारे
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं ने इतने अच्छे विचार हम तक पहुंचाए थे कि मेरा गला भर आया था और आंखें नम हो गई
0: नहीं, वो बात ही
1: थी।
0: ऐसी है कि हम पढ़ते पढ़ते आज भी आंखें नम हो जाती जब हम उन
1: हाँ
0: चीजों को याद करते हैं, और जो हमारे बीच से अब चले गए हैं,
1: जी।
0: और हम सब उनके परिवार के ही सदस्य कहना चाहिए, वो गाने गाते हैं और हम लोग सुनते हैं ध्यान से, तो हम कहीं ना कहीं उनके साथ एकदम जुड़े होते
1: और
0: हैं।
1: इस कार्यक्रम या इस नौकरी में हमने न जाने कितनी बार इन गायक और गायिकाओं को
0: जी
1: बजाया और खुद गुना उनके गानों को गुनगुनाया, उनके
0: गुनगुनाया
1: गानों को जिया हमने। मुझे याद
0: बिल्कुल
1: है रफी साहब के इतने सारे गाने हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं, लता जी के,
0: जी
1: आशा जी के, और आज जो सुमन कल्याणपुर को हमने खो दिया है,
0: जी
1: उनके गाए गीत जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हमारे ही गले का कोई सुर जैसे चला गया है,
0: बिल्कुल सही
1: ऐसा
0: बात है,
1: महसूस होता
0: बिल्कुल सही बात
1: है ना। इतनी महान गायिका, इतनी शानदार गायिका, जिन्होंने बहुत सादगी से अपनी आवाज को पेश किया, आप तक पहुंचाया, और हर गीत को उतनी ही कोमलता के साथ, सादगी के साथ, उतार चढ़ाव के
0: जी।
1: साथ गाया।
0: और उतनी ही उनका स्वभाव भी सादगी भरा था, बहुत ही सरल स्वभाव की महिला हैं वो थी, और जो आज हमारे बीच नहीं है, तो उनको हम सभी लोग और सभी विद भारती परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल।
0: और हमारी सखी ने भी
1: कुछ
0: एक
1: लिखा है
0: लिखा
1: बताइए,
0: है,
1: मेरी सखी ने क्या लिखा है।
0: इन्होंने गाने की एक लाइन लिखी है कि यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई एक बहाना।
1: बहाना।
0: दुखद समाचार, दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर अब इस दुनिया में नहीं है, आज 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली दिग्गज प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर का आज निधन हो गया है, और उन्होंने इतने साल उम्र मुंबई में स्थित अपने घर में उन्होंने अंतिम सांस ली है, और उन्होंने पहले सुमन हेमदी नाम से गाने गाए थे, हालांकि
1: हाँ
0: शादी के बाद उन्होंने सुमन कल्याणपुर के नाम से अपनी पहचान बनाई और गीतों को आवाज़ दी है।
1: आवाज़ थी बिल्कुल, और उनकी आवाज़ हमने जन जन तक पहुंचाई रेडियो के माध्यम से, तो
0: जी
1: विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं,
0: जी
1: और सखी सहेली के इस मंच से, इस परिवार से
0: जी
1: उन्हें बहुत बहुत
0: बहुत
1: श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे
0: जी
1: हैं।

0: हाँ तो मंजरी, आज हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं, हमारी सखियां और सखा जानना भी चाहते होंगे।
1: बिल्कुल, तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के व्यंजन बनारस का, मंगोड़ी वाला मटर का निमोना और धनिया की मट्टी, इसके बारे में बात करेंगे। और वैश्विक अभिभावक दिवस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और विश्व दुग्ध दिवस भी आज है, तो दूध तो सभी जानते हैं कितना अच्छा होता है सभी के लिए पीना, बच्चों के लिए खासकर बहुत जरूरी है, तो इस पर चर्चा करेंगे। और कथा सुधा के अंतर्गत आभूषण भाग एक, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ये आज सुनाई जाएगी और इसका भाग एक है, तो हम लोग इस कहानी का आनंद लेते हैं।
0: चलिए तो पहले ही कहानी सुन लेते
1: जी।
0: हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। आज सुनते हैं इस कहानी की पहली कड़ी।

0: आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं के निर्दय घातक वाकवाणों को नहीं ओढ़ सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है, उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीना महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम ये भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की। किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता। इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती हैं। ये चमक दमक, कितनी ईर्ष्या, कितने द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी दुश्चिंता और कितनी दुराशा का कारण है, इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें भूषण नहीं, दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो ये कब हो सकता था कि कोई नववधु पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती,
1: मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया है।
0: शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश से

0: की नवविवाहिता वधू को देखने गई थी। उसके सामने ही वो मंत्र मुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। और वो जब से लौट कर घर आई, उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। अंत को ज्यों ही उसका पति आया, वो उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे। इस गांव पर भी उन्हीं का सोलहों आने अधिकार था, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में, मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। वहां के जड़वाद, कृत्रिम भोग लिप्सा और अमानुषिक मदांधता ने उनकी आंखें खोल दी थीं। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे। लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे, पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वो विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने व्यथित होकर कहा,
1: तो माता पिता से कहा होता सुरेश से ब्याह कर देते और वो तुम्हें गहनों से लाद सकते थे।
2: तो गाली क्यों देते हो?
1: गाली नहीं देता, बात कहता हूं। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याह।
2: लजाते तो नहीं, उल्टे और ताने देते हो।
1: भाग्य मेरे वश में नहीं है और इतना पढ़ा भी नहीं हूं कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊं।
2: ये क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे।
1: तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है।
2: सभी को होता है, मुझे भी है।
1: अपने को अभागिनी समझती हो?
2: हूँ ही, समझना कैसा? नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता?
1: गहने बनवा दूं तो अपने को भाग्यवती समझने लगोगी?
2: तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर ही बैठा है।
1: नहीं, सच कहता हूं, बनवा दूंगा, बनवा दूंगा, लेकिन कुछ दिन सबर करना पड़ेगा।
0: समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं, सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से। या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वो चिंता में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बंधता, कंचन के पाश ही से बंध सकता है। पहर रात जाते जाते वो घर से चल खड़ा हुआ, पीछे फिर कभी न देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो, पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अचल होता है। प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है, पर अंधकार में कितना साहस है जो लीक से जौबर हट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था। उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्मत्याग ही का आधार था। वो पहले कलकत्ते गया, वहां कुछ दिन तक एक सेठ की अगवानी करता रहा।

वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वो बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही, फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा न था। और मजदूर थे, पर ये मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लिया था उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर

0: कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातः काल सेरों मिठाई खाकर जलपान करते थे, दिन भर दम भर पर गांजे चरस और तंबाकू के दम लगाते थे, अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे। कितनों ही को शराब का भी शौक था, पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी के देह पर साबुत कपड़े न थे, पर विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई, धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। ये प्रायः सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है, सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो चुके थे। संध्या हो गई थी, वो कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था।
1: यहां की सभी स्त्रियां निष्ठुर होती हैं। बेचारा झिंगुर 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था।
2: अच्छा,
1: कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता था। 3 लड़के थे, अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे। न कोई लड़ाई, न बात, न चीत। रात को औरत न जाने कहां चली गई, लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है, अभी कुल 6 महीने का है। कैसे जिएगा भगवान ही जाने।
3: गहने बनवाता था कि नहीं?
1: रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे, गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता। गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम छम छम की आवाज से कान भर जाते थे।
3: जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की तो यही कहना पड़ेगा कि नारी ही बेवफा होती है।
0: इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला,
2: चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिला था, वह तुम्हारा नाम, गांव का नाम और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है।
3: हाँ है, तो मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं।
2: उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगावेगा उसे 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा।
3: तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया?
2: चौधरी, मैं कोई गवार हूं क्या? समझ गया, कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं

0: विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वो सोचने लगा,
1: अब क्या करूं? जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब मैं किसका भरोसा करूं? नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और ना गया तो फिर कहीं का ना होगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5,000 हो जाते और शीतला की इच्छा भी पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3,000 ही होंगे। इतने में उसकी अभिलाषा ना पूरी होगी। खैर, अभी चलूं, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या है, आने जाने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा न रहूंगा। वहां कौन पूछता है, आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं? वहां तो गहनों से प्रेम है।
0: इस तरह मन में निश्चय करके वो दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में ये कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नव वधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते, किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति ये थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वो दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास, प्रायः सभी ऐहिक और पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था। फल ये हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वो अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश करने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती, नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वो पति की नजरों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, चित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वो इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
2: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह, मजदूर राजेश झा और आदमी दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग अगले सोमवार कथा सुधा में।
3: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली।

0: 2 जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: हाँ तो मंजरी, कल सखी सहेली का जन्मदिन है और लड्डू तो हमको कल मिलने ही वाले हैं।
4: बिल्कुल मिलने वाले हैं। हाँ,
3: और हिमानी शिवपुरी हमारी बतौर मेहमान कल आने वाली हैं और उनका सजीव प्रसारण कल
4: जी, और हम लोग मिलकर करेंगे उनका स्वागत और हमारे श्रोता साथ में मिलकर सुनेंगे प्रोग्राम और भेजेंगे बहुत सारी कमेंट्स, विचार,
3: शुभकामनाएं
4: भेजेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा सब मिल के एक समय पे इकट्ठे होंगे।
3: हाँ, तो ये कार्यक्रम जो है 3 से लेकर 4 बजे के बीच में होगा। हिमानी शिवपुरी हमारी कल की मेहमान है, लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। फेसबुक पेज पर आप बराबर बने रहें और अपने विचारों से अवगत करते रहें और आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है इसके बारे में बताएं और खास तौर से हमारे जो सखी सहेली की कल वर्षगांठ है उनको शुभकामनाएं देने के लिए आप लगातार हमसे बने रहें, सभी सखी और सखा तैयार होकर,
4: क्योंकि हम लोग भी तैयार होकर कल आएंगे बर्थडे मनाने।
3: बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तैयार रहेंगे कल। और अब तो समय हो गया है एक अंतराल लेने का। मंजरी, पहले अंतराल लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं।

0: हाँ तो मंजरी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना है। और जीवन में जब हम किसी सुंदर चीजों के
1: जी
0: आसपास होते हैं ना, तो जिंदगी थोड़ा आसान भी लगती है।
1: बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत होते हैं हमारे वो रिश्ते भी जो हमें जन्म देते हैं, जिन्हें हम माता पिता के रूप में जानते हैं।
0: बिल्कुल
1: आँख खुलती है वो उंगली हम उनकी पकड़ते हैं, उनका स्पर्श सुख पाते हैं
0: जी
1: माता पिता के रूप में, तो वो हमारे लिए बहुत ही अजीज होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। और इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए वैश्विक अभिभावक दिवस ये जो है मनाया जा रहा है। 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिवस का उद्देश्य माता पिता होने के महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक सुरक्षा और साधन प्रदान करने में उनकी भूमिका में प्रगति जागरूकता बढ़ाना है। तो कहना चाहिए मंदाकिनी जी, आज के दिन हम अपने माता पिता के लिए एक जश्न जैसा घर में कुछ सेलिब्रेशन करें
0: करना चाहिए ना।
1: और
0: हाँ
1: हाँ उनका सम्मान करें, उनके चरण छुएं, और आप जो भी उनके लिए
0: कर
1: पसंद
0: सकते
1: का
0: हैं।
1: खाना बना
0: हाँ
1: सकते हैं वो बनाए, उपहार में उन्हें चीजें दें, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा,
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और जो माता पिता के सबसे करीब होते हैं वो हमारे माता पिता ही जो हमारे सबसे करीब
1: जी
0: होते हैं। और
1: जी
0: बच्चा जब घर से कई बातें सीखता है और जैसा अपने माता पिता को करते देखता है वैसा ही व्यवहार उनकी उसकी आदत में भी आता है। और कहना चाहिए कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं,
1: जी
0: हमारी पहली पाठशाला होते
1: बिल्कुल
0: हैं। और इसलिए बच्चों के सामने हमेशा कहा जाता है कि अच्छा आचरण करें ताकि आपके बच्चे भी जब आपको देखें तो वैसे ही बड़े होकर आगे अपना उदाहरण पेश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये दिन माता पिता और अभिभावकों के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है। बच्चे के जीवन में अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती, केवल पालन पोषण ही नहीं करते बल्कि उनके जीवन जीने की सही दिशा, संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्य भी सिखाते हैं। और वो अपने बच्चों के सुख दुख के साथ मंदाकिनी जी हमेशा खड़े रहते हैं, और एक बच्चे की सफलता के पीछे उसके अभिभावकों का त्याग, मेहनत और समर्पण छिपा होता है। वे अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल। और आज की अगर हम बात करें मंजरी, तो आज के आधुनिक समय में बच्चों और अभिभावकों के बीच थोड़ा संवाद कम हो रहा
1: जी,
0: है ना।
1: और उसका कारण भी है
0: मोबाइल
1: मोबाइल।
0: और सोशल मीडिया, ये
1: जी
0: हमारी जिंदगी बन गए
1: जी
0: हैं, है ना। तो रिश्तों में दूरी बढ़ गई है। ऐसे में क्या है कि वैश्विक जो अभिभावक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने माता पिता को समय देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: और ये दिन आज का केवल ये नहीं कि आपने हमें जन्म दिया धन्यवाद कि अगर हमने इतिश्री कर दी,
1: नहीं नहीं
0: ये
1: नहीं
0: वो दिन नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का ये दिन हमें
1: जी
0: संदेश देता है। और हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका प्यार तो निस्वार्थ होता है और उनका स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी हम कह सकते हैं कि माता पिता वो छांव हैं जिसके रहते जीवन की हर धूप हल्की लगती है, उन्हें सुरक्षा, स्नेह और अपनापन में उनसे मिलता है। जैसे तेज धूप में पेड़ की छाया राहत देती, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं। उन्हें उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही बच्चे सही राह पर चलना सीखते हैं। और मंदाकिनी जी, जब पुराने समय की हम बात करें तो उस समय ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो घर में सभी सदस्य होते थे, तो माता पिता तो अगर बच्चे की देखभाल करते थे, लेकिन दादा दादी हुए, नाना नानी या चाचा चाची, मामा मामी, सब लोग परिवार के जितने भी

0: लोग होते थे, बुआ हो चाहे कोई भी हो, सब लोग बच्चे का ख्याल रखते थे। तो बच्चे कैसे पल जाते थे
1: पता ही नहीं
0: पता ही नहीं चलता था,
1: लगता था।
0: और बच्चों के अंदर सबके गुण आते थे। कोई कहानी सुनाता था, कोई उनको अलग तरीके बातें सिखाता था, कोई कर्तव्य करना सिखा रहा है तो कोई व्यायाम सिखा रहा है, कोई कह रहा है सुबह जल्दी उठो। तो ये जो रोक टोक का टाकी बच्चों को होती थी सिखाने की, कहना चाहिए, और नियम अनुशासन सिखाने की,
1: बिल्कुल
0: तो उससे बच्चे सीखते थे, और सभी उनके माता पिता के ही समान थे उस समय।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो सभी लोग हम बच्चे की कद्र करते थे, बच्चे का लालन पालन कैसे होता था माता पिता तो को पता नहीं चलता था।
0: जी
1: लेकिन मंजरी आज स्थिति बिल्कुल अलग है, आज हम ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं,
0: जी
1: जहां तक है एकल परिवार हो गए हैं, और ऐसे में बच्चे को जो नौकरी करने वाले माता पिता हैं वो किसी केयर टेकर के उसमें
0: जी
1: छोड़ जाते हैं। और मुझे खुद भी याद है मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकर थे, सरकारी नौकरी करते थे, और हमें किसी केयर टेकर के पास छोड़ जाते थे, वो किस तरह से हमारा लालन पालन करती थी ये तो भगवान ही जाने।
0: जी सही
1: और
0: बात है।
1: होता था कि जब माता पिता आते थे बड़े परेशान आते थे, क्योंकि जो केयर टेकर है वो उस तरह से तो नहीं पाल सकती
0: बिल्कुल
1: बच्चों
0: नहीं,
1: को
0: बिल्कुल नहीं,
1: जैसे माता पिता या परिवार के सदस्य
0: सदस्य
1: पालते
0: पालते। और
1: हैं।
0: देखिए हमारे बहुत सारे साथियों ने भी संदेश लिखकर भेजा है। एक लिखते हैं कि माता पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहाँ से हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। माँ अगर उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो पिता उंगली छोड़कर संभलना, दुनिया का हर रिश्ता कुछ ना कुछ मांगता है, पर माता पिता वो होते हैं जो अपनी संतान के प्रति जीवन भर निस्वार्थ स्नेह रखते हैं। उनका प्रेम किसी पैमाने पर मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाना, जवानी में परछाई की तरह साथ रहना, और वृद्धावस्था में भी संतान के प्रति चिंतित रहना ही उनके निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है। बहुत प्यारी सी
1: बहुत
0: बात आपने
1: सुंदर
0: लिखकर
1: बात लिखी
0: भेजी।
1: है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सखी सहेली मंच संभाल रही दोनों बहनों को बहुत सबने नमस्कार लिखते हैं। आज अभिभावक दिवस है, इस दिन विशेष का बड़ा महत्व है। इस दिन का आज के दिन दुनिया के सभी माता पिता के साथ साथ सभी अभिभावकों को बच्चों के लालन पालन के साथ उनकी सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और बलिदान के लिए सम्मानित करना है। माता के लिए गुजराती मुहावरा है, माई माँ बाकी बगा वगड़ा नावा, मतलब माँ के बिना सब जग उजड़ा हुआ यानी वीराना सा लगता है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात लिखी है। ऐसे हमारे साथी लिखते हैं कि आज अभिभावक दिवस पर विशेष बधाई। अभी तो कोई कलम नहीं बनी है जो माता पिता पर कुछ सर्वश्रेष्ठ लिख सके, ये तो ईश्वर के बस की भी बात नहीं। मेरी हर खुशी का रास्ता माँ से होकर जाता है, और मुझे दुनियादारी का सबक मेरे माता पिता सिखाते हैं। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है।
1: वही एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता का ही तो प्यार है जो कभी नहीं बढ़ता, जीवन रूपी खुले आकाश में उन्मुक्त पक्षियों के जैसे उड़ने की सीख और हौसला देने वाले वे ही हैं। रोते रोते हंसा देते हैं, दुनियादारी की बातें समझा देते हैं, उनकी ही दुआ से हम बड़ा नाम करते हैं और इस दुनिया पर राज करते हैं। असफलता में भी मुड़कर मत देखो पर अपनी गरिमा को भी संभाल कर रखो, ऐसी हिदायतें उनसे ही मिलती हैं, उनके आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं, उनकी सुनाई कहानियों की खुशबू पूरे जीवन भर महसूस करते हैं। और वैश्विक अभिभावक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये हमें देते हैं। तो अब एक गीत सुन ले।
0: जी

0: हाँ
1: तो देखिए,
0: तो
1: अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। विश्व दुग्ध दिवस है और हम सभी जानते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, सभी के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, सभी के लिए दूध बहुत आवश्यक है। और विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना है। ये दिवस 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और मंजरी, विश्व दुग्ध दिवस केवल हम इसे कोई उत्सव के रूप में नहीं मना रहे हैं, बल्कि एक आंदोलन है जो दूध को एक महत्वपूर्ण और सुलभ खाद्य स्रोत के रूप में उजागर करता है, जो अरबों लोगों का पोषण करता है। और यही दूध आवश्यक पोषक तत्व हमें प्रदान करता है, जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है।
1: बिल्कुल। और विश्व दुग्ध दिवस की जो इस वर्ष की थीम है, महिला किसानों का सम्मान है। ये रोजाना दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को एक बेहतरीन स्रोत है। और ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ मंदाकिनी जी, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कुछ बच्चे को परेशानी हुई तो तबीयत खराब हुई तो सीधे वो दूध को ही बोल देते हैं, दूध बंद कर दो, इसका दूध नहीं पिलाना है। तो बच्चों के मुख से दूध छीनना बहुत गलत बात होती है। आप पहले उसका चिकित्सीय इलाज कीजिए, डॉक्टरी इलाज कीजिए कि उसको क्या समस्या है, तब आप सोचिए कि दूध
0: नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है।
1: कुछ समय तक तबियत खराब है तो दूध आप नहीं ना दें, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा जीवन पर्यंत दूध बंद कर दें, ये गलत बात।
0: हाँ ये बिल्कुल गलत है। और हमें डॉक्टर खुद नहीं बनना है ना, चाहे कोई भी, अपना भी डॉक्टर हमें खुद नहीं बनना चाहिए। हमें चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए कि क्या दूध हमें नुकसान कर रहा है। दूध हमारे लिए कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए कुछ लोगों को दूध नहीं सूट कर

0: करता तो वो नहीं पीते हैं, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक कारण होने चाहिए, केवल
1: बिल्कुल
0: ये नहीं, वहम नहीं होना
1: वहम
0: चाहिए
1: नहीं
0: हमें।
1: होना चाहिए।
0: एक श्रोता लिखते हैं हमारे कि अभिभावक दिवस के साथ साथ आज विश्व दुग्ध दिवस हम मना रहे हैं। दूध एक ऐसी जरूरत है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए जरूरी है। वैश्विक आहार में दुग्ध का बड़ा महत्व रहा है। इसे संपूर्ण आहार माना जाता है जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और पोटेशियम जैसे शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, और इसके बिना सुबह की चाय भी नहीं बनती है। आए हुए मेहमानों का स्वागत नहीं होता, और इसके विधिवत उत्पादन के लिए डेयरी उद्योग का एक बड़ा योगदान रहा है। अपनी हड्डियों के साथ साथ डेयरी उद्योग को भी हमें मजबूत बनाना चाहिए।
1: और एक साथी लिखते हैं, दूध भी हमारे जीवन का अभिन्न चीज है, खासकर के मेरे लिए तो है, क्योंकि दूध के बिना मेरी मन पसंद अदरक इलायची वाली चाय नहीं बनती
0: अरे,
1: है।
0: हमारी तो ये भी चाय के शौकीन है
1: जी। और एक लिखते हैं, देश में दूध उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है, इन्होंने लिखा है। और एक लिखते हैं कि दूध को अक्सर प्रकृति का संपूर्ण भोजन माना जाता है, क्योंकि इसमें मानव के शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रमुख पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन का प्राकृतिक संतुलन होता है। दूध में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व जो है प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए, विटामिन ए, डी और B12 आंखों, त्वचा, तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा स्तर को के लिए ये बेहतर है, वो बेहतर रखता है कहना चाहिए।
0: बिल्कुल अच्छा लिखा है। और साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो दूध है वो भोजन में महत्वपूर्ण तो होता ही है, साथ ही हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत लोगों को दूध पसंद नहीं आता, लेकिन दूध को ठंडा पदार्थ के रूप में पीना बहुत लोगों को पसंद होता है, खासकर गर्मियों के दिनों में।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, देखा जाए अगर बच्चे आपके सीधा डायरेक्ट दूध नहीं पी रहे हैं, तो आप सोचिए कि उसमें थोड़ी सी इलायची मिला के हम पिला दें, या फिर आप दूध को खीर में कन्वर्ट कर दें, या चावल की खीर या सूजी की खीर में भी आप कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स पीस करके मिला के कुछ चेंज कर करके, या ठंडे शरबत उसमें मिक्स करके भी,
0: हाँ।
1: आप गुलाब का शरबत मिलाकर भी आप दूध किसी ना किसी रूप में आप बच्चों को
0: पिला
1: सकते हैं।
0: खासतौर से छोटे बच्चे और किशोरावस्था वाले जो बच्चे हैं ना, ये थोड़ा परेशान करते हैं कि मम्मी दूध नहीं पीना है, तो उन्हें दूध को तरह तरीके से करके आप पिला सकते हैं, ताकि फाइनली दूध तो बच्चे के पेट में जाना ही चाहिए।

0: तो भाई मंजरी दूध की हम बात कर रहे थे और हमारे जो चाय वाले श्रोता हैं जो हमारे ही जैसे हैं, चाय पसंद करते हैं, चाय मिल जाए और साथ में ये बनारस की मटर मुंगोड़ी वाला निमोना या नमकीन मिल जाए तो फिर कहने ही क्या होते हैं।
1: हमारी सखी ने ये रेसिपी लिखकर भेजी तो हम वही पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निमोना मुंगोड़ी या मूंग की बड़ी, उड़द की बड़ी, ताजी हरी मटर, पिसे हुए मसालों और मूंग दाल की मंगोड़ियों से बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक करी है। ये उत्तर प्रदेश के घरों में सर्दियों के मौसम में चावल के साथ बहुत चाव से खाई जाती है। इसकी सामग्री इन्होंने लिखी, हरी मटर 2 कप, मुंगौड़ी एक कप, आधा कप आलू, 2 लंबे पतले कटे हुए मसाला पेस्ट इसका है, हरा धनिया, लहसुन की कलियां, अदरक और हरी मिर्च, मिक्सी में पिसा हुआ होना चाहिए ये। और तड़का के लिए आप जीरा, हींग और तेजपत्ता, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और सरसों का तेल लगेगा। और इसको बनाने की विधि है कि मंगौड़ी को और आलू को भून लें, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, मूंग की मंगौड़ियों को सुनहरा होने तक भूनें और निकाल कर रख लें। उसी तेल में कटे हुए आलू को भी फ्राई करें और अलग रखें, मटर भूनें, बचे हुए तेल में दरदरी पिसी हुई मटर डालें और मध्यम आँच पर 3 से 4 मिनट तक इसे भून लें ताकि मटर का कच्चापन दूर हो जाए। इसे एक प्लेट में निकाल कर लें, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें जिसमें हींग जीरा तड़का लगाएं। अब कटा बारीक प्याज, हरा धनिया, लहसुन वाला मसाला पेस्ट डालकर तब तक भूने जब तक तेल अलग ना होने लगे। भुनी हुई मटर, साबुत मटर, तले हुए आलू और मंगौड़ी डालें, सभी को अच्छी तरह मिला और इसमें आवश्यकता अनुसार गर्म पानी और नमक डालें। कढ़ाई को ढककर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें जब तक कि मंगौड़ी और आलू पूरी तरह से नरम ना हो जाए। अंत में ऊपर से गर्म मसाला छिड़कें। आपकी गर्मा गर्म यूपी स्पेशल मंगौड़ी और निमोना तैयार है।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया है और मुझे लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होता होगा मंजरी।
1: बिल्कुल, क्योंकि मटर और मंगौड़ी दोनों ही बहुत स्वाद से भरपूर होते हैं और मेरी तो बहुत फेवरेट है।
0: बिल्कुल, और मैं धनिया वाला जो मट्टी है ना, धनिया वाली मट्टी, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। अगर हमारे श्रोता पसंद करती है सखिया, वैसे तो उन्हें बनाना आता होगा पर मैंने भी इसको बना के देखा था, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे बनेगी ये। आप मैदा ले लें 2 कप, हरा धनिया ले लें, कटा हुआ साबुत धनिया ले लें और 2 चम्मच कुटी हुई साबुत धनिया ले सकते हैं, घी ले सकते हैं तेल मोयन के लिए, जीरा ले लें, 1/6 चम्मच अजवाइन ले लें और काली मिर्च ले लें और दरदरी कुटी हुई नमक और तेल तलने के लिए और साथ में पानी। अब आप स्वादानुसार ये सब चीजें ले सकते हैं कम या ज्यादा, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगी हो सकता है आप उसे ज्यादा पसंद करते हो। फिर आटा को तैयार करें, एक बड़े बर्तन में मैदा ले लें, इसमें जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, नमक और मोयन और पिघला हुआ घी 1/4 कप डाल सकते हैं या तेल डालें। सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लें ताकि मैदा में मोयन अच्छे से रच बस जाए और उसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर उसको मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा आप गूंथ लें। इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर आप रख दें। फिर आटे को थोड़ा मसल लें और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें। अब एक लोई को हथेली से दबाकर चपटा करना है, इसे ज्यादा नहीं पतला करना है, ना बेलना नहीं है। एक फिर दबाकर कांटे की मदद से मट्टी के दोनों तरफ थोड़ा छेद कर लें 5-6 और इसको गर्म गर्म तेल में तलें और धीमी आंच में तलने के बाद जो कुरकुरी मटरी निकल के आएगी ना, वो गर्मा गर्म चाय के साथ तो
1: स्वाद लें। जी, गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: और अब मंजरी सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त तो खत्म हो चला है, इस कार्यक्रम से हम इजाजत लेते हैं। तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं।
1: जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ।
0: जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश खुखे।
2: दांतों का जमाना, प्यारे दांत बचाना, कोई तोड़ दे या टूटे तो पास हमारे आना।
0: इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
3: जाओ जाओ जाओ किसी वैद्य को बुलाओ।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हाल ही में डेंटिस्ट डे मनाया गया और इस मौके पर आज हमारे साथ हैं मुंबई के डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका।
4: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे आज न्योता दिया गया। मुझे बहुत खुशी होगी कि आज मैं डेंटिस्ट्री के बारे में, दांतों के बारे में लोगों के साथ रूबरू हो पाऊंगा, बहुत सारी जो मिथ्स है उनके ऊपर से हम लोग पर्दा उठा पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दांतों को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोगों के मन में खाम ख्यालियां हैं, गलत मान्यताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत की शुरुआत हम करते हैं दूध के दांतों से।
4: ठीक है,
0: जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अपने दांत होते हैं जो बड़े मायने रखते हैं, लेकिन अमूमन परिवार में उनके टूटने का इंतजार किया जाता है कि ये दांत निकल जाएंगे।
4: हाँ जी,
0: तब जो दांत आएंगे वो असली दांत होंगे।
4: सही है,
0: जरा इसके बारे में तफसील से बताइए।

0: जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब उसके दूध के दांत आने चालू हो जाते हैं। 2 से 2.5 साल तक दूध के दांतों की ग्रोथ पूरी हो जाती है, ठीक है। दूध के दांत होते हैं 20, टोटल मिला के 20 दांत होते हैं। दूध के दांतों का फंक्शन क्या होता है या फिर उनका काम क्या होता है? नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि दूध के दांत हैं गिर जाएंगे तो वो सड़ जाए, गल जाए, और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि जंक फूड बच्चों को इजिली अवेलेबल हो रहा है, प्लस बच्चों को पॉकेट मनी अच्छी मिलने लग गई है तो चॉकलेट्स वगैरह बच्चे इजिली खा लेते हैं तो उनको सड़न वगैरह बाकी के इश्यूज दांतों के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी दूध के दांतों का मेन फंक्शन क्या होता है कि अपने जबड़े की साइज मेंटेन रखना। जितना जबड़ा काम करेगा खाना चबाने के लिए उतने बाजू के मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं और उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, जबड़े की हड्डी बढ़ती है, ताकि जो पक्के वाले दांत आएंगे तो वो बड़े साइज के होते हैं तो उनके लिए जगह बनाए, प्लस उनको डायरेक्शन दिखाए, जो दांत बनते हैं पक्के वाले नीचे वो एक सही तरीके से अपनी पोजीशन में आ जाए, उसको वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो दूध के दांत करते हैं। तो इसके लिए दूध के दांत अगर खराब है आपके तो पक्के वाले दांत खराब होने की आपकी जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाए, इवन लेट भी गिर जाए, अगर उसमें टाइम लग जाए गिरने में, तो भी जो पक्के वाले दांत आएंगे, परमानेंट दांत आएंगे, वो आड़े टेढ़े ही आएंगे। दूध के दांतों में सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरली दूध के दांतों में एक स्पेसिंग होता है, जिसको टर्मिनोलॉजी, अगर मैं डेंटल टर्मिनोलॉजी बताऊं तो उसको फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग कहा जाता है। तो वो जरूरी है। और वो क्यों होती है? क्योंकि आने वाले दांत, जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं, वो सारे डायमेंशन में, चौड़ाई में, लंबाई में बड़े होते हैं। तो वो जगह, जो फिजियोलॉजिकल स्पेसेस है, वो जगह उनकी चौड़ाई से भर दी जाती है।
1: अच्छा,
0: जिन बच्चों में या फिर जो दूध के दांत है उनके बीच में अगर उतनी जगह नहीं होगी, जबड़े की साइज अगर छोटी है पहले से ही, तो कुछ ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं बचपन में ही ताकि जबड़े की साइज नॉर्मली बढ़े। घरेलू तौर पे हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो नॉर्मली कड़क चीजें आजकल जो अवेलेबल होती है वो होती है कड़क चकली, सूप स्टिक्स, या फिर कड़क बूंदी के लड्डू। वो कड़क चीजें मायने नहीं रखती है। जैसे गाजर, जो अपनी पारंपरिक चीजें है, गाजर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, उसको बिना उबाले कच्चा खाओ, ताकि जो नेचुरल एक्सरसाइज है जबड़े की होनी चाहिए वो होती है और नेचुरल ग्रोथ अपने आप नॉर्मल रहती है। ये एक चीज है।
1: लेकिन बच्चे तो ये चीजें खाते ही नहीं है।
0: बच्चे बच्चे हैं, वो तो जिद करेंगे। उनको खिलाना, उनको उन चीजों का महत्व समझाना, वो पेरेंट्स
1: जी
0: का काम है,
1: जी
0: ठीक है। तो इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क होना जरूरी है कि बच्चा अपना क्या खा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। एक चीज, अगर दांतों की बात करूं तो खाने की पाचन क्रिया जो है मुंह में चालू होती है। अगर मुंह में कैविटीज है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ है, कीटाणु मुंह में है, तो वो खाने के साथ मिक्स होंगे और वो कहाँ जाएंगे? पेट
1: पेट
0: में।
1: में
0: पेट में जाएंगे तो पेट की बीमारियां, बार बार लूज मोशंस होना बच्चों को, कॉन्स्टिपेशंस होना, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, ना सिर्फ बच्चों में, बड़ों में भी फ्रीक्वेंट एसिडिटी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हैं। इवन अगर जनरलाइज मैं बताऊं, ना सिर्फ बच्चों के केस में, लॉन्ग टर्म कैविटीज कैन कॉज यू हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स ऑल्सो। बैक्टीरियल डिसीजेस हार्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया हम लोग खा रहे हैं वो अपने खून में मिक्स होने वाले हैं। वो खून में मिक्स होंगे, वो कहीं ना कहीं पे तो जाके लॉज करेंगे और उस जगह की वो बीमारियां फैलाएंगे।
1: अच्छा, ये जो दूध के दांतों की आपने बात की, तो जब बच्चे अपने तरीके से ब्रश करने लायक हो जाते हैं तब से माँ बाप को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह की आदतें बच्चों में डालनी चाहिए?
0: सबसे पहली बात, ब्रशिंग कब चालू होना चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं है। ब्रशिंग मुंह में जैसे ही पहला दांत दिखता है तब से चालू हो जानी चाहिए।
1: जी,
0: उसके पहले मतलब 6-8 महीने तक तो कोई दांत आते नहीं है, उसके बाद ही दांत आने चालू होते हैं। तो उसके पहले, मतलब दांत आने से पहले भी मसूड़े क्लीन करना जरूरी है, मसूड़ों की मसाज करना जरूरी है, ताकि आने वाले दांत जो है वो इजीली आए, बच्चों को तकलीफ ना हो। क्योंकि दांत जो आ रहा है हड्डी में से आ रहा है, वो हड्डी को सेपरेट कर रहा है, मसूड़ों को सेपरेट कर रहा है, तो वो सेपरेट करने के लिए मसूड़ों की अगर मसाज, हाँ, मसाज होती रही तो वो इजीली सेपरेट होंगे और उसको मसाज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अपनी उंगली से आप मसाज कर सकते हो बच्चे के मुंह में, और वो भी ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट दिन में 1 या 2 बार, ये बहुत है। दूसरी बात, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो उसके बाद उनका मुंह क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि दूध में जो शुगर्स होती है वो जो दांत आते हैं उनको खराब कर सकती है। अभी उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि दांत आने के बाद कैसे ख्याल रखना है, कि जैसे ही पहला दांत मुंह में दिखना चालू हुआ, उंगली में पहनने वाले ब्रश आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल एक गॉज होता है, गॉज पीस, कॉटन की तरह, जो हम लोग नॉर्मली जख्मों पे पट्टी लगाते हैं जो बांधी जाती है, गॉज पीस बोला जाता है, वो स्टराइल गॉज पीसेस मिलते हैं मेडिकल शॉप में। अगर बच्चे का मुंह उतना नहीं खुल रहा या फिर बच्चा ब्रश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप वो सिंपल गॉज पीस को पानी में डुबा के गीले गॉज पीस से दांत को साफ कर सकते हो उंगली से,
1: छोटे बच्चों के
0: छोटे
1: लिए ये भी
0: बच्चों के
1: तरीका
0: लिए
1: है।
0: एकदम, हाँ एकदम छोटे बच्चों के लिए जिनके 1 या 2 दांत या 4 दांत आए हुए हैं। फिर धीरे धीरे दांत जैसे बढ़ते जाएंगे तो उंगली में ब्रश, जो मैं बोल रहा हूँ,

0: वो आप यूज कर सकते हो। अभी उसमें 0 to 3 years मतलब बचपन पैदा होने से लेके 3 साल तक एक अलग टूथपेस्ट आता है, जो बच्चे इंजेस्ट करे खा ले तो भी कोई उनको तकलीफ ना हो।
1: बिल्कुल,
0: उसकी जो बनावट रहती है वो उस तरीके से की जाती है। 3 से 9 से 10 साल तक अलग टूथपेस्ट आती है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। फ्लोराइड की मात्रा क्यों जरूरी है? क्योंकि दांतों में बनने वाली कैविटीज को रोकना, दांतों की बेसिकली इम्यूनिटी अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, दांतों की ग्रोथ अच्छी रखना फ्लोराइड करता है। तो इसके लिए 3 से 10 साल की उम्र तक एक अलग टूथपेस्ट आता है। 10 साल के बाद वो जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं मिक्स डेंटिशन, जहां पे आधे दांत दूध के होते हैं आधे होते हैं परमानेंट के, तो मिक्स डेंटिशन बोला जाता है। तो वो स्टेज चलती है और परमानेंट दांतों का डेवलपमेंट लगभग चलता है 16 साल तक। तो 10 से 16 तक एक अलग टूथपेस्ट यूज किया जा सकता है या फिर होता है, और 16 के बाद आप कोई भी टूथपेस्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बच्चों में 2 टाइम ब्रशिंग, जैसे आपने सवाल पूछा अभी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, पहले तो उनको बचपन से ही ये उंगली वाले ब्रश से अगर आप ट्रेनिंग लगाओगे तो उनको आदत पड़ेगी कि ब्रशिंग करना जरूरी होता है। वो साइकोलॉजिकली उनमें वो डेवलपमेंट होगी कि हाँ ब्रशिंग इज मैंडेटरी, 2 टाइम ब्रशिंग इज मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद समझ लीजिए 3 से 4 मिनट ब्रशिंग करना होता है, उससे ज्यादा ब्रशिंग की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अभी मुद्दा निकला ही है तो मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक टूथब्रश कितने दिन यूज करे।
1: ये हम सभी के मामले में करें।
0: हाँ,
1: चाहे बच्चे हो,
0: बच्चे
1: चाहे
0: हो, बच्चे हो या बड़े हो, 1.5 से 2 महीने के बाद अपना टूथब्रश चेंज करना है, ठीक है। वो भले कितना भी अच्छा दिखे, नॉर्मली अपना इंडियन मेंटेलिटी है जब तक वो ब्रिसल्स है ब्रश के
1: टेढ़े मेढ़े ना हो,
0: टेढ़े मेढ़े घस ना जाए या फिर वो अलग अलग आकार ना ले ले, तब तक हम लोग चेंज नहीं करते। बट ऐसा नहीं होता है, माइक्रो ब्रिसल्स रहते हैं वो, उनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी एक लाइफ होती है। मतलब आपने कुछ टूथब्रश ऐसे सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, उनके ऊपर कलर इंडिकेटर दिया जाता है अभी ब्रिसल्स में, कि वो फेड हो जाए या फिर इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने ब्रश को चेंज करना है। तो उसका भी टाइम फ्रेम उतना ही होता है कि 1.5 से 2 महीने तक आपका वो उसका कलर चेंज हो जाता है या फेड हो जाता है, जो कुछ भी है, तो तब आपको वो चेंज करना होता है। अभी वापस बच्चों की बात करें तो 2 टाइम ब्रशिंग मैंडेटरी होता है। अभी बच्चों को जैसे हमने बात की कि जंक फूड इजीली मिल रहा है, क्रेविंग करते हैं बच्चे, स्कूल्स भी अभी ज्यादा पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, तो वो चीजें खिलाए नहीं खिलाए, बच्चे हैं उनका खाना हक बनता है, लेकिन उसको खाने का एक तरीका होना चाहिए। ये जो खाना मैं बात कर रहा हूं वो सारा जंक फूड, स्टिकी फूड,
1: चॉकलेट,
0: स्वीट्स, तो उनके लिए अगर आपके बच्चों के केस में नॉर्मली कैविटीज नहीं है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन आप उनको दे सकते हो, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, 15 मिनट का विंडो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात बता रहा हूँ। आपके घर में जितनी बड़ी थाली हो, परात बोलते हैं कोई लोग, बड़ी से बड़ी थाली हो, वो थाली पूरी भर के सजा दो उनके सामने जो चीजें उनको पसंद है। उसमें बिस्किट्स आ गए, चॉकलेट्स आ गए, वेफर्स आ गए, 10 पैकेट आपके चिप्स के आ गए, कुछ भी, सब उसके सामने रख दो बच्चों के सामने, और उनको बोलो कि ये 15 मिनट है आपके पास, जैसे खाना है वैसे खाओ, फिर दोनों हाथों से खाओ, दोनों पैरों से खाओ, थाली में बैठ के खाओ या थाली सर पे रख के खाओ, चलेगा। लेकिन 15 मिनट के बाद वो सब उठा के रखना है, 15 मिनट के बाद उनको इमीडिएटली ब्रश करवाना है।
1: ओके,
0: सो नॉर्मल 2 टाइम ब्रशिंग प्लस ये तीसरा वाला ब्रशिंग जंक फूड के बाद, इससे कैविटीज नहीं होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बच्चों का ऐसे होता है कि हमें घर पे सारी चीजें मिल रही है
1: तो हमको कहीं बाहर
0: क्रेविंग नहीं होता है। बाहर इजिली जो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर कोई देता है तो तुरंत खाने के लिए जिद करते हैं, तो वो क्रेविंग चली जाती है। हाँ, जब आप ये उठा के रख रहे हो तो ऐसी जगह पे रखना कि एक डब्बा रहे जो उनको दिखे, एक्सेसिबल ना हो, इजीली वो पहुंच ना पाए, नहीं तो आप सो जाओगे, वो वापस खाने बैठ जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो ये चीज अपने को ध्यान देनी है।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, फिर आगे की बातें करते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो बताइए आपको कौन से गायक बहुत पसंद है?
0: मुझे पुराने गायक पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है मुझे किशोरदा जी, किशोर कुमार जी।
1: क्या बात है, तो पहला गाना कौन सा चुन रहे हैं आप?
0: पहला गाना मुझे अभी जो याद आ रहा है, ओ साथी रे, मुकद्दर का सिकंदर।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये गाना हमने सुना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा लग रहा था जैसे ये दांतों के लिए कहा जा रहा हो, क्योंकि क्योंकि दांत अगर नहीं हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाए। दांतों की समस्या लोगों को तब समझ में आती है जब समस्या सामने आती है, यानी जब दर्द होता है तब डॉक्टर नजर आता है। यहाँ हम बात करेंगे कैविटी की,
1: हाँ जी,
0: कि कैसे कैविटी बनती है और व्यक्ति को सावधान कब हो जाना चाहिए, तब नहीं जब असह्य दर्द हुआ और डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर दो।
1: तो ये समझने से पहले मैं आपको दांत का नेचुरल स्ट्रक्चर कैसे होता है ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। कुदरती तौर पे वैसे तो पूरी बॉडी ही इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, तो दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अगर बताऊं तो दांत में एक नस होती है, नस के ऊपर एक पार्शियली मिनरलाइज्ड 60% मिनरलाइज्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं डेंटिन। सबका डेंटिन का कलर येलोइश टू ब्राउनिश होता है।
0: अच्छा,
1: उसके ऊपर कोटिंग आती है एनामल की।
0: हाँ।
1: डेंटिन की थिकनेस होती है 4 से 6 mm तक। उसके ऊपर रहती है 2 से 4-5 mm तक इनामल की थिकनेस।
0: ठीक है,
1: तो अभी जो नस है उसके जो सिरे हैं वो डेंटिन तक आए हुए रहते हैं, इनामल में कोई भी नस का सिरा नहीं आया है।
0: बिल्कुल,
1: इसके लिए कैविटी जब स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, तब कभी दर्द नहीं होता है। दांतों में एक ब्राउनिश स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है।
0: ओके।
1: कभी कभार खाना फंसता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, टूथपिक से, पिन से, जो कुछ भी मिले उससे निकाल देते
0: लेकिन
1: हैं।
0: नस तक,
1: नस तक अभी तक पहुंचा नहीं है।
0: जी,
1: लेकिन धीरे धीरे वो बैक्टीरियाज अंदर बढ़ेंगे, जब डेंटिन तक पहुंचेंगे, नसों के एंड तक पहुंचेंगे, तब कभी कभार पानी पी लिया, ठंडे पानी पे झिंझिनाहट हो रही है, या फिर स्वीट खाया तो जब तक वो स्वीट का असर है तब तक झिंझिनाहट हुई, उसके बाद चला गया, तभी भी हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही चीज जब आगे बढ़ के नस तक पहुंच जाती है, तो नस एक ऐसा एरिया होता है कि दांतों की संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है, और दांतों को खून का सप्लाई रखना, दांतों को न्यूट्रिशन देना नसों से ही होता है। तो जब वो नस तक पहुंच जाता है तब जाके असहनीय दर्द जो बोलते हैं वो तब होना चालू होता है,
0: जिसकी हमने

0: चर्चा की,
1: डॉक्टर
0: साहब मर गए बचा लो।
1: हाँ जी, उसमें भी कुछ लोग काउंटर सेल पे जो मेडिसिन मिलते हैं मेडिकल में जाके दर्द की दवाई ले लेते हैं, चला लेते हैं। अभी वो नस सड़ गई है।
0: हाँ।
1: नस सड़ने के बाद नीचे हड्डी के नीचे सेप्टिक जमना चालू होता है, उसको डेंटल एब्सेस बोलते हैं।
0: ये बहुत खतरनाक है।
1: यस, फिर कोई दवाई भी असर नहीं करती है, तब जाके डॉक्टर को याद किया जाता है और तब जाके लोगों की नींद खुलती है कि हमें दांतों की समस्या है या फिर दांतों का ध्यान हमें रखना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों में ना एक मिथ है कि मुंह में जितना दांत दिखता है ना उतना ही दांत होता है।
0: अच्छा।
1: पर असलियत ऐसी नहीं है। असलियत जितना मुंह में दांत दिखता है उसका कम से कम 1.5 गुना दांत अंदर होता
0: है,
1: हड्डी में बैठा होता है, जबड़े की हड्डी में, तभी हम लोग सारी चीजें चबा पाते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ इतना सा दांत होता तो हम लोग जितनी चीजें खा रहे हैं आज, जिस तरीके की चीजें खा पी रहे हैं, वो जरा भी पॉसिबल नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। तो ये मिथ लोगों ने थोड़ा तोड़ लेंगे अपना तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कि दांत मुंह में दिखता है उतना नहीं होता है, उससे 1.5 गुना दांत अंदर होता है। मतलब सिंपली अगर इस चीज को मैं समझाऊं तो बिल्डिंग जितनी बाहर दिखती है उसका पाया उतना नीचे गहरा होता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तब जाके वो खड़ी रह पाती है।
0: सेम बात
1: यहाँ पे है। फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर का स्ट्रक्चर काम करेगा, वही प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है। तो ये चीज है। तो ये कैविटीज जब नस तक पहुंच गई है, नीचे एब्सेस बना रही है, तब जाके दवाई असर नहीं कर रही, तब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी जैसे मैंने बोला कि कैविटी शुरुआत में स्टार्ट होती है, बैक्टीरियाज की वजह से होती है। ये बैक्टीरियाज कहां से आते हैं? तो बॉडी में बहुत तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन अपने मुंह में और अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में, बहुत सारे तरीके के, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया में जितने अवेलेबल बैक्टीरियाज है उतने सारे तरीके के बैक्टीरियाज अपने इंटेस्टाइन में और मुंह में अवेलेबल।

0: पास। अभी जैसे मैंने बोला कि कैविटी शुरुआत में स्टार्ट होती है बैक्टीरियाज की वजह से होती है। ये बैक्टीरियाज कहाँ से आते हैं? तो बॉडी में बहुत तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन अपने मुंह में और अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में, बहुत सारे तरीके के, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया में जितने अवेलेबल बैक्टीरियाज है उतने सारे तरीके के बैक्टीरियाज अपने इंटेस्टाइन में और मुंह में अवेलेबल है। लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसानदायी होते हैं। तो जब ये हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं तब सड़न बढ़नी चालू होती है, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं कैल्शियम पे एंड हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स, जो इनामल का स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर इनामल का, उसको गला के वो अपना कैल्शियम की नीड पूरी करते हैं। और ये कब होता है? दांतों पे चिपका हुआ कोई भी खाना कैविटी बना सकता है लंबे समय तक। हम लोग स्वीट्स को या चॉकलेट्स को जल्दी दोष दे देते हैं। हाँ, उसका कारण भी है वैसे, क्योंकि स्वीट्स खाने के बाद में नॉर्मली जो अपनी थूक है, सलाइवा है, उसका पीएच वो होता है 7.2 to 7.4, लेकिन जब हम लोग स्वीट्स खाते हैं तो इट ड्रॉप्स, वो कम हो जाता है इमिडिएटली विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वो 4 से 5 के बीच में आ जाता है। मतलब न्यूट्रल रीडिंग होता है पीएच का 7, मतलब वो चीज ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है। नॉर्मली सलाइवा अपना अल्कलाइन होता है, तो जब वो एसिडिक बन जाता है तो एसिडिक एटमोस्फियर में जो बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं वो दांतों को गलाने के लिए, या फिर वो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो खुद को सर्वाइव करने के लिए दांतों को गलाना चालू कर देते हैं।
1: और ये हम खुद इस तरह का माहौल बनाते हैं दांतों में।
0: एग्जैक्टली, नॉर्मली ये तभी होता है जब आप ब्रश नहीं कर रहे हो या फिर स्वीट्स खाए हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो बहुत देर तक उसको मुंह में ऐसे ही घोलते बैठे हो।
1: जी
0: रात में नॉर्मली जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं या फिर खाना खा के तुरंत सो जाते हैं तो अपना जो थूक है, सलाइवरी सिक्रीशन है, वो भी कम हो जाता है। नहीं तो सुबह तक, वो भी कुदरती देन है, वो फंक्शन वैसा है, नहीं तो सुबह तक अपना तकिया पूरा सलाइवा से भर जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: ठीक है, तो वो सिक्रीशन कम होता है, तो इसकी वजह से जो सलाइवरी एंजाइम्स रहते हैं जो इम्यूनिटी का काम करते हैं वो भी कम हो गए। सलाइवा का दूसरा काम होता है कि वॉश आउट करना, नेचुरल रिंसिंग देना दांतों को, तो वो भी नहीं हो पाता है। इसके लिए रात में जो लंबा समय, 8 से 10 घंटे हम लोग जब सोते हैं तब ये बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं। इसके लिए रात में ब्रश करके सोना जरूरी होता है।
1: हाँ, बिल्कुल। और सुबह उठते ही ब्रश करना
0: ब्रश करना
1: बहुत
0: जरूरी
1: जरूरी है।
0: होता है।
1: डॉक्टर साहब, बातें ओरल हाइजीन की चल रही हैं और आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से कैविटी पैदा होती है और बाकी तमाम चीजें हैं। आज हम देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी के दांत बड़े मजबूत देखे गए हैं। हमारी दादी नानियां कड़क से कड़क चीज, मतलब आपने गाजर और ककड़ी को कड़क कहा, उससे कहीं ज्यादा कड़क चीजों को,
0: अखरोट
1: मजे से,
0: जैसे,
1: अखरोट जैसी चीजों को, गन्ने को मजे से छील के खा ले रही।
0: हाँ जी,
1: आज के बच्चों में तो वो, उनके दांतों में वो दमखम दिख ही नहीं रहा है। तो मुद्दा ये है कि क्या आज का समाज दांतों को लेकर कम अवेयर है और हम कमजोर दांतों वाले जमाने में आ गए?
0: अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे पहले भी बताया था वैसे ही आएगा यहाँ पे, कि प्रॉब्लम ये हो चुका है ना कि ज्यादा पका हुआ खाना खाने की आदत बन चुकी है, सॉफ्ट खाना खाने की आदत बन रही है लोगों की, जिसकी वजह से मसल्स और जॉ बोन, हड्डी जो होता है जबड़े का, उतना स्ट्रांग बन ही नहीं पा रहा
1: जैसे पहले के बुजुर्गों का है।
0: एग्जैक्टली, क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे, खेतों में चलते चलते उनका गन्ना चूसने का काम होता था, गन्ना दांतों से छील के खाने का काम होता था, उनका खाना उतना फाइबरस था, फाइबर्स बोलते खाने में, बेसिक है। मतलब जैसे जिम जाते हैं हम लोग मसल्स बढ़ाने के लिए, वहां क्या करते हैं हम लोग, मसल्स को एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी काबिलियत से ज्यादा उसके ऊपर लोड डाला जाता है, तब जाके मसल एक्स्ट्रा बड़ा बनता है। सेम फेशियल मसल्स का होता है, जो चबाने वाले मसल्स है उनमें भी वही चीज है, जितना काम आप उनको दोगे उतना वो बनेंगी, और ये चीज अगर डेवलपमेंटल स्टेज में हो तो ज्यादा अच्छा है। बट हम लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों का अवेयरनेस कम हो रहा है, पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है, बच्चों का पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है। मतलब अगर हमारे भी बचपन की बात करें तो पेरेंट्स, ये बना है ये खाना पड़ेगा,
1: बिल्कुल,
0: ये रूल होता था घर का। आज ऐसे होता है, मतलब मेरा बच्चा भी छोटा है अभी, तो हमारे घर पे भी ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन मैं खुद वहां पे एक विलन का रोल ले लेता हूं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए।
1: ये तो खाना ही पड़ेगा।
0: हाँ जी, तो नॉर्मली आजकल खाना बनता है कि बच्चा तुझे क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए,
1: हाँ उनके मुताबिक बन रहा है।
0: हाँ, उनके मुताबिक बन रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज पूरी तरीके से गलत है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए। हम लोग वो लिमिट कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। भी इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक आध साल पहले की बात है, या फिर बहुत बार हुआ है वैसे, लेकिन ये एक एपिक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए थे जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूं। 5 साल की बच्ची को लेकर आए थे, दांतों में कैविटीज थे, मसूड़ों में सूजन थी, मतलब उसका एब्सेस बन गया था अंदर, इतना उसका इन्फेक्शन फैला हुआ था। उसके पिताजी उसको लेके आए थे, मैंने देखा, चेक किया, ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने सुना, सुनने के बाद उन्होंने बच्ची को पूछा, बेटा आपको करवाना है? अभी 5 साल की बच्ची को क्या पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसने पहली बार दांतों का दवाखाना देखा है। तो मैंने उनको पूछा कि आप उसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो छोटी है, उसको क्या समझेगा क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन उनका जवाब बहुत

0: यादगार था मेरे लिए कि नहीं, आजकल बच्चों को पूछना पड़ता है।
1: ओहो,
0: अभी इतना बच्चों को पूछ के अगर आप जियोगे, तो मैंने उनको भी ये चीज हंसते हुए बोल दी थी कि ये थोड़े दिनों बाद आपको नहीं पूछेगी।
1: बहुत सही है, बहुत सही है।
0: तो ये जो दुलार है ना,
1: ये बहुत
0: इस
1: नुकसानदेह है।
0: हाँ मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए। इसके लिए मैंने बोला ना कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कहाँ प्यार करना है और कहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, उसके बाद
0: अच्छा
1: हम रूट कैनाल की बात करेंगे।
0: श्योरली। सो अभी किशोर दा का ही गाना सुनेंगे, मेरे नैना सावन भादो, क्योंकि
1: क्या बात है, महबूबा फिल्म
0: दांतों
1: का
0: में दर्द
1: गाना।
0: होता है तो नैनों से तो सावन बरसना ही है।
1: हा, सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, रूट कनाल ट्रीटमेंट आजकल बहुत लोगों को कराना पड़ता है और दांतों को लेकर एक जरूरी ट्रीटमेंट है जब सड़न हो जाती है। क्या इससे बचा जा सकता है? किन मामलों में, किन सावधानियों के जरिए और कब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है?
1: जैसे मैंने आपको दांत का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि नस अंदर होती है, उसके ऊपर डेंटिन होता है, उसके ऊपर इनामल होता है, तो जब सड़न नस तक पहुंची है तब जाके रूट कैनाल करना पड़ता है। रूट कैनल में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो आपकी नस सड़ रही है उसको साफ किया जाता है और उसकी जगह पे नकली नस बोल सकते हो आप उसको, या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल का फिलिंग किया जाता है।
0: यस,
1: जिसकी वजह से दांतों का सेंसेशन तो चला ही जाता है बट उसका ब्लड सप्लाई भी काफी हद तक कम हो जाता है।
0: यस,
1: इसके लिए रूट कैनाल करने के बाद कैप लगाना मैंडेटरी हो जाता है।
0: जी
1: क्यों? क्योंकि एक तो दांत का स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, ब्लड सप्लाई कमजोर हो रहा है, मतलब जो न्यूट्रिशन मिल रहा है दांतों को वो भी कम हो रहा है, और तीसरी बात, जितना बड़ा गड्ढा होता है उतना बड़ा सीमेंट

0: वहां पे टिके रहना मुश्किल होता है। चौथी बात यह है यहाँ पे कि नस तो चली गई, सेंसेशन चली गई, तो जब वापस उसमें अगर कैविटी लगेगी तो पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा और दांत टूट जाएगा। अभी दांतों के ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं और किस तरीके से किए जा सकते हैं, सबसे पहली बात तो होती है नॉर्मल सफाई करना। जब आपके दांतों में सड़न नहीं है लेकिन दांतों पे कुछ परत दिख रही है आपको, तो उसको साफ कर लो। उसके बाद आता है फिलिंग करना। जैसे मैंने बताया कि शुरुआती दौर में कैविटी दांतों में एक ब्राउन स्पॉट या काला स्पॉट की तरह दिखती है, या फिर कभी कभार थोड़ा बहुत खाना फंस रहा है, उसी वक्त अगर उसको ट्रीट किया जाए तो सिंपल ट्रीटमेंट होता है कि उसको साफ किया जाता है, फिर वो गड्ढा बनता है उसमें सीमेंट भरा जाता है। अभी ये दांतों के स्पेशल सीमेंट्स होते हैं, कुछ लोगों का मिथ यहाँ पे ये भी है, और ये मॉक डेंटिस्ट या फिर स्ट्रीट डेंटिस्ट जो होते हैं वो ये चीज करते भी है कि बहुत बार दांतों में एक्रेलिक भर के दे देते हैं। एमसील भरे हुए दांत देखे हैं मैंने,
1: अरे बाप रे,
0: व्हाइट सीमेंट भरा हुआ देखा हुआ है, जिसकी वजह से फिर कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो दांत तो चला ही गया, जबड़े का हड्डी भी गल गया, और उसकी वजह से आजू बाजू के भी दो दो तीन तीन दांत निकालने पड़े।
1: ओहो।
0: और ये होता है सस्ते के चक्कर में जब लोग भागते हैं, सस्ते में हमारा काम हो रहा है। सीधी सी बात है, दुनिया में आज हर कोई बिजनेस करने बैठा हुआ है। अगर कोई चीज 10 रुपए की बन रही है तो बनाने वाला उसको 15 रुपए की या 20 रुपए की बेचेगा।
1: बिल्कुल।
0: वो डिस्ट्रीब्यूटर वहां से लेगा, वो अपना मार्जिन जोड़ेगा, और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आ रही है या फिर पेशेंट के पास जा रही है, तो हर एक का मार्जिन जुड़ के अगर वो 10 रुपए की चीज आपको कोई 9 रुपए में ऑफर करे, तो सीधी सी बात है उसकी बनावट में कुछ खोट है, खामियां है, कुछ भी है, मतलब बनावट खराब है। डेंटिस्ट्री मतलब बहुत सारी फील्ड्स ऐसी है शरीर के मामले में कि जहां पे हम लोग शरीर में कुछ चीजें डाल रहे हैं जो एक्सटर्नल है, पर अगर वो शरीर से सुसंगत नहीं होंगी, शरीर के मुताबिक नहीं होंगी, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
1: और लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि दांतों में कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है।
0: एग्जैक्टली।
1: तो उस चीज का मजबूत होना कितना जरूरी है।
0: एग्जैक्टली, मतलब अगर यहाँ पे नंबर वाइज मैं बताऊँ,
1: हाँ, तो वही मैं जानना चाहता हूँ।
0: दांतों का जो नॉर्मल हमारा बाइटिंग फोर्स रहता है, इट इज रेंजिंग फ्रॉम 110 to 130 pascal, दैट इज न्यूटन सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर पे 130 न्यूटन का प्रेशर हम लोग डालते हैं, नंबर वाइज
1: ये बहुत ज्यादा है।
0: बहुत ज्यादा है। तो ट्रीटमेंट्स पे हम लोग थे, तो पहले तो फिलिंग हो गया, उसके बाद फिलिंग प्लस कैप होता है, ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। ये कब किया जाता है, जब कैविटी से दांत का ऊपर का स्ट्रक्चर अच्छा खासा सड़ गया है लेकिन वो नस तक नहीं पहुंचा है, तो उतना बड़ा सीमेंट लोड नहीं ले पाएगा जितना हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे अभी। तो वो सीमेंट को रिटेन करने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर रखने के लिए उसके ऊपर कैप लगाया जाता है।
1: यस।
0: फिर तीसरा ट्रीटमेंट आता है रूट कैनाल, जब नस छू गई है, नस इन्फेक्ट हो गई है या फिर नस के नीचे इन्फेक्शन हुआ है, फिर उसमें 2-3 बार नस के एरिया की सफाई की जाती है, पूरी सड़न साफ करके नस तक एक्सेस लिया जाता है, नस के एरिया की सफाई की जाती है, दवाई डाली जाती है ताकि जो बैक्टीरियाज अंदर चले गए वो मर जाए, खत्म हो जाए और वो पूरा एरिया असेप्टिक बने। फिर उसको पूरा स्टराइल करके, मतलब फिलिंग करने से पहले भी अलग अलग दवाइयां डालते हैं हम लोग उसमें, ताकि वो पूरा एरिया स्टराइल हो जाए, डिसइंफेक्ट हो जाए, और फिर हम लोग फिलिंग करते हैं। फिलिंग करते वक्त हम लोग इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि जो पहले वाला फिलिंग या फिर सीमेंट निकाला हुआ है वो कहीं पे भी टच ना हो, या फिर थूक भी अपनी टच ना हो उसको, क्योंकि थूक में भी बैक्टीरियाज होते हैं जैसे हमने बात की, तो वो भी वहां पे टच ना हो, ये ध्यान हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाई जाती है, और आखिरी ट्रीटमेंट होता है दांत निकालना, जबकि पूरा ही दांत टूट चुका है या फिर बहुत ज्यादा सड़न बढ़ चुकी है। जैसे बड़ी चौबर होती है पीछे वाली, उनकी 2 या 3 जड़े होती है, वो जड़ों के बीच में क्रैक आने लग गया है, उस सिचुएशन में रूट कैनाल भी असर नहीं करता है, तब दांत निकालना पड़ता है। अभी यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि दांत निकालने के बाद बच्चों में भी एक चीज होती है जिसको बोला जाता है स्पेस मेंटेनर, और बड़ों में एक चीज की जा सकती है, दांत बिठाने की जरूरत होती है। मुंह में एक इकलौता दांत ऐसा है जिसको बोलते हैं अक्कल दांत, विजडम टूथ, वो अगर निकाल दिया जाए और ना बिठाया जाए तो चलता है, क्योंकि नेचुरली भी जब हम लोग मुंह बंद करते हैं तो विजडम टूथ बहुत सारे केसेस, मतलब मैक्सिमम केसेस में वो टच होता ही नहीं ऊपर नीचे, तो खाना चबाने का एज सच कुछ फंक्शन नहीं होता उसका, ना दिखने में वो काम में आता है, तो इसके लिए वो दांत ना बिठाए तो चलता है। लेकिन उसे छोड़ के बाकी कोई भी दांत अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसे बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अभी ये क्यों होती है?
1: बिल्कुल,
0: नॉर्मली लोगों का सवाल आता है कि क्यों बिठाना है, मैं तो खा
1: इसके
0: पा
1: बिना
0: रहा
1: भी चल सकता है,
0: इसके बिना भी मेरा चल रहा है, क्योंकि एक ही साइड का एक दांत निकाला हुआ, पीछे की चौबर तो है, आगे के दांत है, दूसरे साइड में मेरे सब फाइन है। सबसे पहली बात ये होती है कि नॉर्मली जब हम लोग दांतों पे प्रेशर देते हैं तो जैसे हमने बोला कि उसकी 1.5 गुना जड़े अंदर होती है, वो जड़ों के द्वारा हड्डी में फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो दांत के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो पूरे जबड़े के हड्डी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये उसका फंक्शन है। बॉडी की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि जो भाग हम लोग यूज नहीं करते हैं, बॉडी वहां पे न्यूट्रिशंस वेस्ट नहीं करती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहाँ पे, तो किसी का हाथ अगर प्लास्टर में है, समझ लीजिए किसी वजह से फ्रैक्चर

0: हुआ है प्लास्टर में, 1-1.5-2 महीने बाद जब प्लास्टर निकाला जाता है तो आपने भी देखा होगा कि वो हाथ उतना मजबूत नहीं दिखता है जितना उसका पहले था। क्यों? क्योंकि उतना फंक्शन वो कर ही नहीं रहा था 1.5-2 महीने तक। वहां पे न्यूट्रिशंस की सिर्फ जरूरत थी उस घाव भरने के लिए, वो हड्डी भरने के लिए उतने ही न्यूट्रिशंस पहुंचाए जाते हैं। तो वही होता है जबड़े की हड्डी के मामले में।
1: अच्छा,
0: जब दांत निकल गया वो हड्डी का फंक्शन खत्म हो गया तो हड्डी गलना चालू हो जाता है। वो गलते गलते इतना गल जाता है कि आजू बाजू के दांतों का भी हड्डी गल जाता है। एक चीज ये होती है। दूसरी चीज, आगे का दांत पीछे झुक जाता है, पीछे का दांत आगे झुक जाता है, ऊपर वाला दांत नीचे आता है या नीचे वाला दांत एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी ट्राइज टू रेस्टोर इट्स फंक्शन।
1: ओके,
0: खाना खाना तो चालू ही है, बॉडी को सिग्नल्स मिल ही रहे कि यहाँ पे खाना चबाया जा रहा है,
1: तो
0: वो बैलेंस करने के लिए जो दांत अवेलेबल है उनको वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है।
1: ओके,
0: एक दो दिनों में ये चीज नहीं होती है, टाइम लगता है, लेकिन ये सब जब होता है और जब पेशेंट की नींद खुलती है तब उनके आजू बाजू के दांत भी खराब हो चुके होते हैं।
1: इसलिए डॉक्टर के पास जितने जल्दी हो सके, डेंटिस्ट के पास समस्या से पहले पहुंचना चाहिए।
0: सही बात है। और इसके लिए सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, डेली आप अगर ब्रश कर रहे हो ना तो उसी टाइम पे ब्रश होने के बाद मुंह में सिर्फ अपने झांकना है 1 मिनट के लिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, कहीं कुछ और तो नहीं दिख रहा, और अगर दिख रहा है नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल रहा वो चीज तो एक बार डेंटिस्ट का ओपिनियन लिया जाए।
1: ठीक बात है,
0: इतनी सी बात होती है। पर हमारा अभी लाइफस्टाइल इतना स्पीड वाला हो गया ना कि उतना भी वक्त हमारे पास नहीं है। और जब तक प्यास लगती नहीं है हम लोग कुएं के पास जाते नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप गुनगुनाते भी हैं और गाने का शौक रखते हैं।
0: हाँ जी, शौकिया तौर पे रखता हूँ, मैं खुद को गायक नहीं मानता हूँ
1: जी,
0: बट हाँ कभी कभार छोटे मोटे घरेलू जो गेट टुगेदर होते हैं वहां पे हम लोग गा लेते हैं।
1: तो हमारे लिए भी गाइए।
0: ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ
1: जी।
0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: डॉक्टर साहब,
1: जी
0: जिंदगी एक सफर तो है, लेकिन जब दांतों का दर्द होता है तो इंसान बहुत सफर करता है। ये
1: सही
0: दूसरा वाला सफर जो है, ये बड़ा खतरनाक है।
1: है।
0: माँ बाप दो बातों से परेशान रहते हैं, एक बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत और दूसरे बाहर निकले हुए दांत। इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ चारों तरफ ब्रेसेस लगे हुए बच्चे नजर
1: हाँ
0: आते
1: जी,
0: हैं,
1: हाँ
0: ये
1: जी।
0: सब क्या मामला है?
1: जैसे हमने बात की कि जब जबड़े की ग्रोथ बराबर नहीं होती है
0: हाँ,
1: तब दांतों को आने के लिए जगह नहीं होती है, परमानेंट दांत बड़े होते हैं तो वो जैसे जगह मिलती है वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तब दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: अभी आड़े टेढ़े दांत क्यों नहीं होने चाहिए? नॉर्मली लोग एक चीज समझते हैं कि एस्थेटिक वाइज दिखने के लिए वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, या फिर ज्यादा आगे है तो इसके लिए वो सोचते हैं कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन इसका और एक प्रॉब्लम होता है आगे चल के, क्या होता है ना, दांतों के ऊपर ही नहीं दांतों के बीच में भी गैप्स होते हैं नॉर्मली। वो गैप्स में जब खाना फंसता है, और अगर आपके दांतों के अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो आपको फंसा हुआ खाना समझ में भी नहीं आता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: उसकी वजह से कैविटीज ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से दांतों के प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ते हैं और वो व्यक्ति परेशान रहता है जिंदगी भर कि मेरे दांतों में हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। दूसरी बात, हाँ हमने ब्रशिंग की बात की, यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि दांतों के बीच के एरिया को साफ करने के लिए कोई भी ब्रश आज तक बना नहीं है, उसके लिए बना है लेकिन जब गैप्स उतने बड़े हो, उसको प्रोक्सा ब्रशेस बोला जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि गैप कितना है, बट नॉर्मली जो टचिंग होते हैं दांत या फिर जो नॉर्मल गैप्स होते हैं जहां पे खाना फंस रहा है वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलता है, तो उसके लिए करना पड़ता है फ्लॉस।
0: फ्लॉस के लिए वो
1: धागा आता है,
0: धागा
1: नाइलॉन
0: आता
1: का
0: है।
1: धागा रहता है, इसको फ्लॉस ही बोला जाता है, अलग अलग कंपनियां बनाती है उसको, उसमें भी दो तीन टाइप के आते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल रहे वो आप कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे। अभी आड़े टेढ़े दांतों की बात करेंगे, आगे आए हैं एस्थेटिकली अच्छे नहीं दिखते हैं, तो ब्रेसेस, यस इट इज द सोल्यूशन। अभी तो ब्रेसेस में बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हुए हैं, अलाइनर्स करके चीज आई हुई है जो पूरे ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस होते हैं कि पहना है व्यक्ति ने कुछ समझ में नहीं आता है, जिसको अलाइनर्स बोला जाता है। तो अभी उसमें भी कैसा है कि बनाने वाली कंपनीज बहुत है लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज बहुत कम है, और प्रोडक्ट जब तक अच्छा नहीं है तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा डिजिटल प्रोग्रामिंग होता है, स्कैन किया जाता है आपके जबड़े का पूरा,
0: जी
1: और वो प्रोग्राम बताता है कि वो सेट्स कितने लगेंगे अलाइनर्स के, फिर हर सेट आपको 15 से 20 दिन पहनना होता है,
0: हाँ
1: तब जाके कुछ चेंज होता है दांतों में अरेंजमेंट में, तब दूसरा सेट पहनना होता है। अभी ये निकालने पहनने वाली चीज है, इसकी सबसे बड़ी खामी भी यही है और अच्छाई भी यही है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि खामी मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि नॉर्मली लोग निकाल के भूल जाते हैं वापस पहनना, वो भले निकालने पहनने वाली चीज हो लेकिन उसको दिन में 20 से 22 घंटे पहनना जरूरी होता है, वो सिर्फ ब्रशिंग के टाइम पे या खाना खाने के टाइम पे आप निकाल सकते हो, बाकी टाइम आपको पहन के रखना है, पहन के बात करनी है, पहन के सोना है, वैसे भी वो दिखता नहीं है, तो मोस्ट कंफर्टेबल थिंग। पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो अलाइनस से नहीं की जा सकती, जैसे ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसके लिए फिर हम लोग हाफ ब्रेसेस से करते हैं और हाफ अलाइनस से ट्रीटमेंट कर देते हैं कि हाँ नॉर्मल पे आ गया फिर हम लोग अलाइनस पे शिफ्ट करेंगे। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर बजट, बाकी फाइनल रिजल्ट जो आपको चाहिए होता है वो सब में आता है, सेम ही आता है, ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपकी चॉइस क्या है। जितनी एस्थेटिक चीजें आप लोगे जो ना दिखे या फिर दिखने में ज्यादा खूबसूरत हो तो वो थोड़ी महंगी जाती है, और जितना सिंपल लुकिंग चीज रहेगा या फिर थोड़ा और दिखने के लिए होगा, जैसे नॉर्मली आप मेटल के ब्रेसेस देखते हो स्टील के ब्रैकेट्स लगाए हुए होते हैं, वो एक सस्ता ऑप्शन है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली पेशेंट्स को कभी सजेस्ट नहीं करता हूं कि महंगे वाली चीज के लिए जाइए आप, अनलेस एंड अनटिल उनका प्रोफेशन डिमांड ना कर रहा हो या फिर लेट वो ब्रेसेस कर रहे हैं, मतलब बड़े उम्र में कर रहे हैं, तब मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इनविजिबल चीजों में जाइए। पर यंग बच्चा है जहां पे एस्थेटिक उसके कंसर्न नहीं है उतने, तब हम लोग नॉर्मली सस्ते वाले ब्रेसेस में भी जाने का ऑप्शन दे देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है दांतों की अरेंजमेंट ठीक हो जाती है, तो कहीं पे खाना फंस रहा है नहीं फंस रहा है वो सारी चीजें क्लीन रहती है और जबड़े की हड्डी की ग्रोथ अच्छी रहती है। लॉन्ग टर्म में अगर आपके दांत आड़े टेढ़े हैं, आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, भले आप नॉर्मल खाना पीना भी खा रहे हो और फिर भी आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर भी आपका हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी गल जाता है, उसको ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन बोला जाता है, मतलब नॉर्मल बाइट की वजह से ट्रॉमा हो रहा है दांतों पर और वो हड्डी गल रही है, तो ये सारी चीजें आप ब्रेसेस से ठीक कर सकते हो, ये चीज है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग होते हैं जिनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, दांतों की बहुत सड़न होती है। पुराने जमाने से एक बहुत बड़ी समस्या पायरिया रही है,
1: हाँ जी,
0: इसकी बात करते हैं, और उसके बाद उन मरीजों की बातें करेंगे जिनको पूरा डेंचर बदलने की जरूरत पड़ती है। एक्सट्रीम केसेस की बात उसके बाद करेंगे।
1: चलेगा। तो आपका पहला सवाल है पायरिया के बारे
0: पायरिया
1: में।
0: का
1: पायरिया जो चीज होती है, एक्चुअली ये बीमारी है जबड़े की हड्डी और मसूड़ों की,
0: अच्छा, वो दांतों की बीमारी
1: दांत
0: नहीं?

0: दांतों की बीमारी नहीं है, ये पहले समझने वाली बात है। सबसे बुरी बात पायरिया की ये है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन के लिए, कि इसमें मैक्सिमम लोगों को दर्द होता ही नहीं है। बहुत सारे केसेस में तो एक्सट्रीम बुरा हो जाता है, तभी भी दर्द नहीं होता है। लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि दांत अपने आप हिलने लग गए और अपने आप गिर गए। अपने आप कभी दांत नहीं हिलता है। आप खुद सोचिए कि जितना दांत मुंह में दिख रहा है उससे डेढ़ गुना दांत अंदर हड्डी में बैठा हुआ है। वो हड्डी जब गलेगी तब उसका सपोर्ट जाएगा, तब दांत हिलेगा।
1: तो हड्डी मामला
0: है। एग्जैक्टली, वो एक दिन में होता नहीं है। पायरिया का बीमारी एक दिन में होता नहीं, उसके भी चार स्टेजेस है, ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, ग्रेड फोर बोलते हैं हम लोग, उसमें टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन ये क्यों होता है, तो दांतों के ऊपर जो परत जमती है, अभी इसमें जो काम करते हैं वो बैक्टीरियाज अलग है, दांतों को सड़ाने वाले बैक्टीरियाज अलग है। उसके डिटेलिंग्स में मैं नहीं जाऊंगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें। पर ये जो परत जमती है दांतों के ऊपर, खाने की परत समझ लो या फिर कोई भी स्वीट की परत है, उसमें बैक्टीरियाज पनपने चालू हो जाते हैं। स्पेशली जहां पे आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि नॉर्मली लोगों को एक ही साइड से खाना चबाने की आदत होती है, तो दूसरे साइड में सलाइवरी सिक्रेशन कम होता है, तो वहां पे भी ये परत जमना चालू हो जाता है। तो उस परत में जो बैक्टीरिया जमते हैं उनका भी खाना होता है कैल्शियम, वो मसूड़ों में से अंदर जाके हड्डी से कैल्शियम लेना चालू करते हैं, तब जाके हड्डी गलती है। तो इसमें पायरिया जो बड़ा टर्म है उसको दो टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, एक जिंजिवाइटिस और फिर होता है पेरियोडोंटाइटिस। दांत और हड्डी इनके बीच में एक लिगामेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट। वो लिगामेंट की बीमारी होती है पेरियोडोंटाइटिस। तो ये जो बैक्टीरियाज है वो कहां से जा रहे हैं, दांतों के ऊपर जमी हुई परत से ही जा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी जरूरी होती है, जैसे मैंने बोला कि जो चीज आपके ब्रश से साफ नहीं हो रही है तो उस चीज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। उसको वक्त रहते ही आपने साफ कर लिया तो बहुत सारे केसेस में ग्रेड वन वाली स्टेजेस में तो सेल्फ रिपेयरिंग चीज है, उसके लिए कोई ज्यादा मेडिसिन भी नहीं देने पड़ते, सिर्फ साफ करना पड़ता है और अपने आप बॉडी ठीक कर लेती है उसको। अभी पायरिया जब होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एक मसूड़े में सूजन दिखना, अगर आप देखोगे तो समझ में आएगी, नॉर्मली लोगों के पास देखने के लिए वक्त है नहीं। वो आगे चल के मुंह से बदबू आना,
1: ये थोड़ा विजिबल साइन है,
0: ये विजिबल साइन है, लेकिन इसको भी लोग नजरअंदाज करते हैं क्योंकि अपने मुंह की बदबू अपने आप को नहीं आती है,
1: लेकिन वो एक सोशल डिलेमा बन जाता है।
0: सोशल डिलेमा बन जाता है अगर खुद को आई तो, अगर आप उस बारे में अवेयर हो,
1: लोग आपसे दूर जाने लगते हैं,
0: नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता। और नॉर्मली कोई आके खुल के आपसे ये बोलेगा नहीं कि भाई साहब आपके मुंह से बदबू आ रही है, इजीली बोलेगा नहीं, अनलेस एंड टिल आपका उस बंदे के साथ या बंदी के साथ उतना क्लोज रिलेशनशिप ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे होता है कि कभी कभार ब्लीडिंग होना चालू होता है मसूड़ों में से,
1: हाँ जी,
0: ब्रश करते वक्त खून आ गया, फिर उसके बाद चालू होता है दांत हिलना। ये एक स्लो पॉइजन है बॉडी में, मतलब ये बहुत कॉमन है। अभी कल की बात है, मेरे एक दोस्त के पिताजी के चार दांत गिर गए, बोले शुक्रवार को गिरे हैं, मुझे कल फोन आया तो मैंने पूछा कैसे गिरे, अपने आप गिर गए।
1: कितना नॉर्मल है ना,
0: कितना नॉर्मल है। आपको अभी जो आगे की चीज है कि पूरा डेंचर वगैरह, उसमें जब हम लोग जाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कितनी महंगे दांत है,
1: बिल्कुल,
0: जो हमें फ्री मिले हैं, इसके लिए हम लोग उसकी कदर नहीं कर रहे, ऐसा मुझे बहुत बार लगता है, जिसके लिए मुझे बुरा लगता है।
1: यस,
0: या फिर पूरे शरीर की ही कीमत आप लगा लो, रिपेयरिंग की कीमत लगा लो तो करोड़ों में जाती है, कई सौ करोड़ों में जाती है।
1: यस,
0: लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि फ्री में मिला हुआ है,
1: बिल्कुल,
0: उल्टा उसको बर्बाद करने वाली चीजों पे हम लोग खर्चा करते हैं। फिर उसमें वो सुपारी आ गई, पान आ गया, अभी मुंह के बारे में बात कर रहे तो
1: वो सारी
0: चीजें,
1: तंबाकू,
0: स्मोकिंग, और बहुत यंग एज में बहुत गंदी हालत देखी हुई है मैंने
1: दांतों की,
0: ओवरऑल मुंह की, मसूड़ों की, जबड़ों की। मतलब बहुत बार मैंने जो पेशेंट को लाइन बोली है, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, 25-30 साल की उम्र है लेकिन उनका दांत का कंडीशन होता है 60-65 साल की उम्र के बुड्ढों की तरह।
1: अरे अरे,
0: तो उनको भी मैं ये समझा देता हूँ। और ये नॉर्मली हैबिट्स जब होती है तभी होता है,
1: बिल्कुल।
0: और जब ये पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट मांगते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज मांगता हूँ कि आप अपनी हैबिट बंद कर दो, मैं बाकी की सारी चीजें रिपेयर करने की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट चालू रखोगे तो कुछ भी आप कर लो, आप पूरा पैसा डाल के आप अपना भी वक्त खर्चा करोगे, मेरा भी करवाओगे, मेरी मेहनत भी लगवाओगे, लेकिन बाद में बर्बादी आप करोगे। तो इसके लिए जो फ्री मिला है उसकी थोड़ी वैल्यू कर लो,
1: बिल्कुल,
0: ये सजेशन मैं यहां दूंगा।
1: इसी बात पर एक गाना सुनते हैं और उसके बाद वो डेंचर वाली बात करते हैं।
0: सही है, तो हम यहाँ पे सुनेंगे, यहाँ पे दांत बोलेंगे कि हम बेवफा हरगिज न थे,
1: वाह, पर हम वफा करना सीखे
0: क्योंकि आपने
1: करना सीखे।
0: एग्जैक्टली,
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, बहुत एक्सट्रीम केसेस की अब हम बात करना चाहते हैं। जो आपने कहा कि इतने महंगे दांत हैं और फ्री में मिले हैं तो हम कदर नहीं करते, इसको जरा तफसील से बताइए कि कितने लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं अपने दांतों को वापस लाने के लिए, जब पूरा डेंचर बदलना पड़ता है।
1: हाँ जी, अभी जैसे हमने बात की कि एक दांत भी अगर आपका निकला है तो उसको इमिडिएटली रिप्लेस करवाना चाहिए, क्योंकि उसका फंक्शन रेस्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो वैसे ही ऑप्शंस क्या क्या है उसके, पहले तो ये बताऊंगा मैं कि वहां पे मुंह में दो ही कड़क स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर हम लोग सपोर्ट लेके परमानेंट वाला फिक्स दांत दे सकते हैं। एक तो खुद दांत अपने, या फिर हड्डी जिसमें दांत बैठे हुए, जबड़े की हड्डी। तो दांतों के ऊपर सपोर्ट लेके जो चीज की जाती है उसको बोलते हैं ब्रिज। जैसे बीच में एक दांत नहीं है तो आगे के एक दांत को छोटा किया जाता है, पीछे के एक दांत को छोटा किया जाता है, और तीन
0: लेवल में लाए जाते
1: हैं। एग्जैक्टली, और तीन कैप एक साथ बिठाए जाते हैं, जिस चीज को बोलते हैं ब्रिज, क्योंकि जो बीच वाला है वो ब्रिज है।
0: करेक्ट,
1: दो दांतों के सपोर्ट पे। ये हो गया एक ऑप्शन। अभी उसमें भी अलग अलग टाइप के कैप्स आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके दांत कैसे हैं, कौन से तरीके का कैप आपके केस में बेटर रहेगा, या आपके डेंटिस्ट आपको अच्छे से सलाह दे सकते हैं।
0: इसमें दांतों का प्रेशर भी काम करता है।
1: एग्जैक्टली, आपका बाइट फोर्स कितना है,
0: जी जी,
1: आपके फूड हैबिट्स कैसे हैं, दांतों का अरेंजमेंट कैसा है।
0: यस,
1: क्योंकि जैसे लंबे स्पैन वाले ब्रिज होते हैं, तो अगर आपके अपोजिट साइड के दांत नीचे के जबड़े का कर रहे, तो ऊपर साइड के दांत अगर आपके आड़े टेढ़े हैं तो ब्रिज के ऊपर सीधा फोर्स नहीं पड़ने वाला, आड़ा टेढ़ा फोर्स पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा मटेरियल ज्यादा सूटेबल रहेगा, वो डिपेंड करता है आपके अरेंजमेंट के ऊपर। क्योंकि वो फोर्स जहां पे पड़ेगा वहां पे अगर टूटते रहेगा तो क्या होता है ना, ये भी एक चीज है कि एक दो बार टूटता है तो पेशेंट खुद ही गिव अप कर देते हैं और नहीं करना है बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको ये चीज समझनी जरूरी है कि हर बार महंगी चीज ही अच्छी होगी जरूरी नहीं है, और हर बार सस्ती चीज ही आपके केस में काम करेगी वो भी जरूरी नहीं है। तो केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या आपके केस में सबसे बेस्ट होगा, वो आपके डेंटिस्ट आपको बेस्ट तरीका बता सकते हैं। अभी दूसरा तरीका जो है रिप्लेसमेंट का, उसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, जहां पे हड्डी में एक इम्प्लांट डाला जाता है। एक स्क्रू जैसी चीज होती है, एक्चुअली उसका डिजाइन स्क्रू जैसा होता है, एक्चुअल में स्क्रू नहीं होता। वो डिजाइन स्क्रू की तरह देने का कारण ये होता है कि उतना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होता है हड्डी को उसके साथ पकड़ बनाने के लिए। तो इसके लिए वो इम्प्लांट जाता है हड्डी के अंदर, उसके ऊपर एक अटैचमेंट लगती है जिसको अबटमेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। ये सबसे बेस्ट तरीका है आज की तारीख में दांत बिठाने का, क्योंकि इस तरीके में नेचुरली जैसे दांत फंक्शन करता है वैसे ही दांत हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं। और अभी टेक्नोलॉजीज इतनी आ चुकी है, ये तो एक इम्प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो पूरे मुंह के इम्प्लांट्स 2 दिन में 3 दिन में हम लोग केसेस खत्म करते हैं। पूरे मुंह के दांत हम लोग इमीडिएट इम्प्लांट करके पेशेंट को 2 दिन में फाइनल दांत दे देते हैं।
0: बहुत जल्दी होने लगा ये,
1: बहुत जल्दी होने लगा है। हाँ, खर्चीली चीजें है। अभी इसका खर्चा अगर मैं बताऊं तो लाखों में जाता है
0: बाकायदा,
1: क्योंकि जो हड्डी में स्क्रू

0: आ रहा है, वो बना होता है टाइटेनियम से।
1: और वो महंगी चीज है।
0: टाइटेनियम सोने से भी ज्यादा महंगा आता है, तो वो महंगी चीज है। प्लस उसके टेक्निकल चीजों में अगर मैं जाऊं तो जो कंपनीज उसको बनाती है, तो उसके जो मशीन्स होते हैं, मतलब एक बार चालू कर दी मशीन तो बल्क प्रोडक्शन करेगी, तभी वो रुका पाओगे आप। नहीं तो एक या दो सैंपल पीस बना के आप रोक नहीं सकते, वो हजारों में बनाने पड़ते हैं। ये कंपनी की मजबूरी है क्योंकि मशीन्स वैसे है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको खर्चा ज्यादा करना पड़ता है उसके पीछे। ऑब्वियस सी बात है, वो बाहर भी अपना नफा जोड़ेंगे। तो अगर मैं आपको अंदाजा दूं तो कम से कम 20-25 हज़ार से लेके 70-80 हज़ार, 1 लाख रुपए तक का इम्प्लांट होता है एक दांत का।
1: एक दांत का
0: तो अगर हम लोग पूरे मुंह की बात करें तो कम से कम 4-5 लाख रुपए से लेके 20-25 लाख तक आपका खर्चा जा सकता है, सारे दांत अगर आपको फिक्स में बिठाने हैं। ये हो गई फिक्स दांतों की बात। अभी आते निकालने पहनने वाले दांतों पे, डेंचर्स, या फिर हमने बहुत अपने दादा दादी को वगैरह देखा होगा पहनते हुए, निकालते हुए, वो निकाल के डब्बे में रखते हैं दांत। तो वो चीज आज की तारीख में ज्यादातर आउटडेटेड हो चुकी है। वो चीज वही पुरानी जनरेशन ही पहनना चाहती है जो पहले से पहन रहे हैं। लेकिन वो चीज का ड्रॉबैक बहुत सारा है। एक, जैसे हमने दांतों के ऊपर फोर्स की बात की थी, 120 to 130 न्यूटन सेंटीमीटर का प्रेशर रहता है। डेंचर में आपको प्रेशर रेस्टोर होता है 5 से 15 का,
1: बहुत कम है।
0: बहुत कम है। वही हम लोग इम्प्लांट के साथ रेस्टोर कर पाते हैं 110 से 115 तक,
1: इक्विवेलेंट है,
0: ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो इसके लिए डेंचर पे आप बहुत सारी चीजें नहीं खा पाते हो।
1: पर इम्प्लांट बहुत महंगा होता है।
0: इम्प्लांट
1: सॉरी
0: बहुत महंगा होता है,
1: जी।
0: डेंचर उसके मुकाबले काफी सस्ते होते हैं।
1: तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, आज की इस पूरी बातचीत का जो सबक है वो ये है कि दांत बहुत बेशकीमती हैं, और जैसा कि आपने कहा कि चूंकि मुफ्त में मिले हैं तो लोग उनकी केयर, उनकी कदर नहीं करते। तो रोजमर्रा की स्थिति में इन दांतों को बचाकर रखना जरूरी है। अब अगर मैं आपको कहूं लास्ट में एक वन लाइनर दे दीजिए अपने मरीजों को, सुनने वालों को, तो आप वो दांतों की केयर के लिए क्या वन लाइनर देंगे?
0: स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। क्यों? क्योंकि दांत अच्छे हैं तो आप खुल के स्माइल भी करोगे, और खुल के
1: बिल्कुल,
0: स्माइल करोगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच सर।
2: ये थी जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज़।

सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे थे विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम 101.9 MHz पर, यह है FM रेडियो लेक सिटी। शाम के 5 बजे हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: कहीं लहरों में छुपी है कोई पुकार, कहीं इतिहास के पन्नों में सोया है एक नया विचार, कहीं किसी की ममता ने दुनिया सवारी है तो कहीं किसी खोज ने नई सुबह उगारी है, कहीं संघर्ष की कहानी है तो कहीं सफलता की निशानी है, कहीं अतीत की गूंज सुनाई देती है तो कहीं भविष्य की दस्तक भी हमें दिखाई देती है।
1: वाह प्रेरणा, सच्ची तो है। हर दिन अपने साथ कुछ किस्से लेकर आता है, कुछ प्रेरणाएं, कुछ उपलब्धियाँ, कुछ ऐसे नाम जो समय की धूल से ढकते नहीं बल्कि हर पीढ़ी को नई दिशा देते हैं।
0: और आज का यह सफ़र भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहाँ कभी प्रकृति हमें जीवन का संदेश देगी तो कभी विज्ञान अपनी अद्भुत दुनिया के द्वार खोलेगा,
1: तो कहीं इतिहास हमें अपने साहस और संघर्ष की कहानी सुनाएगा, तो कहीं कुछ महान व्यक्तित्व अपने कर्मों से हमें प्रेरित भी करेंगे।
0: खेल जगत की रोमांचक उपलब्धियां होंगी, बाजार की हलचल होगी और समय के झरोखे से झांकती कुछ ऐसी घटनाएं भी जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया।
1: तो श्रोताओं तैयार हो जाइए, ज्ञान प्रेरणा इतिहास विज्ञान उपलब्धियों और भावनाओं से सजे एक खूबसूरत सफर के लिए।
0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा
1: और मैं हूँ निकिता। आकाशवाणी के प्रिय कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं।
0: चलो शब्दों के संग एक नई दुनिया बसाएं, कुछ सीखें, कुछ सुनें और कुछ सपनों को उड़ान दिलाएं।

0: निकिता, अगर मैं आपसे कहूं कि समुद्र के भीतर एक ऐसी रंगीन दुनिया बसी हुई है जो लाखों जीवों का घर है, तूफानों से हमारे तटों की रक्षा करती है और अंतरिक्ष से भी हमें दिखाई देती है, तो क्या आप विश्वास करोगी?
1: बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम आज जिस दुनिया की बात कर रहे हैं वह किसी महल या शहर की नहीं, बल्कि कोरल रिफ्स यानी प्रवाल भित्तियों की है।
0: और इन्हीं अद्भुत प्राकृतिक संरचनाओं के महत्व को समझने और समझाने के लिए हर साल 1 जून को विश्व रीफ जागरूकता दिवस मनाया जाता है।
1: प्रेरणा, क्या यह दिवस किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा शुरू किया गया था?
0: बिल्कुल, इस दिवस की शुरुआत समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए कार्य करने वाले संगठनों और पर्यावरणविदों द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य लोगों को यह बताना था कि समुद्र के भीतर मौजूद कोरल रीफ्स पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदाओं में से एक हैं।
1: और समय के साथ यह अभियान वैश्विक स्तर पर फैल गया और आज दुनिया के कई देशों में 1 जून को समुद्री संरक्षण और कोरल रीफ्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
0: दोस्तों, विश्व रीफ जागरूकता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को कोरल रीफ्स के महत्व और उनके सामने मौजूद खतरों के बारे में जागरूक करना है।
1: साथ ही यह दिवस हमें याद दिलाता है कि जलवायु परिवर्तन, समुद्री प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा और बढ़ता समुद्री तापमान इन अनमोल रीफ्स को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं।
0: दोस्तों, कोरल रीफ्स को अक्सर समुद्र के वर्षावन कहा जाता है
1: और इसकी वजह यह है कि पृथ्वी के समुद्र तल के केवल लगभग 1% हिस्से में फैली होने के बावजूद ये लगभग 25% समुद्री जीवों को आश्रय प्रदान करती है।
0: मछलियाँ, कछुए, समुद्री घोड़े और अनेक दुर्लभ प्रजातियाँ अपने जीवन के लिए कोरल रीफ्स पर निर्भर रहती हैं।
1: और इतना ही नहीं, ये समुद्री तूफानों और लहरों के प्रभाव को कम करके तटीय क्षेत्रों की रक्षा भी करती हैं।
0: निकिता, क्या आप जानती हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है?

0: हाँ, और यह इतनी विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है।
1: और एक और रोचक तथ्य की बात करें तो वो यह है कि कुछ कोरल संरचनाओं को विकसित होने में सैकड़ों और कभी कभी हजारों वर्ष भी लग जाते हैं।
0: यानी जिसे प्रकृति बनाने में सदियां लगाती है, उसे मानव गतिविधियां कुछ ही वर्षों में नुकसान पहुंचा सकती है।
1: बिल्कुल दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है।
0: दोस्तों, कोरल ब्लीचिंग वह स्थिति है जब कोरल अपना रंग बिल्कुल खो देता है और धीरे धीरे कमजोर होकर नष्ट होने लगता है।
1: यही कारण है कि आज दुनिया भर में समुद्री संरक्षण अभियानों, नागरिक वैज्ञानिक कार्यक्रमों और पर्यावरणीय जागरूक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
0: जी हाँ, विश्व रीफ जागरूकता दिवस हमें यह समझाता है कि समुद्र केवल जल का विशाल भंडार नहीं बल्कि जीवन का आधार भी है,
1: और कोरल रीफ्स उस आधार की सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक है।
0: यदि हम समुद्रों को सुरक्षित रखेंगे तो जैव विविधता, तटीय समुदाय और आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित रखेंगे।
1: तो आइए इस विश्व रीफ जागरूकता दिवस पर हम संकल्प लें कि प्रकृति की इस अनमोल धरोहर की रक्षा के लिए जागरूक बनेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। और दोस्तों, क्यों ना अब एक और दिवस आपके साथ साझा किया जाए, तो उसकी थोड़ी सी बात हम आपको पहले बताते हैं, उसके बाद बताएंगे कि यह दिन जो है वो उसका नाम क्या है, और हो सकता है आप उससे पहले ही पहचान जाएं कि हम किस दिन की बात करने वाले हैं। तो निकिता, ज़रा सोचिए कि हमारी जो सुबह की पहली चाय से लेकर बच्चों की ग्लास तक, मिठाइयों की मिठास से लेकर खिलाड़ियों की ताकत तक, एक ऐसी चीज़ है जो हर उम्र, हर घर और हर संस्कृति को जोड़ती है।
0: जी हाँ प्रेरणा, और वह है दूध, एक ऐसा पोषक आहार जो केवल भोजन नहीं बल्कि स्वास्थ्य, ऊर्जा और समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है।
1: दोस्तों, इसी महत्व को पहचान देने और डेयरी क्षेत्र के योगदान को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है।
0: प्रेरणा, इस दिवस की शुरुआत कब और कैसे हुई?
1: बिल्कुल, ये भी हम हमारे दोस्तों को बताते हैं कि विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य दुग्ध के पोषण महत्व और डेयरी उद्योग के वैश्विक योगदान को रेखांकित करना था।
0: और तब से हर वर्ष 1 जून को दुनिया भर के देश इस दिवस को मनाते हैं और दूध को एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ के रूप में पहचान देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को दूध के पोषण मूल्य के प्रति जागरूक करना और डेयरी क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय योगदान को सामने लाना है।
0: और साथ ही साथ यह दिवस उन करोड़ों किसानों, पशुपालकों और डेयरी कर्मियों के परिश्रम को भी सम्मान देने का अवसर है जिनकी मेहनत से दूध हमारे घरों तक पहुँचता है।
1: बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, दूध को अक्सर संपूर्ण आहार कहा जाता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन B12 और अनेक आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं।
0: और यही कारण है कि बच्चों की वृद्धि, युवाओं की ऊर्जा और बुजुर्गों की हड्डियों की मजबूती में जब भी बात आती है तो दूध को सबसे महत्वपूर्ण रोल दिया जाता है।
1: बिल्कुल, दूध केवल एक पेय पदार्थ नहीं है, इससे दही, पनीर, मक्खन, घी, छाछ और अनेक खाद्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं जो हमारी भोजन संस्कृति का अभिन्न अंग है।
0: प्रेरणा, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोगों की आजीविका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डेयरी क्षेत्र से जुड़ी हुई है?
1: बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा रोचक तथ्य है। और एक और रोचक तथ्य यह भी है कि दूध दुनिया के सबसे अधिक उपभोग किए जाने वाले प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में से एक है।
0: इतना ही नहीं, डेयरी उद्योग वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: जब दूध और डेयरी विकास की बात होती है तो भारत की श्वेत क्रांति का उल्लेख किए बिना ये चर्चा अधूरी सी रहती है।
0: बिल्कुल, भारत में श्वेत क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया जिन्हें भारत की श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, उनके नेतृत्व में शुरू ऑपरेशन फ्लड ने भारत को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया और लाखों किसानों को के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए।
0: आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और यह उपलब्धि किसानों, सहकारी समितियां तथा डेयरी क्षेत्र से जुड़े लाखों लोगों की मेहनत का ही परिणाम है।
1: विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी ने इस सफलता को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया है।
0: प्रेरणा, इस वर्ष की थीम भी बेहद प्रेरणादायक होगी ना?
1: बिल्कुल, वो बहुत ही प्रेरणादायक है। विश्व दुग्ध दिवस 2026 की थीम है सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स, यानी कि महिला डेयरी किसानों का सम्मान।
0: जी हाँ, यह थीम उन लाखों महिलाओं को समर्पित है जो पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, पशुओं की देखभाल और परिवार की आजीविका को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: दोस्तों, भारत सहित दुनिया के कई देशों में डेयरी क्षेत्र की असली ताकत महिलाओं का समर्पण, परिश्रम और नेतृत्व है।
0: विश्व दुग्ध दिवस हमें केवल दूध के पोषण मूल्य की याद नहीं दिलाता बल्कि उन मेहनतकश हाथों के योगदान को भी सम्मानित करने का अवसर देता है जो हर दिन हमारे जीवन में स्वास्थ्य और ऊर्जा का संचार करते हैं।
1: और इस वर्ष की थीम हमें यह संदेश देती है कि जब महिला किसान सशक्त

0: सशक्त होती है तो परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों सशक्त बनते हैं।
1: तो आइए इस विश्व दुग्ध दिवस पर हम संतुलित पोषण अपनाने, किसानों के योगदान का सम्मान करने और डेयरी क्षेत्र की महत्ता को समझने का संकल्प लें।
0: क्योंकि एक गिलास दूध केवल पोषण नहीं देता बल्कि उसमें छिपी होती है किसान की मेहनत, प्रकृति का आशीर्वाद और स्वस्थ भविष्य की उम्मीद।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: निकिता, आज मैं हमारे सभी दोस्तों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी। जब आप पहली बार गिरे थे तो किसने संभाला था? जब पहली बार कोई सफलता मिली थी तो सबसे ज्यादा खुशी किसे हुई थी? और जब पूरी दुनिया आपकी बात समझ नहीं पाती तब भी कौन बिना कहे आपकी हर बात समझ लेता है?
3: जी प्रेरणा, और शायद सबके मन में यही चल रहा होगा कि शायद हमारे माता और पिताजी।
2: बिल्कुल सच ही तो है। जिनके होने से घर घर लगता है, जिनके आशीर्वाद से हर सफ़र आसान लगता है। जिनके होने से घर घर लगता है, जिनके आशीर्वाद से हर सफ़र आसान लगता है। न कोई दौलत न कोई खजाना उनके प्यार से बड़ा, न कोई दौलत न कोई खजाना उनके प्यार से बड़ा। माता पिता का साथ ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा लगता है।
3: और इसी निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस यानी कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है।
2: निकिता, क्या आप जानती हैं कि इस दिवस की शुरुआत कैसे हुई थी?
3: जी हाँ, वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया।
2: और दोस्तों, इसका उद्देश्य था दुनिया भर के माता पिता को सम्मान देना जो अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं।
3: प्रेरणा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि महान व्यक्तित्व के पीछे अक्सर किसी माँ का त्याग और किसी पिता का संघर्ष खड़ा होता है।
2: दोस्तों, स्कूल हमें शिक्षा देता है लेकिन जीवन जीना कौन सिखाता है?
3: माता पिता।
2: दुनिया हमें पहचान देती है लेकिन हमारी पहचान बनाता कौन है?
3: माता पिता।
2: यही कारण है कि यह दिवस उनके योगदान को पहचानने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है।
3: हमारे जीवन का पहला स्कूल घर होता है
2: लेकिन पहले शिक्षक हमारे माता पिता होते हैं
3: और पहली प्रेरणा भी माता पिता ही होते हैं।
2: वे हमारी जीत में सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं लेकिन अपनी परेशानियों को अक्सर हमसे छुपा लेते हैं।
3: और शायद इसीलिए कहा गया है, माँ की दुआओं में जन्नत का एहसास मिलता है। माँ की दुआओं में जन्नत का एहसास मिलता है, पिता की मेहनत में पूरे घर का विश्वास मिलता है। कितना भी बड़ा हो जाए इंसान, कितना भी बड़ा हो जाए दुनिया में माता पिता के सामने उसे हमेशा अपना बचपन याद आ ही जाता है।
2: निकिता, क्या आप जानती हैं कि अनेक जो रिसर्चेस हुई हैं बहुत सारी, वो ये बताती हैं कि जिन बच्चों को परिवार का भावनात्मक सहयोग मिलता है उनमें आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच अधिक विकसित होती है।
3: जी प्रेरणा, और एक रोचक बात यह भी है कि दुनिया की लगभग हर संस्कृति में माता पिता को सम्मान देने की परंपरा किसी न किसी रूप में मौजूद है।
2: क्योंकि भाषा अलग हो सकती है, देश अलग हो सकता है लेकिन माँ की ममता और पिता का स्नेह पूरी दुनिया में एक जैसा ही होता है।
3: लेकिन दोस्तों, आज का दौर मोबाइल, इंटरनेट और AI का है
2: लेकिन आज भी बच्चों को सही और गलत का अंतर सिखाने वाली सबसे बड़ी गूगल माता पिता हैं।
3: वाह, क्या बात कहे।
2: सच है, और आज माता पिता केवल पालन पोषण नहीं कर रहे बल्कि बच्चों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना, जिम्मेदार नागरिक बनना और अच्छे इंसान बनना भी सिखा रहे हैं।
3: दोस्तों जरा सोचिए, हम दिन भर में कितनी बार मोबाइल देखते हैं?
2: शायद दर्जनों बार।
3: लेकिन आखिरी बार आपने अपने माता पिता से यह कब कहा था कि आप मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो?
2: दोस्तों, अगर आज तक नहीं कहा तो आज कहिए।
3: अगर दूर रहते हैं तो एक फ़ोन कर लीजिए।
2: और अगर साथ रहते हैं तो कुछ पल उनके साथ बैठकर बिताइए।
3: क्योंकि माता पिता हमारे जीवन की वह पुस्तक है जिसके हर पन्ने पर त्याग, प्रेम और संघर्ष की कहानी लिखी हुई होती है।
2: और दोस्तों, दुनिया का सबसे सुंदर पुरस्कार वह नहीं है जो हमें मंच

0: पर मिलता है।
1: बल्कि वह है जब हमारे माता पिता गर्व से कहते हैं, यह मेरा बेटा है या मेरी बेटी है।
0: दोस्तों, न मंदिर चाहिए न कोई तीर्थ स्थान चाहिए, जीवन में बस माता पिता का सम्मान चाहिए। उनके चरणों में ही छुपा है हर सुख का सार, उनका आशीर्वाद ही है सबसे बड़ा उपहार।
1: तो आइए दोस्तों, इस वैश्विक अभिभावक दिवस पर हम अपने माता पिता के प्रति प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का संकल्प लें।
0: क्योंकि पेड़ की जड़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन वही उसे खड़ा रखती है। ठीक उसी तरह माता पिता का त्याग हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वही हमारी पूरी जिंदगी को संभाले रखती है।

0: दोस्तों अब बात करते हैं भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना प्लासी के युद्ध की।
1: दोस्तों यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक बड़ा मोड़ माना जाता है, लेकिन आखिर यह युद्ध किसके बीच हुआ था?
0: जी हाँ, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था।
1: उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे वह राजनीतिक शक्ति भी बनती जा रही थी।
0: बिल्कुल, बंगाल उस समय भारत का समृद्ध क्षेत्र था और कंपनी उस पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे।
1: युद्ध पश्चिम बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए इसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है।
0: इस युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था।
1: दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार युद्ध के दौरान नवाब की सेना के कुछ प्रमुख लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था,
0: और इसका फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला और वह युद्ध भी जीत गई।
1: दोस्तों यह जीत सिर्फ एक युद्ध जीत नहीं थी, इसके बाद कंपनी का प्रभाव भारत में तेजी से बढ़ने लगा, और यही कारण है कि प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है।
0: और इस युद्ध के बाद कंपनी को आर्थिक और राजनीतिक शक्ति भी मिलने लगी,
1: और आगे चलकर अंग्रेजों ने भारत के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया।
0: तो दोस्तों इतिहास हमें सिर्फ घटनाएं नहीं बताता बल्कि उनसे सीखने का अवसर भी देता है।
1: सही कहा, इतिहास को समझना हमारे वर्तमान और भविष्य को समझने में मदद करता है।
0: और प्रेरणा, पता है दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी है जो हमें हजारों साल पुराने समय की याद दिला देती है। आज हम ऐसी ही एक खास जगह की बात करेंगे जिसका नाम है केव्स ऑफ हैंड्स, यानी हाथों की गुफाएं।
1: दोस्तों ये नाम ही सुनकर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली फीलिंग आ रही है, तो जानते हैं इसके बारे में। और अगर इन गुफाओं की सबसे खास बात की जाए कि सबसे ज़्यादा इसमें रोचक क्या है, तो दोस्तों यहाँ दीवारों पर इंसानों के हाथों के निशान बने हुए हैं। माना जाता है कि यह हजारों साल पहले बनाए गए थे।
0: सोचिए, जिन लोगों ने ये निशान बनाए थे वे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी इन गुफाओं की दीवारों पर सुरक्षित हैं।
1: बिल्कुल, ये निशान हमें बताते हैं कि पुराने समय के लोग भी अपनी बात और अपनी पहचान छोड़ना चाहते थे।
0: प्रेरणा, अब जान लेते हैं कि आखिर ये कहाँ बनी हुई है और इनका इतिहास क्या रहा है।
1: बिल्कुल, यह गुफा दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित है। माना जाता है कि यहाँ बने हाथों के निशान लगभग 9000 से 13000 साल पुराने हैं।
0: वाओ, सोचिए दोस्तों, इतने साल पहले के लोगों की यादें आज भी हमारे सामने मौजूद है। यह सचमुच आश्चर्य की बात है।
1: और इतिहासकारों का मानना है कि उस समय के लोग अपने हाथ दीवार पर रखकर उसके चारों ओर रंग छिड़कते थे, जिससे हाथ की आकृति दीवार पर बन जाती थी।
0: और यही कारण है कि हमें इन गुफाओं में अलग अलग आकार के हाथों के निशान देखने को मिलते हैं।
1: यह गुफा सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि प्राचीन मानव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण प्रमाण भी है, और अतीत को समझने का एक खूबसूरत सा मौका भी।
0: और दोस्तों साथ ही यह भी पता चलता है कि इंसान हमेशा से अपनी भावनाओं और अनुभवों को किसी न किसी रूप में व्यक्त करता ही है।
1: बिल्कुल सच कहा, आज हम मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से अपनी बात साझा करते हैं, जबकि हजारों साल पहले लोग चित्रों और निशानों के माध्यम से अपनी पहचान छोड़ना जानते थे और वो छोड़ते भी थे। और दोस्तों यही बात है जो केव्स ऑफ हैंड्स को खास और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है।
0: दोस्तों अब आगे हम अपने स्पेशल सेगमेंट में बात करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में, एक ऐसी डिवाइस के बारे में जिसके बिना रेडियो, टीवी और मोबाइल की दुनिया तो जैसे अधूरी है।
1: बिल्कुल दोस्तों, अभी हम जो बातें आप तक पहुंचा रहे हैं वह भी माइक्रोफोन की मदद से ही संभव हो पा रहा है। और दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से,

0: जब उन्होंने टेलीफोन का एक आविष्कार किया था, तो उसी के साथ इस चीज़ का भी आविष्कार हुआ था।
1: जी हाँ, प्रेरणा दोस्तों को बता दें कि माइक्रोफोन एक ऐसा यंत्र है जो हमारी आवाज़ को पकड़कर उसे विद्युत संकेतों में बदल देता है, फिर यही संकेत रेडियो स्पीकर या रिकॉर्डिंग सिस्टम तक पहुँचते हैं।
0: अगर आसान भाषा में कहें तो माइक्रोफोन हमारी आवाज़ को मशीनों की भाषा में बदल देते हैं।
1: सही कहा, आज माइक्रोफोन का उपयोग हर जगह हो रहा है, चाहे स्कूल का कार्यक्रम हो, शादी समारोह हो, टीवी शो हो या कोई ऑनलाइन क्लासेस हो।
0: दोस्तों पता है आपको कि पहले के समय में लोगों को अपनी आवाज़ दूर तक पहुँचाने के लिए बहुत ही जोर से बोलना पड़ता था, लेकिन माइक्रोफोन के आने से यह काम बहुत ही ज्यादा आसान हो गया।
1: जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि माइक्रोफोन का विकास टेलीफोन तकनीक को बेहतर बनाने के लिए किया गया था?
0: जी हाँ, इसमें समय के साथ कई बदलाव हुए और आज हमारे पास बहुत ही ज्यादा आधुनिक माइक्रोफोन अवेलेबल हैं।
1: प्रेरणा, क्या आपने कभी सोचा है कि गायक मंच पर जो माइक्रोफोन इस्तेमाल करते हैं और रेडियो स्टूडियो में जो माइक्रोफोन यूज होता है, क्या वे दोनों एक जैसे होते हैं?
0: बिल्कुल नहीं, इनमें फर्क होता है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रकार के माइक्रोफोन्स बनाए गए हैं।
1: उदाहरण के लिए, गायक अक्सर डायनेमिक माइक्रोफोन का उपयोग करते हैं क्योंकि यह मजबूत होते हैं और तेज आवाज को अच्छी तरह संभाल लेते हैं।
0: और अगर वहीं हम रेडियो स्टूडियो की बात करें तो स्टूडियो में कंडेंसर माइक्रोफोन का उपयोग ज़्यादा किया जाता है क्योंकि यह आवाज़ की छोटी छोटी बारीकियों को भी साफ रिकॉर्ड कर लेता है।
1: और दोस्तों, आजकल वायरलेस माइक्रोफोन भी बहुत लोकप्रिय है, इनमें तार नहीं होते हैं तो सारा काम आसानी से हो जाता है और व्यक्ति आसानी से इधर उधर घूमकर बोल भी सकता है।
0: यही कारण है कि बड़े बड़े फंक्शंस जब आप अटेंड करते हैं या बहुत ही बड़े स्टेजेस जहां पर होते हैं, वहां पर वायरलेस माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है।
1: और आज के समय में लगभग हर स्मार्टफोन में जो कि हम यूज़ करते हैं, उनमें एक छोटा माइक्रोफोन ज़रूर लगा होता है।
0: तभी तो हम फ़ोन पर बात कर पाते हैं, वॉइस मैसेजेस भेज पाते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाते हैं।
1: जी हाँ, और प्रेरणा, सोशल मीडिया के बढ़ते दौर में यूट्यूबर हो गए, पॉडकास्टर हो गए, कंटेंट क्रिएटर हो गए, सब इन्हीं माइकों का यूज़ करते हैं क्योंकि इससे अच्छी आवाज़ और वीडियो की सही क्वालिटी पब्लिक तक पहुंच पाती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, माइक्रोफोन सिर्फ इंसानों की आवाज़ ही नहीं बल्कि संगीत, पक्षियों की आवाज़ और इवन जो प्रकृति की जो आवाज़ होती है ना, उसे भी वो रिकॉर्ड कर लेते हैं।
1: और प्रेरणा, सचमुच साइंस ने हमारा काम कितना आसान बना दिया है, हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दिया है, और इसका एग्जाम्पल है माइक्रोफोन।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग अपने काम से ऐसी पहचान बना लेते हैं कि उनका नाम हमेशा याद रखा जाता है। आज हम बात करेंगे फिल्म जगत की महान हस्तियों के बारे में, जिन्होंने अपने अभिनय से लाखों लोगों का दिल जीत लिया। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन कलाकारों के जीवन और उपलब्धियों के बारे में।
4: बिल्कुल, और सबसे पहले बात करते हैं नरगिस दत्त की। दोस्तों, नरगिस दत्त भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक थी। उनका जन्म 1 जून 1929 को हुआ था। नरगिस जी ने बहुत कम उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनकी सादगी और शानदार अभिनय ने उन्हें लोगों का पसंदीदा कलाकार बना दिया।
3: और प्रेरणा उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्म थी मदर इंडिया। इस फिल्म में उन्होंने एक मजबूत और संघर्षशील भारतीय महिला की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म इतनी लोकप्रिय हुई कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली।
4: दोस्तों, अगर पुरस्कारों की बात की जाए तो उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था फिल्म दिन और रात के, रात और दिन के लिए। और साथ ही साथ भारत सरकार ने उन्हें कला और सिनेमा में योगदान के लिए वर्ष 1958 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था।
3: और प्रेरणा साथ ही उनके सम्मान में नरगिस दत्त पुरस्कार की स्थापना भी की गई थी, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का एक महत्वपूर्ण सम्मान था।
4: बिल्कुल दोस्तों, और बाद में उन्होंने अभिनेता और पूर्व सांसद सुनील दत्त से विवाह किया और समाज सेवा के कार्यों में भी अपना योगदान दिया।
3: दोस्तों, आज भी नरगिस दत्त को भारतीय सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में गिना जाता है।
4: और दोस्तों, अब बात करते हैं हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेता मॉर्गन फ्रीमैन की।
3: जी हाँ, मॉर्गन फ्रीमैन का जन्म 1 जून 1937 को अमेरिका के मेम्फिस टेनेसी में हुआ था। वे अपनी शानदार अभिनय क्षमता और गहरी प्रभावशाली आवाज़ के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं।
4: उन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय के लिए उन्होंने अनेक पुरस्कार भी जीते।
3: अब उनके पुरस्कार की बात करें तो उन्हें एकेडमी अवार्ड फिल्म मिलियन डॉलर बेबी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर पुरस्कार 2005 में जीता। फिल्म ड्राइविंग मिस डेजी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। AFI लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2011 अमेरिका सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें दिया गया था।
4: उनकी खास बात यह है कि वे जिस भी किरदार को निभाते हैं उसमें पूरी तरह से ढल जाते हैं।
3: दोस्तों, सिर्फ अभिनय ही नहीं, उनकी आवाज़ भी लोगों को बहुत पसंद आती है। उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्री और कार्यक्रमों में अपनी आवाज़ दी। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें दुनिया के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में शामिल किया है।
4: बिल्कुल दोस्तों, और अब आगे की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि बचपन में हम में से कई लोगों ने दीवारों पर चढ़ने और मकड़ी की तरह छलांग लगाने का सपना देखा हो।
3: बिल्कुल, और जब सुपर हीरो की बात होती है तो एक नाम तुरंत याद आ जाता है, स्पाइडरमैन। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस अभिनेता की जिसने इस किरदार को नई पहचान दी, टॉम हॉलैंड।
4: बिल्कुल दोस्तों, टॉम हॉलैंड का जन्म 1 जून 1996 को लंदन इंग्लैंड में हुआ था।

0: बचपन से ही उन्हें नृत्य और अभिनय में रुचि थी।
1: और बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले टॉम ने लंदन के प्रसिद्ध मंचीय संगीत नाटक बिली इलियट द म्यूजिकल में अभिनय किया था। यहीं से उनकी प्रतिभा दुनिया के सामने आने लगी।
0: इसके बाद उन्होंने फिल्म द इम्पॉसिबल में अपने शानदार अभिनय से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस भूमिका के लिए उन्हें कई पुरस्कार और प्रशंसाएं मिली।
1: प्रेरणा, लेकिन असली पहचान उन्हें तब मिली जब वे मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन बने। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, स्पाइडरमैन होमकमिंग, फॉर होम, फार फ्रॉम होम और नो वे होम जैसी फिल्मों में उन्हें दुनिया के सबसे लोकप्रिय युवा अभिनेताओं में शामिल कर दिया।
0: निकिता, टॉम हॉलैंड की सफलता की सबसे बड़ी खास बात यह है कि उन्होंने कम उम्र में मिली प्रसिद्धि के बावजूद अपनी मेहनत और विनम्रता को कभी नहीं छोड़ा।
1: सही कहा, उनका सफर युवाओं को यह सिखाता है कि प्रतिभा के साथ अनुशासन और निरंतर अभ्यास भी उतना ही जरूरी है।
0: सपनों को सच करने का हुनर वही पाता है जो गिरकर भी हर बार उठ जाता है। कामयाबी किसी को विरासत में नहीं मिलती, उसे मेहनत से ही कमाया जाता है।
1: और टॉम हॉलैंड को उनके अभिनय के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें बाफ्टा राइजिंग स्टार अवार्ड विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली युवा कलाकारों में भी गिना जाता है।
0: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्पाइडरमैन बनने से पहले टॉम जिम्नास्टिक्स और डांस में प्रशिक्षित थे? यही कारण है कि वे अपने कई एक्शंस और स्टंट दृश्यों को बेहद ही स्वाभाविक ढंग से निभा पाते हैं।
1: जी हाँ, और फिल्मों के अलावा वे सामाजिक कार्यों से भी जुड़े होते हैं और युवाओं को सकारात्मक सोच तथा आत्मविश्वास का संदेश भी देते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, टॉम हॉलैंड का जीवन हमें यही सिखाता है कि उम्र चाहे कम हो, लेकिन अगर सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो, तो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। और दोस्तों, अब एक और ऐसी प्रतिभाशाली अभिनेता के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, जिनके लिए हम ये कहेंगे कि कुछ लोग सिर्फ अभिनय नहीं करते, बल्कि अपने हर किरदार में ऐसी जान डाल देते हैं कि दर्शक उन्हें वर्षों तक याद रखते हैं।
1: बिल्कुल प्रेरणा, और आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्देशक और प्रेरणादायक व्यक्तित्व की, जिन्हें हम सभी आर माधवन के नाम से जानते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, आर माधवन का जन्म 1 जून 1970 को जमशेदपुर, झारखंड में हुआ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले वे संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी सक्रिय थे।
1: जीवन में आगे बढ़ने की उनकी लगन ही उन्हें मनोरंजन जगत तक लेकर आई। छोटे पर्दे से शुरुआत करने वाले माधवन ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर भारतीय सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई।
0: श्रोताओं, रहना है तेरे दिल में के मैडी हो, थ्री इडियट्स के फरहान हो, तनुविट्स मनु के मनु शर्मा हो, या फिर रॉकेटरी द नाम भी इफेक्ट में वैज्ञानिक नाम भी नारायणन, हर किरदार में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है।
1: और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा और या गंभीर विषय, हर भूमिका में वे बहुत सहज दिखाई देते हैं।
0: निकिता, सफलता के पीछे संघर्ष भी होता है। माधवन का यह सफर हमें यह भी सिखाता है कि सपनों को पूरा करने के लिए लगातार सीखना, मेहनत करना और अनुशासित रहना बेहद जरूरी है।
1: और शायद इसीलिए कहा गया है, हौसलों की आग हो दिल में अगर तो मुश्किलों का क्या काम है, जो चलते रहते हैं मंजिल की ओर, सफलता उन्हीं के नाम है।
0: अब बात करते हैं उनके सम्मानों की। आर माधवन को अभिनय के लिए कई फिल्मफेयर अवार्ड्स, साउथ तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड और अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
1: वहीं उनकी निर्देशित और अभिनीत फिल्म रॉकेटरी द नाभी इफेक्ट को 2022 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म प्राप्त हुआ, जो भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है।
0: और वर्ष 2026 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, जो देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है।
1: क्या आप जानते हैं, आर माधवन के पुत्र वेदांत माधवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तैराक हैं और भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इससे पता चलता है कि उत्कृष्टता और अनुशासन उनके परिवार की पहचान बन चुका है।
0: दोस्तों, माधवन का जीवन हमें यही संदेश देता है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि निरंतर सीखने, विनम्र रहने और मेहनत करते रहने से मिलती है।
1: और यही कारण है कि वे केवल एक सफल अभिनेता ही नहीं, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत भी है।
0: बिल्कुल दोस्तों, तो क्यों ना उन्हीं की फिल्म से एक खूबसूरत सा गीत सुन लिया जाए।

0: में भी ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने संघर्ष, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के बल पर इतिहास रचा। अक्सर कहा जाता है कि किसी खिलाड़ी की असली ताकत उसकी शारीरिक क्षमता नहीं बल्कि उसका आत्मविश्वास और संघर्षों से लड़ने का साहस होता है।
1: बिल्कुल, और आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक महान टेनिस खिलाड़ी की जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और अद्भुत खेल कौशल से दुनिया भर में पहचान बनाई, जस्टिन हैनिन।
0: दोस्तों, जस्टिन हैनिन का जन्म 1 जून 1982 को लीज, बेल्जियम में हुआ था। बचपन से ही उन्हें टेनिस से बेहद लगाव था और उन्होंने कम उम्र में ही अपने सपनों को लक्ष्य बना लिया था।
1: लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। जब वे केवल 12 वर्ष की थी तब उनके माता पिता का निधन हो गया। यह उनके जीवन का एक बेहद कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया।
0: शायद इसीलिए कहा गया है कि मुश्किलों ने लाख कोशिश की राह रोकने की, मगर हौसलों ने कभी हार मानना नहीं सीखा। जो अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं वे ही इतिहास लिखते हैं।
1: अपने करियर में जस्टिन हैनिन ने 7 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते और कई वर्षों तक महिला टेनिस की विश्व नंबर 1 खिलाड़ी भी रही है।
0: वर्ष 2004 एथेंस ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर अपने देश बेल्जियम का नाम रोशन किया। उनकी एक हाथ वाली बैकहैंड आज भी टेनिस इतिहास की सबसे शानदार तकनीकों में गिनी जाती है।
1: और उनकी उपलब्धियां केवल कोर्ट तक सीमित नहीं रही, उन्हें कई बार ITF वर्ल्ड चैंपियन, बेल्जियम स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर और यूरोपियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर भी चुना गया।
0: दोस्तों, वर्ष 2008 में उन्हें प्रतिष्ठित वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का ईयर सम्मान से भी नवाजा गया था, जिसे खेल जगत के सबसे बड़े पुरस्कारों में गिना जाता है।
1: इसके अलावा वे WTA प्लेयर ऑफ द ईयर, USSA फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर जैसे अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से भी सम्मानित हो चुकी हैं।
0: और उनके असाधारण योगदान को देखते हुए वर्ष 2016 में उन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। यह किसी भी टेनिस खिलाड़ी के लिए सबसे बड़े गौरव की बात कही जाती है।
1: वही वर्ष 2023 में उन्हें ITF फिलिप्स चेट्रियर अवार्ड प्रदान किया गया, जो टेनिस जगत में उनके अमूल्य योगदान का सम्मान है।
0: क्या आप जानते हैं कि आधुनिक महिला टेनिस में जहां अधिकांश खिलाड़ी दो हाथों से बैकहैंड खेलती है, वहीं जस्टिन हैन की एक हाथ वाली बैकहैंड उन्हें उनकी पहचान बन गई और आज भी इससे टेनिस इतिहास के सर्वश्रेष्ठ शॉट्स में गिना जाता है।
1: यही उनकी खासियत थी, भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाना। खेल से संन्यास लेने के बाद भी जस्टिन हैनिन युवा खिलाड़ियों के मार्गदर्शन और खेल के विकास में पॉजिटिव भूमिका निभा रही है।
0: बिल्कुल दोस्तों, और अब बात करते हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिनकी जीत केवल पदक के लिए नहीं होती बल्कि पूरे देश को उसके सपनों को नई उड़ान देने वाली एक कहानी बन जाती है।
1: बिल्कुल, और भारतीय खेल इतिहास में ऐसा ही एक स्वर्णिम नाम है, कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने भारतीय महिलाओं के लिए ओलंपिक मंच पर इतिहास रच दिया।
0: दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म 1 जून 1975 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में हुआ था। साधारण परिवार से आने वाली मल्लेश्वरी ने बहुत कम उम्र में भारत तुलन यानी वेट लिफ्टिंग में अपना लक्ष्य बना लिया।
1: लेकिन यह सफर आसान नहीं था उस दौर में, जब खेलों विशेषकर वेट लिफ्टिंग में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी। तब उन्होंने सामाजिक चुनौतियों और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने सपनों का पीछा जारी रखा।
0: दोस्तों, उनके करियर का सबसे यादगार क्षण तब आया जब सिडनी ओलंपिक 2000 में उन्होंने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया।
1: जी हाँ, वे ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। यह उपलब्धि भारतीय खेल इतिहास के सबसे गौरवशाली पलों में से एक मानी जाती है।
0: और दोस्तों, आगे उनके सम्मानों की बात की जाए तो उन्हें अर्जुन पुरस्कार 1994, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1995-96 और पद्मश्री 1999 में से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनकी प्रतिभा और देश के प्रति योगदान की पहचान है।
1: इसके अलावा वे कई बार विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की अग्रणी खिलाड़ियों में भी शामिल रही है। और जब ऐसी महान धाविकाओं की बात होती है तो एक नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है, तिरुनेश दिबाबा का।
0: दोस्तों, तिरुनेश दिबाबा का जन्म 1 जून 1985 को बेकोजी इथोपिया में हुआ था। यही वह क्षेत्र है जिसने दुनिया को कई महान लंबी दूरी के धावक दिए हैं।
1: बचपन से ही दौड़ उनके जीवन का हिस्सा बन गई थी। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून और मेहनत के दम पर विश्व एथलीट्स में अपनी पहचान बनाई। तिरुनेश दिबाबा को दुनिया की महानतम लंबी दूरी की धाविकाओं में गिना जाता है। उन्होंने 10,000 मीटर और 5,000 मीटर स्पर्धाओं में वर्षों तक अपना दबदबा बनाए रखा।
0: बिल्कुल दोस्तों, और उनकी बहुत सारी ऐसी शानदार उपलब्धियां हैं जिसके कारण उन्हें दुनिया भर में द बेबी फेस डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चेहरे पर मासूमियत की सी मुस्कान और ट्रैक पर अद्भुत प्रदर्शन दोनों उनकी पहचान रही हैं।
1: और आज भी वे दुनिया भर के खिलाड़ियों विशेषकर युवा एथलीटों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
0: बिल्कुल, और दोस्तों, अब बात करते हैं इतिहास के पन्नों की।
1: बिल्कुल, और 1 जून तारीख ऐसी है जिनमें कई पल शामिल है। 1 जून 1938 को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध सुपर हीरो सुपरमैन ने एक्शन कॉमिक में पहली बार दस्तक दी थी। भारत के इतिहास में भी यह दिन महत्वपूर्ण है। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद गुलजारीलाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला।
0: बिल्कुल दोस्तों, और आईपीएल

0: बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 का खिताब जीत लिया है और अपने नाम किया है। और इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो आज के इस कार्यक्रम में थी आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त प्रेरणा
1: और मैं निकिता। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब सुनते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।
4: Both sides underscored the importance.
5: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
4: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
6: I am confident that this comprehensive agreement
7: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
6: Of our shared future.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। LPG आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतिव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राज्य

0: के सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है एफएम रेडियो लेक्सिटी। बातें मुलाकातें, इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए ग्रामीण आर्थिक समावेशन और केंद्र सरकार की योजनाएं, इस विषय पर डॉक्टर विनीता राजपुरोहित से विनोद शर्मा की बातचीत।
2: दोस्तों नमस्कार, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीता राजपुरोहित। आप महाविद्यालय में प्राध्यापक हैं और अर्थशास्त्र की कक्षाएं आप लेती हैं, इस नाते आर्थिक विषयों पर आपकी पकड़ है। न केवल आप आर्थिक विषयों को पढ़ाती हैं बल्कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसकी नब्ज के बारे में भी अपनी एक राय रखती हैं। तो इस नाते आज कुछ आर्थिक बिंदुओं को इस तरह से लेंगे कि समावेशी विकास और भारतीय जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है इसको लेकर के बात करने की इच्छा है आपसे। डॉक्टर विनीता, कार्यक्रम में आपका स्वागत।
3: बहुत धन्यवाद
2: डॉक्टर विनीता। ये समावेशन का जो विचार है ये यूं तो कहें कि सदियों से चला आ रहा है, लेकिन प्रकट रूप से अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो महात्मा गांधी ने ग्रामीण स्वराज की पूरी कल्पना की और उसके बाद में ये कहा कि भाई गांव ही हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हो सकते हैं। उन्होंने विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की ही वकालत की सारी उम्र, लेकिन उसके बाद एक अलग तरह के विचार भी कई जगहों से आए और एक आर्थिक दर्शन ये दिया गया कि पूंजीगत जो एक जगह केंद्रीकरण होना है पूंजी का, उससे विकास हो सकता है। तो आज के परिदृश्य में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जहाँ हम खड़े हैं 1991 के बाद में या 1947 के बाद में भी, आज का जो ग्रामीण समावेशन का जो विचार है वो आप किस तरह से परिभाषित करना चाहेंगे?
3: जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा हमने बात की कि स्वतंत्रता के बाद से मैं इसको दो हिस्सों में बांटूँ तो 2014 तक और 2014 के बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिला है वे परिवर्तन आमूलचूल है। बहुत वृहद स्तर पर परिवर्तन हुए हैं और वास्तव में जो चाहे हम कहें महात्मा गांधी का जो सपना था विकेंद्रीकरण की जो बात कर रहे हैं, समावेशी विकास की जो बात कर रहे हैं, उसको सही मायनों में धरातल पर लाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं ने किया है। क्योंकि आप देखिए कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे हम मतलब अगर सबसे छोटे स्तर पर बात करूं तो शौचालय मुझे लगता है कि एक मूलभूत आवश्यकता है। और आप देखेंगे कि आजादी के बाद लगभग 70 वर्षों तक हमारे पास 50% भी लोग ऐसे नहीं थे, परिवार ऐसे नहीं थे जो शौचालय जिन घरों में था, तो इस स्तर तक सोचना और उसके बाद में उसको धरातल पर उतारना ये बहुत बड़ी बात थी। और ऐसे ही बहुत सी चीजों पर बात की जा सकती है। आप बात कीजिए शौचालय से लेकर आवास की, पक्के मकान की बात करें, आप बिजली की बात करें, आप जो विभिन्न योजनाएं सरकार ने चलाई उसके माध्यम से आप देखिए कि एलपीजी कनेक्शन, बिजली, हर घर जल, ऐसी तमाम चीजें हैं जिनको धरातल पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उतारा। और उसके लिए सबसे पहले आवश्यकता थी कि लोगों को अगर आप किसी भी तरह का कोई बेनिफिट देना चाहते हैं तो वो सही मायनों में पूरी तरह से उन तक पहुंचे। तो उसके लिए आप देखिए कि जैसा राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं जब दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं तो 17 पैसे भी नहीं पहुंच पाते। आज की हकीकत ये है कि अगर एक रुपया भेज रहे हैं तो वो पूरा एक रुपया जिसको भेजा जा रहा है उस तक पहुंच रहा है।
2: जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जो बात है और खास तौर से रूरल प्रोस्पेक्टिव से, ग्रामीण प्रोस्पेक्टिव से, क्या आपको लगता है कि उसके आधारभूत संरचना की तरफ हम बढ़ रहे हैं? कुछ गांवों को जो विकास की मुख्य धारा है उसके साथ ले लेंगे भविष्य में?
3: निश्चित रूप से ले लेंगे, नहीं हम ले रहे हैं। आप देखिए कि
2: अभी काफी काम बाकी है।
3: बिल्कुल निश्चित रूप से काम बाकी है, लेकिन अगर आप तुलना करेंगे तो वृहद स्तर पर काम हुआ है और काम करने की मंशा है। अब देखिए 17% लोग ऐसे थे जिनके पास में एलपीजी कनेक्शन हुआ करते थे, आज उसको 90% तक लेकर आए हैं हम।
2: डॉक्टर विनीता, एक एक करके योजनाओं की बात करते हैं। जनधन जो योजना है उसका काफी प्रचार हुआ और

0: न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में सराही गई। शुरू शुरू में लग रहा था कि क्या बैंक खाते खोल रहे हैं और इससे होगा क्या, लेकिन ये एक अपने आप में एक मूलभूत परिवर्तन के रूप में सिद्ध हुई। और अब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, लगभग 10-12 साल हो गए इस प्रयास को। इसको आप कैसे देखती हैं, ये इतना बड़ा काम कैसे हुआ? लग तो ऐसा ही रहा था कि सिर्फ बैंक खाते खोलने से होगा क्या।
1: देखिए, ये क्योंकि प्रधानमंत्री का विजन बिल्कुल क्लियर था, उन्हें ये पता था कि अगर आपको करप्शन खत्म करना है तो उसके लिए आपको लोगों तक पैसा डायरेक्ट पहुंचाना है, और उसका एकमात्र तरीका यही था कि आप उनको जो भेज रहे हैं वो पूरी तरह से उन तक पहुंचे। और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि देश की तमाम जनता जो है उसका अपना बैंक अकाउंट हो। और आप देखिए, जिस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने पदभार संभाला उस वक्त 50% जनसंख्या ऐसी थी जो बैंकों से जुड़ी हुई थी, और उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में इनएक्टिव अकाउंट्स थे। आज की तारीख में 100% जनसंख्या ऐसी है, या फिर मैं ये कहूँ कि 100% परिवार ऐसे हैं जो बैंक खातों से जुड़े हैं, बैंकों से जुड़े हैं, और आज लगभग सभी अकाउंट्स एक्टिव अकाउंट्स हैं। क्योंकि एक छात्रवृत्ति, मतलब एक छात्र को जो आप सबसे पहले छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं, वहां से लेकर पेंशन तक, मतलब जब से आपने समझना शुरू किया होगा और जब तक आप अपने जीवन की अंतिम श्वास लेंगे, तब तक आपको मिलने वाला एक एक पैसा आप तक पूरी तरह से पहुंचेगा। इसको सुनिश्चित करने का काम इस सरकार ने किया है।
0: अगली जो योजना आती है, जिसकी बड़ी बात चलती है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये पहले लगता था, जैसे आपने पहले बातचीत में कहा, कि सिर्फ 15 ही पैसे जो पुरानी सरकारें थी वो कहा करती थी, बल्कि 15 पैसे भी ज़्यादा है। मुझे लगता है उससे कम पैसा ठेठ तक पहुंच पाता था, और शायद कुछ उस समय की तकनीकी खामियां या व्यवस्थागत खामियां जो भी रही हों। ये डीबीटी कितना बड़ा गेम चेंजर रहा है।
1: जी, आप देखिए कि डीबीटी में सबसे पहले मैं बात करूंगी कि एलपीजी के लिए जो सब्सिडी दी जाती थी, तो सब्सिडी इससे पहले ये होता था कि उत्पादकों को मिलती थी। तो ये परिवर्तन ये सरकार लेके आई कि पहली बार सब्सिडी उत्पादक को ना मिलकर उपभोक्ता को मिली, और इस योजना को पहल योजना नाम दिया गया, जो विश्व की सबसे बड़ी योजना थी। और इसमें आप डायरेक्ट उस व्यक्ति को वो पैसा दे रहे हैं जिसने उसका भुगतान किया है। उत्पादकों को जब भुगतान किया जाता है तो बीच में, क्योंकि बहुत सारे मीडिएटर्स आ जाते हैं, इसलिए फिर से भ्रष्टाचार की संभावनाएं रह जाती है, इसलिए सारा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया गया और अब सीधे कंज्यूमर बेस्ड सब्सिडी ट्रांसफर होने लगा। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है।
0: और भी कई जो क्षेत्र हैं जिनमें कई तरह की सब्सिडी दी जा सकती है, वहाँ भी ये चीज़ एक्सप्लोर की जा रही है। अब तो डायरेक्ट बेनिफिट जो है, इस न केवल गैस सिलेंडर्स में बल्कि कई और
1: बिल्कुल,
0: जगहों पर भी।
1: शुरुआत यहां से हुई थी। उसके बाद में आप देखिए, मैंने बताया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे हो रहे हैं। आप छात्रवृत्ति से लेकर पेंशन तक जहां भी देखेंगे, हर जगह सीधे उस व्यक्ति तक वो पैसा पहुंच रहा है। पेंशन देखिए, विधवा पेंशन की बात करेंगे हम,
0: बिल्कुल,
1: उसके अलावा भी हम बात करें तो
0: फर्टिलाइजर्स पे दे
1: वृद्धा,
0: रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: वृद्धावस्था पेंशन है।
1: किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं प्रारंभ की गई
0: हाँ
1: है।
0: हाँ या
1: तो ऐसा बहुत कुछ है जो सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने किया है। और इसमें भी आप देखिए कि आज विश्व हमें, मतलब पहले सिर्फ ये था कि आप अपनी जनता को क्या दे पा रहे हैं, आज हम ये कहेंगे कि इफेक्टिवली दे पा रहे हैं। तो ये परिवर्तन जो केंद्र सरकार ने किया है वो भारत के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन है, और विश्व भर में भारत को, भारत की जो एक छवि थी कि भ्रष्टाचार का स्तर बहुत ऊपर है, उस छवि को धूमिल करने का काम इस कदम ने किया है।
0: चलिए, इस पे बात अलग हो सकती है कि कितना हम भ्रष्टाचार से मुक्त हुए हैं। रुपए कार्ड और डिजिटल भुगतान व्यवस्था, ये भी अपने आप में कोविड को कहीं तो एक तरह से इसने इसको ज़्यादा तेज गति दे दी। तो ये चीज़ें कितना प्रभावित कर रही हैं।
1: आप देखिए कि निश्चित रूप से कोविड का इसमें रोल रहा है, लेकिन इसमें भी हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि शुरुआत बैंक अकाउंट नहीं खुले होते अगर, तो ये सब कुछ व्यर्थ था या फिर असंभव था। क्योंकि बैंक अकाउंट्स खुले, और हमें ये पता है, जब हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी समझना होगा कि हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी तादाद में इनफॉर्मल इकोनॉमी थी, पैरेलल इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं, या फिर काला बाजारी अगर सरल भाषा में कहना चाहूं, तो वो बहुत वृहद स्तर पर थी। तो जैसे जैसे

0: हम ये कहेंगे यूपीआई ट्रांजेक्शन्स बढ़े हैं, रुपए कार्ड की वजह से डिजिटल जो ट्रांजेक्शन है, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम बढ़े हैं, उसका प्रभाव तो निश्चित रूप से पैरेलल इकोनॉमी को खत्म करने में सार्थक है ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आज स्थिति ये है कि मतलब जो ठेले चलाने वाले, सब्जी वाले की बात चाहे आप करें, पानी पूरी, जो 10 रुपए की पानी पूरी बेच रहा है उसकी बात आप करें, तो आज हर एक व्यक्ति यूपीआई ट्रांजेक्शन्स एक्सेप्ट कर रहा है। अगर हम सिर्फ वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें तो लगभग 4 लाख करोड़ का यूपीआई ट्रांजेक्शन भारत में हुआ है। तो विश्व भारत को अब हम ये कह सकते हैं कि एक रोल मॉडल की तरह देख रहा है कि किस तरह से भारत की छवि विश्व भर में बदल गई है।
1: चलिए, अब एक जो चर्चित योजना है और जिसको लेकर के वीबीजी राम जी, मनरेगा जिसको पहले कहा जाता था, इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिवस पैदा करने में काफ़ी सहायक रही है। किस तरह से देखते हैं आप ये समावेशन, ग्रामीण समावेशन और मनरेगा या वीबीजी राम जी?
0: ऐसा है कि इस पर मैं आपसे बहुत मतलब, क्योंकि मैंने ग्रास रूट लेवल पर इस पर काम किया है, अभी हमारे विभाग का एक रिसर्च प्रोजेक्ट इस पर चल रहा है।
1: ठीक है।
0: तो पिछले साल मेरा मतलब बाड़मेर, जयपुर, कई जगहों पर जाना हुआ और वहाँ की जनता से मैंने बात की। तो बाड़मेर राजस्थान में मनरेगा के मामले में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल है। जब वहां जाके बात की तो वहां के लोगों ने ये बताया कि सबसे पहले तो माइग्रेशन, प्रवास जिसे हम कहते हैं, उस पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वहां रोजगार की बहुत कमी थी इसलिए प्रवास बहुत ज्यादा हुआ करता था। अब क्योंकि उन्हें अपने घर में ही रोजगार मिलने लगा है तो एक बेनिफिट तो ये हुआ है। और इसमें भी आप देखिए, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी एमजी नरेगा में बहुत बढ़ी है, तो उससे महिलाओं में बहुत वृहद परिवर्तन आया है। वो परिवर्तन ये है कि बाड़मेर के जब ग्रामीण इलाकों में जाकर बात करेंगे तो वो लोग ये कहते हैं कि आज से 10-15 साल पहले जो शहरों के लिए बहुत आम बात है, कॉस्मेटिक शॉप्स वगैरह, वो सब चीजें वहां नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज क्योंकि महिलाएं खुद पैसा कमा रही हैं और इसलिए वो स्वतंत्र हैं कि अपने ऊपर पैसा खर्च कर सकें, तो आपको हर मतलब गांव में 2-3 दुकानें सिर्फ कॉस्मेटिक आइटम्स की मिलेगी। तो क्योंकि परचेजिंग पावर महिलाओं की बढ़ी है इसलिए अब वो सशक्त हैं और अपना पैसा अपने ऊपर
1: बार्गेनिंग पावर भी बढ़ी है
0: बिल्कुल
1: उनकी। आपकी जो मार्केट की जो मजदूरी की दरें थी वो
0: बिल्कुल
1: भी पहले से बेहतर हुई
0: बिल्कुल
1: हैं, क्योंकि लोगों को एक अश्योरिटी है कि वहाँ पे तो रोजगार मिलेगा ही।
0: मिलेगा ही
1: वीबीजी राम जी में या मनरेगा जो
0: मनरेगा
1: पुरानी
0: जी
1: थी
0: में
1: उसमें वहाँ तो
0: जी
1: रोजगार मिलेगा ही, इसलिए आप बेहतर ढंग से बार्गेन कर पाते हैं अपने ठेकेदार से या अपने एम्प्लॉयर से। तो
0: बिल्कुल
1: इस तरह से स्थितियाँ बेटर बनी हैं। इसके अलावा शायद वहाँ पे पालना व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग आवर्स, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो फ्लैक्चुएट होते हैं, इससे भी शायद एक ह्यूमन टच मिला है चीज़ों को।
0: बिल्कुल आप देखिए कि मनरेगा के लिए जब आप जाके पता करेंगे तो ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है हमारी, तो ग्रामीण लोग जिस समय खेती करते हैं उस समय मनरेगा का काम लगभग बंद रहता है। तो आपने उसकी व्यवहारिकता को स्वीकार किया है कि किस समय काम होना है, और अब सरकार उससे भी आगे निकल चुकी है। पहले सिर्फ कच्चा जो
1: काम
0: काम
1: होता
0: होता
1: था
0: था
1: आजकल
0: उसी को
1: वहाँ।
0: इसमें शामिल किया जाता था, लेकिन अब स्थितियां बदल गई है। अब जैसे हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें या फिर जो शौचालय निर्माण स्वच्छ भारत मिशन के
1: तालाब
0: तहत
1: पक्के
0: है,
1: करने हैं
0: तालाब पक्के करने
1: या सड़क
0: हैं,
1: निर्माण
0: मेड़
1: है।
0: बनानी है, तो ये सारी चीजें, सड़क निर्माण, ये सब कुछ इससे होने लगा है। तो इससे एक तो काम दिखने लगा है, और पहले जो स्थिति थी कि बस गड्ढा खोदो और बूर दो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो। एटलीस्ट अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, आधारभूत संरचना की जो आप बात कर रहे थे, तो उसका निर्माण हो रहा है।
1: चलिए, इसमें हालांकि नज़र है, इसमें भी कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है और सुधार हमेशा होना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: अगली योजना पे बढ़ते हैं, स्वच्छ भारत मिशन। जैसे ही ये सरकार आई 2014 में, उसके बाद से स्वच्छता का एकदम से नारा कहीं बैक बर्नर से निकल के आया और एकदम से उछल गया। शुरू में लगा कि ये क्या है, कुछ नहीं है, ये तो इरेलीवेंट सी चीज़ है और इसमें कुछ करना तो है नहीं, लेकिन स्वच्छता वास्तव में आज की जरूरत थी और ये बहुत ही रेलिवेंट रहा।
0: बिल्कुल आप देखिए कि केंद्र सरकार 2014 की अगर बात करें

केंद्र सरकार जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई उससे पहले 40% सिर्फ कवरेज था टॉयलेट्स का, वो अब 100% हो गया है, ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से हम मुक्त हो चुके हैं, शौचालयों का निर्माण हो चुका है। धरातल पर अगर बात करें तो ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं, लेकिन अगर धरातल पर जाएंगे तो हम ये पाएंगे कि अब ऐसा कोई घर नहीं है जहां शौचालय नहीं है, लेकिन फिर भी कई, क्योंकि कुछ रूढ़िगत मान्यताएं हैं, वो अभी तक उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं।

0: पाएंगे कि अब ऐसा कोई घर नहीं है जहां शौचालय नहीं है, लेकिन फिर भी कई, क्योंकि कुछ
1: जी
0: रूढ़िगत मान्यताएं हैं, वो अभी तक उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं। तो हम ये तो हम भी मानते हैं कि अगर शौचालय का निर्माण हुआ है तो आज नहीं तो कल प्रयोग होना निश्चित है। और
1: एक्स्ट्रा आरंभ तो हुआ।
0: जी, और आप देखिए कि जिस समय ये जो लार्ज स्केल पर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हुई, उस समय वर्ल्ड बैंक का एक डेटा आया था और वर्ल्ड बैंक ने इस बात की सराहना करते हुए ये कहा था कि आने वाले समय में भारत की जीडीपी में 2% का उछाल केवल इस एक स्वच्छ भारत मिशन की वजह से आएगा।
1: बिल्कुल, इसका प्रभाव पड़ता है, एक चेन रिएक्शन होता है,
0: बिल्कुल
1: जिससे जहां वर्किंग एनवायरनमेंट चेंज होता है, लोगों का व्यवहार चेंज होता है, तो डिमांड और सप्लाई का पूरा खेल शुरू होता है। और वहां से 2% हो सकता है कि कोई उनका एक खास तरह की समीकरण हो जिसके आधार पर उन्होंने कहा हो। और डॉक्टर विनीता राजपुरोहित आज हमारे साथ हैं, और मैं एक एक करके जो ग्रामीण समावेशन है या समावेशित जो विकास है इसको लेकर के बात करने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। डॉक्टर विनीता, आवास की बड़ी बात होती है, आवास बड़ी समस्या रही है, बड़े बड़े शहरों में भी रही है, गांवों में भी रही है। एक बड़ा बड़ा तबका था जो कच्चे मकानों में रहता है, इसको लेकर के बड़े प्रयास में हैं, इनके बारे में कुछ अपडेट बताएं आप हमें।
0: जी, आवास के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए मनरेगा के जो मजदूर थे उनको सरकार ने आवास योजना के तहत काम देना प्रारंभ किया, और आप देखिएगा कि लगभग हम कहेंगे 3 करोड़ घर, पक्के मकानों का निर्माण पिछले 12-13 सालों में हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और जो झुग्गी जो झोंपड़ियां स्लम एरियाज जो है, अगर 3 करोड़ मकानों का निर्माण हुआ है तो आज वो जनसंख्या, ऐसी हमारी आबादी जो उन झुग्गी झोपड़ियों में रह रही थी, वो पक्के मकानों में रहने लगी है। तो सरकार का जो, केंद्र सरकार ने जो विजन लिया है वो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल सभी पैरामीटर्स को कवर करते हुए है।
1: बेसिक
0: आपने
1: नीड्स
0: जी, मतलब छोटी छोटी नीड्स, आप टॉयलेट्स की बात कीजिए, आप पानी की बात कीजिए, बिजली की बात कीजिए, आप आवास की बात कीजिए, हर जगह।
1: एक और योजना जिसकी चर्चा होती है, क्योंकि समय कम है इसलिए थोड़ा सा हम
0: जी
1: जल्दी लेंगे,
0: जी
1: उज्ज्वला योजना। ये महिलाओं के लिए बड़ी जबरदस्त गेम चेंजर प्रूव हुई है। अगेन ये जिस समय शुरू हुई उस टाइम यूं ही लग रहा था कि है क्या, लेकिन आज देख रहे हैं तो लगता है कि बहुत बड़ी चीज है।
0: जी बिल्कुल। इसमें भी अगर आंकड़ों पर बात करूं तो 2014 से पहले 55% आबादी ऐसी थी जिनके घरों में एलपीजी कनेक्शंस थे। आज हमारा कवरेज 90% से ऊपर पहुंच गया है। निश्चित ही निकट भविष्य में हम 100% प्राप्त कर लेंगे। तो आप देखिए, इसका फीमेल्स पर जो
1: सीधा
0: सबसे
1: प्रभाव
0: बड़ा
1: पड़ा
0: प्रभाव है वो उनकी हेल्थ पर आया है।
1: हेल्थ पे है,
0: हाँ, क्योंकि जब आप चूल्हे के
1: इनडायरेक्ट
0: साथ
1: स्मोकिंग
0: काम
1: कर
0: कर
1: रहे
0: रहे
1: थे
0: हो,
1: आप।
0: यस, इनडायरेक्ट स्मोकिंग कर रहे हो, बल्कि उसके इफेक्ट्स उससे, एक जो आप सिगरेट पीते हो उससे बहुत ज्यादा
1: बहुत
0: थे।
1: मल्टीपल टाइम्स है,
0: जी,
1: और पूरे
0: तो
1: घर में जितने भी लोग हैं
0: बिल्कुल
1: वो धुआं को झेलते थे
0: जी।
1: जितनी देर खाना बन रहा है। और
0: और हमें ये समझना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स की एक टर्म है बिहेवियरल चेंज, है ना। तो आप चाहे टॉयलेट्स की बात करें, चाहे आप एलपीजी कनेक्शन की बात करें, जब सुविधा मिलने लगती है तो धीरे धीरे परिवर्तन आता ही है।
1: एक योजना और, उजाला।
0: उजाला, जी,
1: ये
0: इसमें सबसे बड़ा जो फायदा इसका हुआ वो ये हुआ कि पहले हम जो बल्ब्स यूज करते थे उसकी जगह आपने एलईडी को प्रमोट किया। एलईडी के प्रमोशन से बिजली तो बची ही बची, और हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी आधी आबादी जितना खर्च करके उसका सदुपयोग कर पा रही थी, एलईडी बल्ब्स के प्रयोग की वजह से आज पूरा देश उसका प्रयोग कर पा रहा है। आज विद्युतीकरण की अगर हम बात करेंगे तो भारत का एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां विद्युत नहीं पहुंची। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये हम जब एक एक करके योजनाओं की बात करते हैं और उनकी सफलताओं पर बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत ने बहुत सी ऊंचाइयों को प्राप्त किया है।
1: डॉक्टर विनीता, एक और चीज़ मुझे लगता है उसकी कम चर्चा होती है लेकिन बड़ी उपलब्धि है। मैं आज पढ़ रहा था इंदु में कि भारत के 8 गांवों में से 10 गांवों में कम पाइप्ड जो पानी है वो जाने लग गया है। मेरा इशारा जल जीवन मिशन की ओर है। और उसी अखबार की खबर थी कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है आपकी वो 1.9 आ गई है।

0: 2.1 पे बैलेंस होता है कि
1: जी
0: बराबर जैसी जनसंख्या थी वैसी रह जाएगी,
1: रिप्लेसमेंट रेट।
0: लेकिन अब 1.9 पे है। कुछ एक प्रदेश तो ऐसे भी हैं, आंध्र प्रदेश जैसे, जब 1.5 मतलब कि डिक्लाइनिंग, उसके एक डेमोग्राफिक अलग डिविडेंड्स भी होंगे और लॉसेज भी होंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। मैं पहले इस पे ध्यान चाह रहा हूँ आपका कि 10 में से 8 गांवों में नल के माध्यम से पानी पहुंचाने वाली अचीवमेंट कितनी बड़ी है।
1: जी, मैं खुद ग्रामीण परिवार से हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि महिलाओं को मीलों दूर जाना पड़ता था सिर्फ पीने का पानी लेने के लिए।
0: पनघट होते थे वो भी कई बार गांव से दूर, और
1: जी
0: गर्मियों में तो दो
1: जी
0: तीन तो सूख जाते थे उसमें
1: बिल्कुल।
0: से।
1: मैं मूलतः क्योंकि बीकानेर से आती हूँ और ससुराल बाड़मेर है, तो दोनों ही
0: डेजर्ट
1: ऐसी,
0: एरिया ही
1: हाँ जी,
0: है और उस तरह।
1: तो उन जगहों पर महिलाओं के लिए घर में जल की व्यवस्था किसी सपने से कम नहीं है, और उनके लिए तो मतलब जीवन की सार्थकता इसी में है कि आज उनके घर में पानी आ रहा है और उनको मीलों दूर चलकर नहीं जाना पड़ रहा है। पानी की बहुत सहज उपलब्धता है। मीठा पानी डेजर्ट एरियाज में सपने जैसा हुआ करता था, बल्कि अगर हमारी दादी नानी से बात करेंगे तो वो बताती हैं कि हमने कल्पना भी नहीं की थी कि ये कभी हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सरकार का।
0: विनीता जी, मैं फाइनली एक बात पूछना चाहता हूँ। सारी चीज़ें तो सही सही हो नहीं सकती, कुछ
1: जी
0: मतलब जितनी रोजी हम पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एक चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं पिक्चर में जो होने, कंप्लीट होने में।
1: देखिए, बहुत कुछ ऐसा है, जैसे हम अगर सड़कों की बात करें तो हम ये कहेंगे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है,
0: ठीक है।
1: लेकिन एक व्यक्ति की निष्ठा वो धरातल पर आकर स्वयं सब कुछ नहीं कर सकता। जैसे भारतमाला योजना की बात करें तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन जब हम उसकी आलोचना पर आएंगे तब हम
0: नहीं,
1: पाएंगे कि क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही
0: किस
1: है।
0: क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रयास इस समय करने चाहिए हमें
1: जी,
0: अगर।
1: मैं तो ये मानती हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर ही सबसे पहले काम करने की आवश्यकता है। जो आपने बात की थी डेमोग्राफिक डिविडेंड की, तो इकोनॉमिक्स में ही हम पढ़ते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, तो जो ये हमारा रिप्लेसमेंट रेट जो 2.1 होना चाहिए
0: हाँ,
1: और डिक्लाइन होता जा
0: वन
1: रहा
0: पॉइंट
1: है,
0: नाइन आ गया।
1: हाँ 2.1 से 1.9 आ गया है, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। भारत अभी जनांकिकी और
0: देखिए,
1: लाभांश की तरफ बढ़ रहा है, उसका फायदा ले रहा है।
0: सरप्राइजिंगली डॉक्टर विनीता, आंध्र प्रदेश ने तो एक स्कीम लॉन्च की है कि जो 3 या 4 बच्चे जिनके होंगे उनको 30,000 रुपीज बर्थ पे दिए जाएंगे। मतलब ज्यादा
1: जी
0: बच्चों
1: जी
0: की वकालत अब भारतीय राज्य करने लग गए हैं, और साउदर्न
1: ये
0: स्टेट्स में तो ये बड़ा चिंता का विषय है।
1: इसलिए भी, आप देखिए, इसको हम सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रख सकते। इकोनॉमिक्स की थियरीज पर जब आप जाएंगे तो जैसे जैसे विकास होता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो थियरी है वो ये कहती है कि जैसे जैसे आप विकास के पैमानों पर आगे बढ़ेंगे, एक अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, तो आपकी फर्टिलिटी रेट का कम होना तय है। क्योंकि जैसे जैसे आप देखिए कि फीमेल्स की भागीदारी बढ़ने लगी है, सिर्फ वित्तीय समावेशन तक सीमित नहीं रही हैं महिलाएं, अब वो घरों से बाहर निकलकर काम करने लगी हैं, उनके पास में और बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो जब आप अपने प्रोफेशन को, अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, तो इसके साथ में गृहस्थी में ये सारे परिवर्तन आना स्वाभाविक है। आप जापान की बात कीजिए, चाइना ने जो किया, वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की, आज चाइना उन चीजों को फिर सुधारने की कोशिश कर रहा है, जो हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। ऐसे आप विकसित देशों में देखिए, फ्रांस की स्थिति यही हो
0: चलिए,
1: रही है।
0: ये बात फिर कभी, क्योंकि डेमोग्राफिक जो डिविडेंड्स हैं और डेमोग्राफिक जो चैलेंजेस हैं ये अलग बिंदु है। अभी तो एन्जॉय कीजिए इस चीज़ को कि हम स्टेबलाइज हो रहे हैं, और आने वाला जो समय, क्योंकि बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि भारत में जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, इसकी वजह से आर्थिक लाभ उतने नहीं मिल पा रहे जितने मिलने चाहिए। खैर, कई चीज़ों की शुरुआत हुई है
1: जी,
0: और ये शुरुआत मुझे लगता है काफ़ी आगे तक जाएगी,
1: निश्चित
0: और 2047 में शायद हम बेहतर भारत का निर्माण कर पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: डॉक्टर विनीता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: बातें मुलाकातें, इस कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे ग्रामीण आर्थिक समावेशन और केंद्र सरकार की योजनाएं। इस विषय पर डॉक्टर विनीता राजपुरोहित से विनोद शर्मा की बातचीत।
3: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे
4: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
3: तो लेन देन
4: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
3: ओह,
4: जैसे यूपीआई से।
3: अच्छा
4: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
3: वो क्या है मम्मी?

0: जी तुम्हारी मुंह दिखाई भी यूपीआई से मिलेगी?
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हेलो
8: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
7: फिर से?
8: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
9: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
7: सर इतने कहाँ से?
9: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
7: 2 लाख
10: क्या हुआ पापा?
7: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
8: अरे
7: काट दिया।
10: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
7: फ्रॉड?
10: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
7: तो पैसे गवाओगे।
6: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

101.9 MHz पर यह है FM रेडियो लेक्सिटी। अब एक कार्यक्रम पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर पर।

दोस्तों का लिकोर सार्थक आवाज विदा हो गई। सुमन कल्याणपुर के निधन के साथ पिछली सदी के सदाबहार संगीत युग का अवसान हो गया। सुमन कल्याणपुर, जिन्होंने लता मंगेशकर के एकाधिकार वाले दौर में भी अपनी ना सिर्फ एक सम्मानजनक पहचान बनाई बल्कि इस दौर के दिग्गज संगीतकारों के लिए गीत भी गाए। इसके बावजूद हिंदी फिल्म उद्योग ने उन्हें कभी भी लता जी की छाया से बाहर आने नहीं दिया। शास्त्रीय संगीत की गहरी समझ, बेहद सुरीली आवाज, विस्तृत रेंज वाली वो पार्श्व गायिका थी सुमन हेमाड़ी, जिन्हें हम सुमन कल्याणपुर के नाम से जानते हैं। सुमन कल्याणपुर के पिता शंकर राय हेमाड़ी बेंगलोर कर्नाटक से एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे। वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में उच्च पद पर थे और नौकरी के सिलसिले में ज्यादातर समय ढाका में गुजरा। सुमन कल्याणपुर का जन्म कलकत्ता में 28 जनवरी 1937 को हुआ। परिवार में माता पिता के अलावा 5 बेटियां और एक बेटा थे, जिसमें सुमन सबसे बड़ी थी। साल 1942 में हेमाड़ी परिवार बंबई चला आया। मुकेश के साथ गाया उनका हुआ ये गाना, सुनते हैं फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें से।

पेंटिंग और संगीत में सुमन कल्याणपुर की बचपन से ही दिलचस्पी थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला ले लिया था। साथ ही वो केशवराव भोले से संगीत की शिक्षा भी लेने लगी। पंडित केशवराव भोले हेमाड़ी परिवार के पारिवारिक मित्र थे और पुणे के प्रभात फिल्म कंपनी के स्थायी संगीतकार थे। आगे चलकर सुमन कल्याणपुर ने खान अब्दुल रहमान खान साहब से और मास्टर नवरंग गुरु से भी संगीत सीखा।

साल 1952 में सुमन कल्याणपुर को आकाशवाणी पर गाने का मौका मिला। 1953 में उन्होंने मराठी फिल्म शुक्राची चानी से पार्श्व गायन की दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली हिंदी फिल्म 1954 में आई मंगू, जिसमें उन्होंने मोहम्मद शफी के संगीत निर्देशन में 3 गाने रिकॉर्ड कराए। लेकिन आगे चलकर फिल्म मंगू में मोहम्मद शफी की जगह संगीतकार ओपी नैयर आ गए और इस फिल्म में सुमन कल्याणपुर की गाई सिर्फ एक लोरी कोई पुकारे तुझे धीरे से रह गई। मंगू फिल्म के बाद सुमन कल्याणपुर ने नाशाद के संगीत निर्देशन में फिल्म दरवाजा के लिए 5 गीत रिकॉर्ड करवाए। दरवाजा क्योंकि मंगू से पहले रिलीज हुई, लिहाजा दरवाजा को सुमन कल्याणपुर की पहली फिल्म माना जाता है।

1960 का दशक सुमन कल्याणपुर के लिए बेहद व्यस्तता भरा रहा। उन्होंने तकरीबन सभी संगीतकारों के लिए गाने गाए। उनकी आवाज और गायकी लता मंगेशकर से बहुत मिलती जुलती थी, इसलिए लता मंगेशकर की जब भी किसी साथी गायक या संगीतकार के साथ अनबन हुई, उसका सीधा फायदा सुमन कल्याणपुर को मिला। खासकर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के बीच हुए विवाद ने सुमन कल्याणपुर को रफी साहब के साथ एक से बढ़कर एक कामयाब गीत गाने के मौके दिए।

अपने 3 दशक के करियर में सुमन कल्याणपुर ने हिंदी, मराठी और गुजराती सहित कई भाषाओं में 3000 से ज्यादा गीत और गजलें गाई। सुमन कल्याणपुर की शादी 1958 में मुंबई के एक व्यवसायी रामानंद कल्याणपुर से हुई और इस तरह शादी के बाद सुमन हेमाड़ी सुमन कल्याणपुर कहलाई।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक शोखी थी, एक अलहड़पन था, चंचलता थी और था देसीपन जो हर श्रोता को अपनी ओर आकर्षित करता था।

रेत के पुल में चाहे प्यार की गहराई हो या पश्चिमी धुन पर थिरकता शरारत गीत या फिर शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत, हर तरह के गीत पर खरी उतरती थी समन कल्याणपुर की आवाज और यही उनके गायन की विशेषता थी।

सुमन कल्याणपुर की मधुरता में लता मंगेशकर की आवाज से समानता ने उनको पहचान दिलाने और स्थापित होने के बाद भी हमेशा पीछे रखा, क्योंकि असल आवाज जो उनके बेहद करीब और अधिक सुकर थी। शायद वे अपनी अलग राह बनाती तो आशा भोंसले और गीता दत्त की तरह का मुकाम उन्हें जरूर मिलता। लता रफी मनमुटाव के बाद उनके हिस्से आए रफी साहब के साथ युगल गीत बाद में मिलने एकदम बंद हो गए। जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब का विवाद निपट गया, बाद में फिर उस तरह से उनको गायकी के स्त्री मौके कम मिले। वो लाजवाब ढंग से सुरीली पार्श्व गायिका थी, कर्णप्रिय और रागदारी को समझ से बरतने वाली आवाज। याद कीजिए यह गाना।

1970 में जैसे जैसे नए संगीतकार और गायक गायिकाएं मैदान में आने लगे, सुमन कल्याणपुर की व्यस्तताएं कम होती चली गई और साल 1981 में आई फिल्म नसीब का

2009 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुमन कल्याणपुर को लता मंगेशकर पुरस्कार और 2023 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कल 31 मई को सुमन कल्याणपुर 89 वर्ष की आयु में इस असार संसार को अलविदा कह गई। ऐसी गायकी अब ढूंढे नहीं मिलने वाली। गंधर्व लोक में बस उनकी ही एक कमी बची थी जो कल मुकम्मल हो गई। सुमन कल्याणपुर को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि।

0: 101.9 MHz पर यह है FM रेडियो लेक्स सिटी। शाम के 7 बजने वाले हैं। अब विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में

0: आप सुनेंगे कार्यक्रम जयमाला।
1: कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
2: ओके सैलरी। नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

जयमाला कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आपके साथ नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस देशभक्ति गीत के साथ जिसे गाया है मन्ना डे और साथियों ने। फिल्म का नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: संगठनों स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना,
1: भारतीय सेना गीत ये अभी आपने सुना। और आइए अब जयमाला कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं सिलसिला फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, शब्द रचना जावेद अख्तर की और धुन बनाई है शिवहरी ने।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं शान फिल्म का गीत आवाज मोहम्मद रफी की। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है, राहुल देव बर्मन का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं जयमाला कार्यक्रम, और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अनजान का लिखा ये गीत, जिसकी धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, फिल्म का नाम महान।

गुलशन बाबरा का रचा ये गीत सुनिए। कल्याण जी आनंद जी की धुन है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर। फिल्म का नाम हाथ की सफाई।

जयमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं कर्ज फिल्म का ये गीत। स्वर है किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों के। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

अली और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार। याद याद मुझे आया है एक ऐसे दिल पर का नाम, जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली, किसी ने जान

स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज इस कार्यक्रम में आकाशवाणी से जुड़ी बेहद दिलचस्प स्मृतियां साझा करेंगी आकाशवाणी परिवार की सेवानिवृत्त सहायक केंद्र निदेशक अनीता वेस्ली पटेल। तो चलिए हम उनका स्वागत करते हैं विविध भारती के स्टूडियो में। अनीता जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत

0: स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार, मुझे हार्दिक खुशी हो रही है वापस अपने घर में आके।
0: क्या बात है।
1: सब अपने, ऐसा लग रहा है अपने अपनी दीवारें, एक अपनापन, क्योंकि इन स्टूडियोज में हम काम करते थे, हम कलाकारों को बुलाते थे, रिकॉर्ड करते थे, और आज हम उसी रोल में बैठे हैं। हमेशा तो माइक के पीछे ही काम करने में आनंद आता था, अच्छे से अच्छे लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाना, और उनसे हमारे जो अनाउंसर्स होते हैं बहुत ज्यादा काबिल होते हैं, किस तरह से बात निकलवानी है ये वो जानते हैं।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: तो उनको वो काम करने दिया जाता था और हम अपना ढूंढने में लगे रहते थे, बस खोजी दस्ता।
0: तो आज हम, जो आपने कहा ना कि उद्घोषक बात निकलवाना जानते हैं, तो आज हम भी आपसे बहुत सारी बातें निकलवाएंगे।
1: अच्छा,
0: और आपकी
1: है।
0: बहुत सारी यादों को हम खंगालेंगे और आपको बहुत सारी यादें साझा करनी होंगी। तो चलिए फिर, यहाँ हम अपने श्रोताओं को बता दें कि विविध भारती के स्टूडियो में अनीता जी के सानिध्य में हमें भी काम करने का मौका मिला, और सेहतनामा कार्यक्रम, आज के मेहमान जैसे कार्यक्रम को उन्होंने रिकॉर्ड किया, और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग इन्होंने की जिसमें आर्टिस्ट को आमंत्रित करती थी और हम सब इंटरव्यूज किया करते थे। लेकिन अनीता जी, हम मुंबई की बातें बाद में करेंगे, पहले हम आपको उत्तर प्रदेश की गलियों में ले चलते हैं, रामपुर आकाशवाणी, जहां आपका सिलेक्शन हुआ था। कीजिए
1: तो
0: याद।
1: पहली पोस्टिंग रामपुर उत्तर प्रदेश में हुई। तो यूपीएससी में मैंने इंटरव्यू दिया था
0: जी,
1: आया लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, और रामपुर का नाम पढ़ते ही सब लोग थोड़े से ये कहने लगे कि नहीं जाने दूंगा मेरे पिताजी, क्योंकि वहां तो सब चाकूबाजी और ये सब का सुनते, खबरें सुनते थे ना, कि लड़की को कैसे जाने दें, अनमैरिड लड़की को उठा के अकेले वहां रहने के लिए। तो फिर भी मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना है, जिद करी मैंने। उसके लिए मैंने अपनी सहेली से पैसे भी ले आई।
0: अच्छा।
1: हाँ, कि जाना है तो नहीं। फिर मेरे पिताजी मुझे लेके गए अच्छी तरह से,
0: मान गए फिर।
1: हाँ, मेरी मम्मी की एक फ्रेंड का घर भी था वहां, तो गए वहां, ज्वाइन किया। फिर स्टेशन में गए तो इतना प्यार मिला, क्योंकि छोटे से एकदम कॉलेज से निकल के हम वहां गए थे, और म्यूजिक की हूं मैं तो म्यूजिशियंस तो इतना प्यार देते हैं, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह
0: जी।
1: हमारे, तो इतना अच्छा माहौल मुझे मिला रामपुर में, बिल्कुल फैमिली की तरह। तीन विंग्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग एंड प्रोग्राम,
0: जी।
1: तो वहां कुछ पता ही नहीं चलता था। जब गर्मी का मौसम है या अमरूदों का मौसम है तो बाहर से ठेला जा रहा है तो बुला लिया, सब बैठ के अमरूद भी खाते थे, मूंगफलियां। हम कॉलोनी में घुसते थे तो सब कुर्सियां डाल के बैठे हैं, मूंगफलियां लेके सब बैठे हैं, खा रहे हैं। अपना घर पहुंचते पहुंचते आधा पौना घंटा लग जाता था। तो बड़ा अच्छा माहौल हमने देखा, रामपुर की गंगा जमनी तहजीब देखी, कहीं कुछ डर नहीं लगा, और सब एक दूसरे के साथ सहयोग करते थे, सब जानते थे एक दूसरे को। तो एक बार बाजार में सामान लेने गए तो बोल रहा है, हाँ हाँ आप बस ऑर्डर दे दीजिए, घर पहुंच जाएगा। मैंने कहा मैंने तो आपको बताया नहीं कि मैं कौन हूँ। कहते हम सब जानते हैं रामपुर में, सबको सबका पता है। तो इतना अच्छा, और वहाँ इतनी अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं, खूब साड़ियाँ मैंने सब रिश्तेदारों को पैच वर्क की साड़ियाँ पहनाई, सब हाँ। खुश मुझसे।
0: पहली तनख्वाह मिली थी उससे?
1: हाँ।
0: फिर माँ के हाथ में क्या रखा था?
1: माँ के हाथ में तो साड़ी रखी थी कि भाई ये लो,
0: ये
1: मेरी पैच वर्क की साड़ी।
0: बड़ा जज्बाती लम्हा रहा होगा।
1: हाँ, अरे और मेरे पिताजी तो इतना मुझे केयर करते थे, और वो रामपुर से हमेशा पास होते थे, दिल्ली से उनका लखनऊ हेडक्वार्टर था, तो आते जाते मेरे लिए कभी बालूशाही कभी कुछ।
0: अच्छा अनीता जी, आपने अभी जिक्र किया संगीत से आप आकाशवाणी में आपका प्रवेश हुआ, तो वो संगीत के बारे में बताइए, क्या शास्त्रीय संगीत आपने सीखा है और क्या क्या तालीम ली अपनी डिग्री के बारे
1: संगीत
0: में?
1: तो मेरी डायरेक्शन ऑफ लाइफ जो है वो संगीत ने ही दी है मुझे। यहाँ तक कि मैं पहले 10th पास करी, जब तो स्ट्रीम चुनते हैं तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, उन्होंने बोला कि तुमने साइंस क्यों नहीं ली, मैंने बोला उसमें संगीत नहीं है,
0: ओहो क्या बात है,
1: इसलिए मैंने वो साइंस नहीं ली, बाकी मैं बहुत काबिल थी तो बन सकती थी। और उसके बाद बीए म्यूजिक किया मैंने
0: जी,
1: और अपनी लाइफ को जो मैं डेडिकेट करती हूँ ना, जो सही रास्ते पे लाया वो मेरे गुरुजी, जिनको मैं प्रणाम करती हूँ, पंडित तेजपाल सिंह, सिंह बंधु वाले
0: जी,
1: उनसे मैंने गाना सीखा, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैंने एमफिल म्यूजिक किया,
0: क्या बात है,
1: और जबलपुर यूनिवर्सिटी से बीएड किया, और प्रयागराज यूनिवर्सिटी से कथक में डिप्लोमा किया। ये सब क्योंकि हमारे पिताजी बड़े हमें गाइड करते थे
0: जी।
1: तो गाने में तो खाना और गाना साथ चलता है, और खूब खाती थी मैं।

0: मोटी तगड़ी थी बिल्कुल, फूली कभी नहीं हूँ मैं। हाँ। स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया था मगर बॉडी बिल्डर वाला स्ट्रक्चर था मेरा, तो बहुत ही अच्छे से रहती थी। तो रामपुर में भी कई बार लोग कहते थे कि मैडम आपसे हमें बहुत डर लगता है क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ बिल्कुल पर्दा नशीन और एयर वो, हम यहाँ धाकड़ अपने चले जा रहे हैं, पर्सनैलिटी हमारी। तो बहुत इंजॉय किया रामपुर का। रामपुर में जब हिंदुओं के त्योहार आते थे तो झूले पड़े हुए हैं, कॉलोनी में भी झूले डलते थे, हमने वो इंजॉय किया जो हमें दिल्ली में नहीं मिल पाता था क्योंकि दिल्ली शहर है। और उसी तरह से होली आई तो हर एक के घर के आगे एक बड़ी सी टेबल में पकवान रखे रहते थे और सब सामूहिक रूप से कॉलोनी में होली खेलते थे।
1: क्या बात है।
0: अरे बहुत ही, मतलब असली में त्योहारों का जो मजा है ना वो इन छोटी जगहों में जाके ही जो आपको प्यार मिलता है ना, ईद हो सब जाते थे, मुबारकबाद, दिवाली में
1: क्रिसमस
0: किया सजाया सजावट होती थी, क्रिसमस पे हमारे दयाल साहब थे सब उनके घर पहुंच जाते थे।
1: दयाल साहब आकाशवाणी में,
0: मैं अनाउंसर थे सीनियर।
1: अच्छा, जी।
0: तो हमारे किसी के भी घर में कुछ बढ़िया बनता था ना, तो मैं तो मासूम बेचारी अकेली रहती हूँ ना।
1: अभी तो आप बता रही थी कि आपको देख के लोग डरते थे, अभी कह रही मासूम। तो
0: अरे क्योंकि मुझे जो बड़े बड़े जो मेरे हमारे जो ऑफिसर्स थे ना,
1: मासूमियत होती है
0: वो नहीं, वो बुलाते थे बच्चे की तरह कि भाई जाओ उसको बुला लो, वो खा लेगी, अभी बन रहे हैं दही बड़े या छोले भटूरे का ही बन रहे हैं। तो जिस भी घर में कुछ अच्छा बनता था तो पहले अनीता वैसली थी तब मैं, तो मुझे बुला लिया जाता था। तो मेरी तो मतलब क्या जिंदगी थी, वो नौकरी एक तो संगीत की नौकरी थी, शेड्यूलिंग करती थी तो लोग बड़े खुश होते थे, सुनते थे। क्या है बड़े बड़े इन जगहों में पान की दुकानों में जोर जोर से बजाते हैं गाने, तो हमारे शेड्यूल हुई हुई गजलें या सबरंग जब बजरा होता था वहां हमसे हम निकलते थे तो हमें भी बड़ी खुशी होती थी और लोगों को भी कोई नया आके शेड्यूलिंग कर रहा है, क्योंकि मैं तो लाइब्रेरी में ही बैठी रहती थी, मुझे इतना शौक था कि अच्छे से अच्छा करूं। तो लोग कॉम्प्लीमेंट करने आते थे, पुराने पुराने जो सुनने वाले अप्रिशिएट करते थे कि वाह ये वाले गजलें हमने पहले कब से सुनी नहीं थी, तो एक मन को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता था।
1: अब जब बात गानों की चल जाए और एक इतनी बड़ी गायिका हमारे सामने बैठी हो तो उनसे हम गवाए नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो अनीता जी कुछ लाइन गुनगुना के सुनाइए, उन दिनों की याद करते हुए या आज कुछ गुनगुनाती हैं।
0: वैसे तो यूपीएससी के लिए जो इंटरव्यू दिया था वहां पर भी हमें गा के बताना पड़ा था, ये उनके लिए भी एक अच्छा तरीका था टेस्ट करने का कि जिसको हम संगीत की जिम्मेदारी
1: के लिए हम नियुक्त कर रहे हैं
0: वो किसी काबिल है कि नहीं।
1: हाँ, तो ठीक है वही सुना दीजिए जो।
0: हालांकि मेरे अब 34-35 साल से तो मैं काम में ही लगी रही हूँ, फिर भी थोड़ी कोशिश करती हूँ।
1: जी जी सुनाइए।

0: क्या बात है भाई, आपने 34 साल पहले ये बंदिश गाई थी और आज इतने सुर में, क्या बात है,
1: तो ये
0: बहुत बढ़िया बंदिश आपने सुनाई। और कहीं भी सुर बिल्कुल सधा हुआ है, आपने तो कहा 34 साल पहले गाती
1: हाँ,
0: थी
1: चौतीस
0: और
1: पैंतीस
0: काम में
1: साल
0: बिजी
1: पहले
0: हो गए। हमें तो
1: अब तो
0: लगता है
1: गला
0: कि
1: चेंज हो गया है
0: आप इस हुनर
1: बिल्कुल
0: को अभी और आगे बढ़ाएं, हमारी तो शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और हम तो आपसे ये आग्रह करेंगे कि आप इसे आगे बढ़ाइए फिर से, और अभी आपके पास वक्त भी है रियाज का,
1: हाँ, ये तो
0: तो
1: बहुत अच्छा सजेशन है,
0: और
1: सोचती हूँ मैं, क्योंकि अब फ्री हो गई हूँ।
0: जी, क्योंकि जब आकाशवाणी में जब आप कार्य कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जहां आपके निजी शौक पड़े रह जाते हैं जिन पर हम गौर नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए वक्त है और आप तो फिर से शुरू कीजिए। विविध भारती परिवार की ओर से हम आपके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। और अनीता जी, अब हम आपके आकाशवाणी के सफर पर चलते हैं। आकाशवाणी रामपुर से फिर आप किस आकाशवाणी केंद्र पर गई? 5 आकाशवाणी केंद्रों पर आपने काम किया
1: हाँ, वो भी अलग अलग स्टेट्स में। तो
0: जी, तो रामपुर से कहाँ गई पहले?
1: रामपुर से मैं दिल्ली गई। हालांकि रामपुर बहुत प्यारा था, मगर दिल्ली अपना घर था,
0: जी,
1: पेरेंट्स थे, तो
0: ट्रांसफर
1: वहीं
0: हुआ
1: जाना
0: आपका।
1: था, तो वहाँ के लिए ट्रांसफर हो गया। दिल्ली में मैंने दिल्ली स्टेशन पे काम किया, संगीत देखा, उसके बाद फिर
0: संगीत विभाग में आप?
1: संगीत विभाग में मैंने देखा नेशनल प्रोग्राम्स।

0: एंड संडे नाइट कंसर्ट्स, उसके लिए जो भी आर्टिस्ट सेलेक्ट होते हैं, रिकॉर्डिंग्स आती हैं, उसको बजवाना वो हमारी जिम्मेदारी थी। उसके बाद फिर मैं वहीं पे इंटरनल ट्रांसफर्स होते रहते हैं, तो वहां गई मैं डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोग्राम एक्सचेंज यूनिट, जिसे DTPES कहते हैं
1: जी।
0: तो उसमें पूरे देश भर में इधर से उधर प्रोग्राम्स का एक्सचेंज किया जाता है सैटेलाइट के थ्रू, रोज सैटेलाइट फीड जाता है
1: संगीत तो कार्यक्रम
0: नहीं सभी तरह के कार्यक्रम तो DTPS में वो काम होता है, और सैटेलाइट के लिए शेड्यूल करके दिया जाता है, और बाय पोस्ट भी भेजा जाता है, और उसके अंदर फॉरेन के जो प्रोग्राम होते हैं डॉशे वेले जर्मनी से जो आते थे
1: जी,
0: और वॉइस ऑफ अमेरिका, तो इन सब के प्रोग्राम्स को हमारे DTPS में एक बड़ी फैसिलिटी थी हाई स्पीड डबिंग की, तो वहां पे उनके बहुत सारी कॉपियां तैयार की जाती थी और उनको डिस्पैच कराया जाता था।
1: जी जी जी ये विविध भारती में भी हुआ करता था, जब विविध भारती में जब टेप का जमाना था तो
0: हाँ
1: उस समय यहाँ से
0: हाँ
1: सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड
0: टेप
1: करके
0: के जमाने में बहुत काम होता था, है
1: जी
0: ना,
1: जी
0: इवन कमर्शियल्स को भी डबिंग कर करके सब जगह भेजे जाते
1: भेजा
0: थे।
1: जाता था।
0: और फिर उसके बाद एक जिम्मेदारी मेरे पर आई PM एंड प्रेसिडेंट ब्रॉडकास्ट की,
1: अच्छा
0: तो उसमें प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट से और PMO से हमें राबता रखना पड़ता था, और जहां भी प्रेसिडेंट स्पीच देते थे और PM स्पीच देते थे वो हम प्रोक्योर करके
1: जी
0: उसकी कॉपीज बनाते थे, उसको PMO को भेजते थे और प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट को भेजते थे जहां जैसी है, और उनको फिर हम ट्रांसक्राइब कराया करते थे, उनकी स्पीच को लिखवाना ट्रांसक्राइब करते थे, सुन के टाइप करते थे, उसकी कॉपीज बन के उनको हम लोग वॉल्यूम्स हमने बनाए।
1: अच्छा
0: जी हाँ दिल्ली
1: जी
0: में
1: जी
0: वो आर्काइव्स में वो रखे हुए हैं वॉल्यूम्स,
1: जी
0: तो वो बहुत बड़ा काम हमने किया।
1: वो तो
0: और
1: आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी विरासत होगी, वो एक धरोहर होगी कि आकाशवाणी दिल्ली में
0: हाँ
1: जब एक नई पीढ़ी तैयार होगी तो वो प्रोग्राम्स देखेगी और
0: हाँ
1: जानेगी कि क्या
0: स्पीचेस
1: हुआ
0: सुनते
1: करता
0: थे,
1: था।
0: और कभी कभी किसी किसी स्पीच में इतनी तकलीफ हो जाती थी क्योंकि वो उनका जो बोलने का प्रोनंसिएशन होता था ना, कई बार भाई बुजुर्ग होते हैं हम इन
1: जी
0: पोस्ट
1: जी
0: पे पहुंचते पहुंचते, और
1: जी
0: या फिर संस्कृत के कुछ बोल दिए तो वो समझना मतलब वो भी बड़ी मुश्किल से, और गलत नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी उसमें इधर से उधर एक मात्रा भी,
1: बिल्कुल, क्योंकि
0: तो वो बड़ा
1: आकाशवाणी तो
0: चैलेंजिंग होता था
1: भाषा
0: काम।
1: के रूप में, भाषा का पैमाना माना जाता है ना, मानक भाषा
0: नहीं
1: प्रस्तुत करता
0: PM
1: है।
0: प्रेसिडेंट
1: जी
0: की वो है,
1: हाँ
0: तो उसको तो पूरी जिंदगी मेरे साथ रहा क्योंकि वो हमें अभी तक करना ही पड़ा, अब तक भी करते हैं हम मन
1: जी
0: मन की
1: जी
0: बात की
1: जी जी
0: वो करते थे, 100वें एपिसोड तक हमने किया।
1: प्रधानमंत्री जी की मन की बात
0: जी
1: में।
0: हाँ जी हाँ हमने वो उनको किया पूरा बॉम्बे
1: जी
0: स्टेशन में।
1: क्या बात है।
2: स्मृतियों के स्वर आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे आकाशवाणी परिवार की सेवानिवृत्त सहायक केंद्र निदेशक अनीता वेस्ली पटेल से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग, इसका दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: स्मृतियों के स्वर।

0: बाहर उम्मीदवारों की लाइन लग रही, वो सब इसी इंतजार में है कि आप उन्हें बुलाएं और वो इंटरव्यू हो।
1: कुल कितने उम्मीदवार होंगे?
0: जी मेरा ख्याल है होंगे 40-50।
1: और उनमें उम्मीदवारनियां कितनी हैं?
0: उम्मीदवारनियां
1: मेरा मतलब है उनमें लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां?
0: लड़कियां? जी लड़की तो सिर्फ एक ही है, देखता हूं।
1: हाँ
0: हाँ, वो तीसरे नंबर पर बैठी।
1: तीसरे नंबर पर? तो ठीक है, चलाओ इंटरव्यू।
0: चलाओ इंटरव्यू?
1: चलाओ नहीं बल्कि दौड़ाओ। मेरा मतलब है कि जल्दी जल्दी करो, एक दो उम्मीदवार को जल्दी बुलाओ।
0: बहुत अच्छा सरकार। उम्मीदवार नंबर एक, चलिए।
2: गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। आप जानते हैं कि ये इंटरव्यू किस पोस्ट के लिए है?
2: यस सर, स्टेनोग्राफर के लिए। मेरी टाइप की स्पीड 60 है सर, और शॉर्ट हैंड की स्पीड 150।
1: बस 150?
2: सर वैसे तो 170 तक भी हो जाती है।
1: मुझे अफसोस है कि हमें आप जैसे उम्मीदवारों की जरूरत नहीं है।
2: जी
1: मेरा मतलब है कि हमें ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है जिसकी शॉर्ट हैंड की स्पीड की कोई लिमिट ना हो, बल्कि शॉर्ट हैंड उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हो।
2: तो फिर मैं वही कैंडिडेट हूँ सर जिसकी आपको तलाश है।
1: वो कैसे?
2: शॉर्ट हैंड मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं, बल्कि मैं खुद शॉर्ट हैंड का एक मुजस्मा हूँ। जितने उम्मीदवार इस वक्त इंटरव्यू के लिए आए हैं ना, उन सब में शॉर्ट हैंड साइज मेरा ही है, यानी कि मेरा कद सिर्फ 3.5 फीट है।
1: ओ समझा।
2: और मेरा जन्म भी तो शॉर्ट हैंड में हुआ था।
1: जी जन्म शॉर्ट हैंड में?
2: यस सर।
1: अब समझा। तो
2: वैसे मेरा तो लव अफेयर भी शॉर्ट हैंड में हुआ था।
1: लव अफेयर भी शॉर्ट हैंड में हुआ?
2: यस सर। और लड़के लड़कियां तो कई कई साल तक छिप छिप कर मिलते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां जाकर छोले और कुलचे खाते हैं, तब जाकर कहीं उन्हें यह महसूस होता है कि उन्हें मोहब्बत हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं सरकार, फिर लड़के के रिश्तेदार या लड़की की माँ, मामी, चाची या फूफा वगैरह उनकी मोहब्बत में रोड़े अटकाने शुरू कर देते हैं। अगर मैं एक मोहब्बत की दास्तान सुनाने लगूं सरकार, तो सुबह से शाम हो जाए, और लिखने लगूं तो कम से कम 20 फुल स्केप सफे भर जाएं और दास्तानें फिर भी खत्म ना हो। लेकिन अपने केस में तो वही शॉर्ट हैंड वाला मामला। मैं एक दिन बस स्टॉप पर बस के इंतजार में लाइन में खड़ा था, मेरे आगे एक लड़की खड़ी थी, ना मैंने उसे कभी वैसे देखा और ना कभी उसने मुझे देखा। लाइन में खड़े खड़े मुझे खांसी आ गई और फिर उस लड़की को भी खांसी आ गई। बस मोहब्बत हो गई।
1: बस इतनी सी बात पर मोहब्बत हो गई?
2: मोहब्बत ही नहीं सर, बल्कि शादी भी हो गई।
1: शादी भी हो गई?
2: और वो शादी भी शॉर्ट हैंड में सर, यानी कि ना कोई ठाका ना कोई सगाई, बस यूं समझिए सरकार, चट खांसी और पट पिया। और शादी के बाद बच्चे भी हुए, तो वो भी शॉर्ट हैंड में।
1: बच्चे भी शॉर्ट हैंड में?
2: यस सर, 6 साल में 12 बच्चे।
1: ओह माय गॉडनेस, 6 साल में 12 बच्चे? वो कैसे?
2: ये शॉर्ट हैंड तो बिल्कुल सिंपल है सर, यानी कि एक एक साल में एक एक जोड़ा।
1: ओ।
2: अब तो आपको यकीन आ ही चुका होगा सरकार कि जो काम बाकी के उम्मीदवार 1 घंटे में करेंगे, मैं वही काम सिर्फ 5 मिनट में कर सकता हूँ।
1: मेरा ख्याल है कि अगर मैंने आपको इस दफ्तर में मुलाजिम रख भी लिया, तो अगर इस कंपनी का दिवाला 1 साल में निकलना होगा, तो आपकी वजह से 1 महीने में निकल जाएगा शॉर्ट हैंड में।
2: जी
1: जी हाँ, अब आप जा सकते हैं, मुझे आप जैसे उम्मीदवारों की जरूरत नहीं है। अब आप शॉर्ट हैंड में, यानी कि फटाफट इस कमरे से तशरीफ ले जाएं तो बेहतर है।
2: ऑलराइट सर।
1: राधेलाल।
0: आया हुजूर।
1: दूसरे उम्मीदवार को बुलाओ।
0: जो हुकुम सरकार। उम्मीदवार नंबर 2, चलिए इंटरव्यू के लिए।
3: मे आई कम इन सर?
1: आइए बैठिए। आप जानते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आए हैं?
3: ये सर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। मेरी टाइप और शॉर्ट हैंड की स्पीड।
1: अजी गोली मारिए टाइप और शॉर्ट हैंड की स्पीड को।
3: हाँ जी।
1: मेरा मतलब है कि हमें ऐसे उम्मीदवार की जरूरत नहीं है जिसकी लियाकत सिर्फ टाइप और शॉर्ट हैंड तक ही महदूद हो, हमें ऐसे उम्मीदवार की जरूरत है जो हाजिर जवाब हो, दिलचस्प हो। अच्छा ये बताइए, आप कितने भाई हैं?
3: हम थे तो 5 भाई, लेकिन अब सिर्फ 4 रह गए।
1: ओ, आपके 5वें भाई को क्या हुआ?
4: जी क्या बतलाऊं सरकार, उसने खुदकुशी कर ली।
1: ओह बहुत अफसोस की बात है। खुदकुशी कैसे कर ली? मेरा मतलब है कि वो गाड़ी के नीचे आके मर गया, या दरिया में छलांग लगाकर, या जहर खाकर, या छत से कूदकर?
4: जी जी नहीं, उस बेचारे ने शादी कर ली।
1: ओह शादी कर ली। खैर जाने दीजिए। ये बताइए कि अगर आपके घर और दफ्तर के दरमियान 2 गलियां, 3 बाजार, 4 सड़कें, 5 चौराहे और 6 मोड़ हों, तो बताइए कि आपका घर उस दफ्तर से कितनी दूर है?
4: सरकार मेरा घर दफ्तर से कितनी भी दूर क्यों ना हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं दफ्तर हर रोज ऐन वक्त पर आया करूंगा।
1: जी आप पहले भी किसी दफ्तर में काम कर चुके हैं?
4: अब आप

0: एक दफ्तर की बात करते हैं जनाब, अगरचे मेरा कुल तजुर्बा 6 साल का है, लेकिन मैंने कम से कम एक दर्जन दफ्तरों में काम किया होगा, यानी कि हर दफ्तर में 6-6 महीने।
1: सिर्फ 6-6 महीने?
0: जी,
1: इसका मतलब है कि आपका काम किसी को पसंद नहीं आया?
0: ऐसा नहीं जनाब, बल्कि मेरा काम हर अफसर ने पसंद किया, हर अफसर को मुझसे मोहब्बत हो गई,
1: और वो मोहब्बत फिर जल्दी जल्दी टूटती है।
0: जी हाँ जी हाँ, आपने वो शेर तो सुनी रखा होगा कि जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। एक दफ्तर में जब मैं भर्ती हुआ तो मेरी तनख्वाह 100 रुपए मुकर्रर की गई। मेरे काम से खुश होकर मेरी तनख्वाह दूसरे महीने 150 रुपए कर दी गई।
1: यानी कि एक ही महीने के बाद आपकी तनख्वाह 1.5 कर दी गई?
0: जी जी जी जी, सिर्फ इतना ही नहीं सर, तीसरे महीने 200 रुपए, चौथे महीने 250 रुपए, और पांचवें महीने 300 रुपए, और छठे महीने 350 रुपए।
1: शाबाश, इतनी तरक्की कर ली आपने और फिर भी वो नौकरी छोड़ दी, क्यों?
0: क्या करता जनाब, नौकरी तो छोड़नी थी, गुजारा जो नहीं होता।
1: ओ, गुजारा जो नहीं होता।
0: जी जी जी, क्योंकि तनख्वाह तो मुझे एक बार भी नहीं मिली।
1: समझ में आया। देखिए
0: जी,
1: आप इस दफ्तर में मान लीजिए काम कर रहे और बाहर से एक लड़की सीटी बजाती है, तो आप क्या करेंगे?
0: उसकी पहली सीटी पर तो मैं खामोश रहूंगा, क्योंकि मैं समझूंगा कि शायद वो सीटी आपको बजा रही है। उसकी दूसरी सीटी पर मैं सीटी का जवाब सीटी से दूंगा।
1: और अगर उसने इशारा करके आपको दफ्तर से बाहर बुलाया
0: तो मैं उल्टा उसे इशारा करके दफ्तर के अंदर बुला लूंगा।
1: लेकिन आप ये जानते हैं कि उसके दफ्तर के अंदर आने से
0: हाँ,
1: आप काम नहीं कर पाएंगे।
0: और अगर वो बाहर खड़ी रही तो मैं भी कैसे काम कर पाऊंगा? अब आप ही बताइए ना जनाब, अगर कोई लड़की आपके कमरे के बाहर खड़ी इस इंतजार में हो कि आप उसे बुलाएं, तो भला आप कोई काम कर पाएंगे?
1: आप जा सकते हैं।
0: अच्छा, वो अभी तो मेरी इंटरव्यू खत्म नहीं हुई ना, अभी तो आप मेरे हाजिर जवाब और दिलचस्प होने का इम्तिहान ले रहे थे। इस पोस्ट के बारे में तो आपने एक भी सवाल नहीं पूछा।
1: जो पूछना था वो मैंने पूछ लिया, अब आप जा सकते हैं। राधेलाल
2: आया सर का।
1: बुलाओ तीसरे उम्मीदवार को, जल्दी बुलाओ।
2: जो हुक्म, तीसरे उम्मीदवार आ जाए इंटरव्यू के लिए।
3: May I come in, sir?
1: Yes, yes, come in. How sweet.
3: How sweet?
1: मेरा मतलब है, have the seat. आपका नाम?
3: मेरा नाम है मिस जलेबी वाला।
1: मिस जलेबी वाला, आप टाइप तो जानती ही होंगी।
3: टाइप? Why not? Why not?
1: और शॉर्ट हैंड भी आती ही होगी आपको।
3: शॉर्ट हैंड? Why not? शॉर्ट का मतलब है छोटा, और हैंड का मतलब है हाथ।
1: है ना? Very correct, very correct. बिल्कुल ठीक कहा आपने।
3: ये देखिए मेरे दोनों हाथ कितने छोटे छोटे हैं।
1: How lovely. मिल चले भी वाला।
3: Yes, sir.
1: आपकी शादी हो चुकी है?
3: जी, नहीं तो।
1: वेरी गुड, तो ठीक है। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि यू आर हियर बाय इलेक्टेड।
3: इलेक्टेड?
1: मेरा मतलब है सिलेक्टेड, यानी कि ये नौकरी आपको दे दी गई और आपको नौकरी पर रख लिया गया।
3: थैंक यू माय बॉस।
1: राधेलाल
2: आया सर का।
1: बाकी के सब उम्मीदवारों से कह दो कि हमने सिलेक्शन कर लिया है, वो अब सब जा सकते हैं।
2: बहुत अच्छा सर का।
1: मिस जलेबी वाला।
3: यस माय बॉस।
4: जनाब, मैं भी एक उम्मीदवार हूँ, इंटरव्यू के लिए आया था।
1: मैंने आपको 2 बार कहलवाया है कि आप जा सकते हैं, सिलेक्शन हो चुके।
4: लेकिन बिना इंटरव्यू मुकम्मल हुए सिलेक्शन हो गई। आप मेरे टाइप का टेस्ट ले लीजिए, शॉर्ट हैंड का टेस्ट ले लीजिए।
1: टाइप, शॉर्ट हैंड? भाई मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हैं और साथ में मेरा वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं।
4: जी, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम आप मेरी इंटरव्यू लेकर देख तो लीजिए, मैं बहुत दूर से हाजिर हुआ हूँ इतना खर्च करके।
1: अच्छी बात है, ये बात है तो फिर तैयार हो जाइए।
4: मैं तैयार हूँ जनाब।
1: आप बतला सकते हैं कि खजूर के पेड़ ऊंचे और अंगूर के पेड़ नीचे क्यों होते हैं?
4: जी जी नहीं।
1: आप जानते हैं कि लीमू खट्टे क्यों होते हैं और मिर्ची कड़वी क्यों होती है?
4: जी जी नहीं।
1: अगर गोभी का भाव 8 आने किलो हो तो गोभी के एक फूल के कितने पैसे होंगे?
4: ये भी नहीं बतला सकता।
1: ये खूबसूरत सूट जो आपने पहन रखा है, उसके बनाने में कितने पाउंड और कितने औंस ऊन खर्च हुई होगी?
4: जी ये भी मैं नहीं बतला सकूंगा।
1: ये भी नहीं बतला सकूंगा, वो भी नहीं बतला सकता। अगर आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं बतला सकते, तो आप इंटरव्यू देने आए क्यों हैं? मैंने कहा था ना आपसे कि आप मेरा वक्त जाया मत कीजिए।
4: लेकिन मैं अर्ज करूं कि इन सवालात का इस नौकरी से क्या ताल्लुक?
1: ताल्लुक है, हर सवाल का नौकरी से ताल्लुक है। अब आप जा सकते हैं।
4: जी
1: जी हाँ, अब आप जा सकते हैं।
4: जी, अगर इस तरह के बेतुके सवालात आपसे पूछे जाएं तो क्या आप जवाब दे पाएंगे?
1: क्यों नहीं?

0: वरना मैं मैनेजर की कुर्सी पर कैसे पहुंचता?
1: जी क्या आप बतला सकते हैं कि आपके मूछे मुंह पर क्यों, गर्दन पर क्यों नहीं?
0: मूछे? ये कोई सवाल है भला?
1: अगर एक नाई कैंची से आपके सर के सारे बाल आधे घंटे में काट सकता है तो चार नाई मिलकर उस्तरों से आपके सर के बालों को कितनी देर में सफा चट कर सकते हैं?
0: कमाल है, आप इंटरव्यू देने आए हैं या इंटरव्यू लेने?
1: जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं ऐसी 562 कुर्सियों का कितना वजन होगा?
0: देखिए मिस्टर, मैं कहता हूं कि आप यहां से...
1: लेकिन जो मेज आपके आगे पड़ी है उतनी 50 मेजें बनाने के लिए कितने दरख्त काटने पड़ेंगे जी? कितने मिस्त्री लगाने पड़ेंगे? कितनी कीने खर्च होंगी?
0: ओहो, हद हो गई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि उम्मीदवार होकर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं?
1: जी हाँ, शायद आप भी बेतुके सवाल से घबरा गए हैं। अब आपसे मैं काम के सवाल पूछूंगा। क्या आप बतला सकते हैं कि जब से आप इस ब्रांच के मैनेजर बने हैं इस ब्रांच को कितना नफा या नुकसान हुआ?
0: कमाल है, आप उम्मीदवार हैं या इस कंपनी के ऑडिट ऑफिसर?
1: जी क्या आप बतला सकते हैं कि आपके पास इस वक्त कितनी पेंडिंग चिट्ठियां हैं जिनका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया है?
0: जी
1: क्या आप बतला सकते हैं कि आपके पास हर महीने हेड ऑफिस से कितने रिमाइंडर्स आते हैं, फुला स्टेटमेंट आया, फुला भेजा है कि नहीं और रिटर्न नहीं पहुंचा?
0: आप तो ऐसे सवाल पूछते जा रहे हैं जैसे इस कंपनी के जनरल मैनेजर लगे हों।
1: आखिरी सवाल
0: जी,
1: क्या आप बतला सकते हैं कि इस नौकरी के लिए 40-50 उम्मीदवारों को बुलाकर उनका इंटरव्यू लिए बिना ही वापस क्यों भेज दिया गया? और जिन 2-3 उम्मीदवारों का इंटरव्यू आपने लिया उनसे आपने कोई काम का सवाल भी पूछा जिससे उसकी काबिलियत का पता चल सकता? जी क्या आप बतला सकते हैं कि आपने मिस जलेबी वाला की सिलेक्शन कैसे कर दी? उसमें कौन सी खूबी है? क्या वो टाइप जानती है? क्या वो शॉर्टहैंड जानती है?
0: मैं खामोश हूं और आप सर पर चढ़े चले आ रहे हैं। किस उम्मीदवार में कितनी काबिलियत है ये देखना मेरा काम है, आपका नहीं। अब आप यहां से जाएंगे या मैं चपरासी को बुलाकर आपको यहां से निकलवा दूं? राधेलाल,
1: ठहरिए ठहरिए, इधर तशरीफ लाइए।
0: मतलब
1: आपने अपनी पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल किया है और इस तरह की सिलेक्शन करके आपने कंपनी को नुकसान पहुंचाया है
0: जी?
1: क्या अब भी आप अपने को मैनेजर रहने के काबिल समझते हैं? क्यों ना आपको रिवर्ट करके वापस असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाए?
0: ओफो, आप तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर लगे हों।
1: ठीक पहचाना आपने
0: जी,
1: इधर देखिए।
0: सर
1: जी,
0: आई एम सॉरी सर,
1: मैं ही हूं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और जिस लड़की यानी कि मिस जलेबी वाला को आपने सिलेक्ट किया है वो मेरी बीवी।
0: आपकी बीवी?

इंटरव्यू। हवा महल में अभी आपने श्री वी एम आनंद का लिखा ये प्रहसन सुना। इसे प्रस्तुत कर रहे थे मुख्तार अहमद।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक

0: बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
4: तो लेन देन
3: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
4: ओ,
3: जैसे UPI से।
4: अच्छा।
3: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
4: वो क्या है मम्मी जी?
3: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
4: आम भी ना मम्मी जी।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
8: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आपने सुना 13B फिल्म से, और इस गीत में अभिनेता थे आर माधवन, और आज उनका जन्मदिन है, तो उन इसी उपलक्ष में उनके कुछ गीत हम आज आपको सुनवा रहे हैं। आइए ही अगला गीत सुनते हैं, थ्री इडियट्स फिल्म से आवाज़ें सोनू निगम, शान और स्वानन किरकिरे की। स्वानन किरकिरे का ही ये इस गीत को इन्होंने लिखा है और धुन बनाई है शान।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और आइए अब आपको सुनवाते हैं जोड़ी ब्रेकर्स। इस फिल्म का गीत सलीम मर्चेंट, श्रद्धा पंडित और शादाब फरीदी की आवाजें। शब्द रचना है इरशाद कामिल की और इस गीत को धुन में बनाया है क्लिंटन सेरेजो ने।

0: साथियों, आज साजिद वाजिद इस संगीतकार जोड़ी के वाजिद खान की पुण्यतिथि है। इस दिन पर हम उन्हें याद करते हैं। उन्होंने कई गीत बॉलीवुड सिनेमा को दिए हैं और उन्हीं में से एक गीत जो कि काफ़ी प्रचलित भी है, आइए आपको सुनवाते हैं। दबंग 2 फिल्म का एक गीत है, इसे गाया है वाजिद, ममता शर्मा और श्रेया घोषाल ने। जलीस शेरवानी ने इसे लिखा है और धुन बनाई है साजिद वाजिद ने।
1: Ready? 1, 2, 1, 2, 3.

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।

0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: और चित्रलोक कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए विविध भारती से सोनू निगम, कुणाल गांजावाला और श्रेया घोषाल की आवाजें। शब्बीर अहमद के बोल, धुन बनाई साजिद वाजिद ने और फिल्म का नाम पार्टनर।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा

0: कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: Both sides underscored the importance.
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमार के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनेरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।

0: बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of

0: 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481, 011-237-1717 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
2: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आए 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। रात्रि के 9 बज रहे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। आइए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं लता मंगेशकर और शमशाद बेगम के गाए इस गीत के साथ। फिल्म है मुगले आजम और इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने।

लीजिए सुनिए आराधना फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी की शब्द रचना और सचिन देव बर्मन का संगीत।

लीजिए अब आपको सुनाते हैं जब जब फूल खिले फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, कल्याण जी आनंद जी ने तर्ज बनाई है।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
0: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए FCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
9: मैं उसकी ट्यून बना ली। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के,
10: आप खाए थाली में, सुनने को दे प्याली में।
11: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

वो अभिनेत्री जिसने कई दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, जिसने एक काली अंधेरी रात में चमकते चांद को देखकर ये बात कही थी।

0: लो क्या?
1: नरगिस दत्त का असली नाम था रशीद फातिमा। पैदा हुई 1 जून 1929 को कोलकाता में। नरगिस दत्त की माँ थी जद्दनबाई, जो उस जमाने की बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इसके अलावा वो नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के तौर पर बहुत ही मशहूर थी। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार थी जद्दनबाई। हमेशा वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी फातिमा रशीद अभिनय की दुनिया में जाए, लेकिन नरगिस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको बताते हैं कि सन 1935 में, जब फातिमा रशीद सिर्फ 6 बरस की थी, जद्दनबाई ने उन्हें अभिनय का मौका दिया। फिल्म थी तलाश ए हक। बतौर बाल कलाकार नरगिस के अभिनय की पारी शुरू

जैसे कि हमने आपको बताया, नरगिस का अभिनय का कोई इरादा नहीं था, वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन माँ ने जिद पकड़ रखी थी कि बेटी बनेगी तो केवल अभिनेत्री। एक दिन जद्दन बाई ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान के पास। क्योंकि नरगिस का मन नहीं था एक्टिंग करने का, इसलिए उन्होंने बड़े बेमन से स्क्रीन टेस्ट दिया, बस यूं ही अपने डायलॉग्स बोल दिए। ये सोचकर यूं ही बोल दिए कि महबूब खान उन्हें फेल कर देंगे और वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगी। लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका चुन लिया। ये फिल्म सन 1943 में रिलीज हुई। इसके बाद सन 1945 में महबूब खान ने फिल्म हुमायूं में काम करने का मौका दिया नरगिस को। इसके 4 बरस बाद नरगिस का करियर चमक उठा। सन 1949 नरगिस की 2 फिल्में आईं। एक थी राज कपूर की फिल्म बरसात।

जैसा कि हमने कहा, सन 1949 में नरगिस का करियर चमक उठा। बरसात के अलावा इस साल आई दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म थी अंदाज।

अंदाज में राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ नरगिस का प्रेम त्रिकोण था। नरगिस अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही।

जिंदगी की राहों में कामयाबी और नाकामी जैसे बारी बारी से आती रहती हैं। सन 1949 में चमका नरगिस का तारा सन 1950 के बाद अचानक धूमिल पड़ने लग गया। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में नाकाम होती रहीं। इन फिल्मों में खास थीं शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शिकस्त, पापी और धुन। सन 1955 का जैसे नरगिस के करियर को इंतजार था, राज कपूर के साथ

तीसरी 420 बेहद कामयाब रही। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बहुत पसंद की गई और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में फिल्में एक साथ की। यहाँ आपको बता दें कि राज कपूर और नरगिस ने सबसे पहले सन 1948 में फिल्म वर्षा में काम किया था। इसके बाद बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यार और फिर आई आवारा।

आवारा के बाद राज कपूर और नरगिस की जो फिल्में आई उनके नाम भी आपको बता दें, अनहोनी, आशियाना और उसके बाद आ

0: प्यारा प्यारा।
1: राज कपूर की फिल्म जागते रहो में नरगिस ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई और इस फिल्म के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना नरगिस पर फिल्माया गया।

नरगिस की अभिनय यात्रा में हम आ पहुंचे थे सन 1956 तक। अब चलते हैं आगे, साल 1958। महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया।

महबूब खान और नरगिस का नाता पुराना रहा है और आज नरगिस की अभिनय यात्रा में हमने आपको बताया है कि किस तरह से बहुत कम उम्र में महबूब खान ने नरगिस से अपनी फिल्मों में काम करवाया था। जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया की तैयारी महबूब खान ने की तो जाहिर है नायिका नरगिस ही होनी थी, लेकिन नरगिस के जीवन में ये फिल्म अभिनय के अलावा दूसरे कारण से बड़ी महत्वपूर्ण बनी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग बिलीमोरा में चल रही थी। दृश्य था आग से नरगिस को बचाने का। नरगिस आग में घिर गई थी। उनके बेटे की भूमिका निभा रहे सुनील दत्त ने आग में कूदकर नरगिस की जान बचाई। वो सुनील दत्त से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया। 11 मार्च 1958 नरगिस और सुनील दत्त ने शादी कर ली।

दिलचस्प बात यह है कि बलराज दत्त जब रेडियो में बतौर अनाउंसर काम करते थे तो उन्होंने अपने जमाने की नामी अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू किया था। नरगिस को इंटरव्यू करने का इस नौजवान का अंदाज बड़ा पसंद आया था। बलराज दत्त फिल्मों में आए सुनील दत्त के नाम से। सुनील दत्त और नरगिस एक साथ पर्दे पर ज्यादा नजर नहीं आए। सन 1964 में आई फिल्म यादें जरूर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने ऑन स्क्रीन अपनी मौजूदगी दिखाई। शादी के बाद सुनील दत्त और नरगिस के जीवन में तीन बच्चों की किलकारियां गूंजी, संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को इस फिल्म के कुछ दृश्यों में 110 बरस के बूढ़े का किरदार निभाना था। पंडरी जुकर ने उनका मेकअप कर लिया था और वो एक बूढ़े बाबा के भेष में सेट पर मौजूद थे। नरगिस सुनील दत्त से मिलने आई, सबसे पूछती रही दत्त साहब कहाँ हैं। वहीं मौजूद एक बूढ़े बाबा ने कहा, वो तो सेट पर आए ही नहीं है। नरगिस हार मानकर वहां से जाने लगी। इस बीच तकरीबन 2 घंटे बीत गए। मेकअप मैन पंडरी दादा ने धीरे से नरगिस को बताया कि जिस बूढ़े बाबा से आपने दत्त साहब के बारे में पूछा, असल में वही दत्त साहब हैं। इतने शानदार मेकअप को देखकर नरगिस दंग रह गईं। उन्होंने मेकअप मैन पंडरी दादा को अपनी कीमती घड़ी भेंट कर दी। सुनील दत्त और नरगिस का ऐसा था दिलचस्प जीवन। नरगिस भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। फिल्म मदर इंडिया में बेमिसाल अदाकारी के लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। शादी के बाद नरगिस ने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। वो परिवार और समाज सेवा में लग गईं। लेकिन अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन जो नरगिस के भाई थे, उनके जोर देने पर नरगिस ने सत्येन बोस की फिल्म रात और दिन साइन की। सन 1967 में आई रात और दिन। इस फिल्म के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

सन 1958 कार्लोवी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नरगिस को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। 3 मई 1981 पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस के हिस्से की सांसें खत्म कर दी। एक अभिनेत्री इस दुनिया से विदा हो गई।

पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस को जब उनके चाहने वालों और उनके परिवार से छीना। नरगिस महज 51 साल की थी। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि वो अपने लाडले बेटे को रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आते नहीं देख पाई। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी नरगिस दत्त के देहांत के बाद रिलीज हुई और संजय दत्त को इसका हमेशा से अफसोस रहेगा। सन 1982 में नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये फाउंडेशन कैंसर पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए आज तक काम कर रहा है। नरगिस एक जागरूक नागरिक, एक बेमिसाल अभिनेत्री, एक शानदार इंसान। अभिनेत्री नरगिस को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें थीं अभिनेत्री नरगिस की, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

मेरी किस्मत की किताब है तेरे हाथों में, सोच लो क्या करना है। मेरी तन्हाइयों का हिसाब है तेरे हाथों में, सोच लो इस दिल का अब क्या करना है।

ये बहाने इन बहानों के फसाने हमें कर रहे हैं बेकरार। कब बनेगी फूल ये कली है बस इसी का इंतजार।

0: क्या भरोसा है कल का, जो करना है चलो आज ही करें। जो चाहते हैं कि रेशम सा हो रिश्ता हमारा, तो ये कोशिश आज ही करें।
1: रेशम की डोरी

जब से लगाया है दिल, इस दिल का तो बुरा हाल है। छोड़ जाओगे घर कभी तो क्या होगा, जी को सता रहा यही ख्याल है।

0: छाया गीत का आज का सफर आपने तय किया जयंत के साथ। अब इजाजत दीजिए।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे विक्को वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: विको टर्मरिक।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की।

सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य

0: आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेयर बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan multimodal transit transport project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today, President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia, as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CIPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply a trade agreement, it is a statement of civilizational trust. The Union Minister informed that from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's exports.